FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई

0: हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

ईश्वर तो हमारे बिना भी ईश्वर ही है, परंतु हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। जो लोग भगवान की कृपा पर भरोसा रखते हैं, उनके न्याय पर विश्वास रखते हैं, वही लोग इस संसार में सुखी रह सकते हैं और उन्हें संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर पाती है। कहते हैं कि जब भी इंसानों पर पाबंदियां लगी हैं इस संसार में, तो बेजुबानों को बहुत सुकून मिला है। इसी तरह ध्यान रखना चाहिए कि जो मनुष्य हर पल इस जीवन के उतार चढ़ाव को देखते हुए स्वयं को एक रस में रखता है, सत्कर्म करता है, अपनी सोच को अच्छा रखता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही इस जगत में सबसे सुखी प्राणी है।

मनुष्य वही करता है जो वो चाहता है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं, क्योंकि भक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती है। और जहाँ सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जाती है, वहीं पर असली सुकून है, असली विश्वास है।

ईश्वर का नाम जपने के साथ साथ अच्छे कर्म भी करने चाहिए, क्योंकि प्रभु सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि नियत भी देखते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषाद राज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी, और लोकगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम शुभ प्याग में। समय रहेगा 7:40। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आधारित भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर, और सुबह 9:00 का समय है सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:00 और 10:30 का समय रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की, और 11:30 पर सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:00 और दोपहर 12:30 का समय है बहनों के कार्यक्रम सुनो सखी का। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9:00 रिले की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप सुना करते हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20, सुबह 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और शाम 7:45 पर। दिन में 1:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे।

0: भजन हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर, और शाम 5:30 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का सुरमई सांझ। इस कार्यक्रम में खूबसूरत फिल्मी गीतों का आनंद उठाइए। समय है शाम 6:05। मौजा कराइंदियाँ, ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर, और शाम 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी, और 8:30 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। रात 9:15 पर एक ही कलाकार इस कार्यक्रम में तोशी रैना के गाए हुए कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे, और रात 9:30 पर आनंद उठाइए लोक गीतों का कार्यक्रम रहेगा धाम गीता दी। और रात 10:30 का समय है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्यैः शंघाई

0: बिश्केक में छठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की वृद्धि हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने के कारण आई बाढ़ से भुटीकोशी नदी के किनारे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बातचीत हुई। बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा उपयोग वाली बोतलों को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization, SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today.

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। धौलाधार की बर्फीली चोटियों को छूकर आ रही ठंडी हवाओं के साथ, झरनों की खनक के साथ, पक्षियों की खूबसूरत आवाजों के साथ आप सभी का आज के कार्यक्रम सुबह सुहानी में स्वागत है। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना। जी श्रोताओ, आज तारीख है 1 सितंबर 2026 और सितंबर महीने का ये पहला सवेरा आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। और दिन है आज मंगलवार। आपकी इस ट्यूसडे मॉर्निंग को सुपर ट्यूसडे बनाने के लिए जुड़ चुके हैं हम आपके साथ कार्यक्रम सुबह सुहानी के माध्यम से। तो अगले कुछ समय तक बेहतरीन गानों और जानकारियों का कारवां चलेगा आपका और हमारे साथ रहेगा। और कार्यक्रम सुबह सुहानी में खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

पर प्रकृति जो है वो हर पल हर कदम एक नया नज़ारा दिखाती है, और खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो मन को मोह लेते हैं और साथ ही हमारे दिमाग को शांत कर देते हैं। और इसके साथ ही हमारा प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर पहाड़ हर रोज़ हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं। तो चलिए आज का सुविचार आपके साथ साझा करते हैं। पहाड़ जितने भी ऊंचे होते हैं उनके रास्ते भी उतने ही घुमावदार होते हैं। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में जब बड़ी मंजिल पानी हो तो रास्ते मुश्किल ज़रूर होंगे, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने का मज़ा भी उतना ही लाजवाब होगा। जी दोस्तों, तो जीवन के रास्ते थोड़े भी अगर घुमावदार लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, तो घबराइए मत, अपनी रफ्तार बनाए रखिए। जैसे धौलाधार अडिग खड़ा है, वैसे ही अपने हौसलों को भी बुलंद रखिए, और साथ ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह धर्मशाला में हैं। तो चलिए कार्यक्रम के सफर को आगे बढ़ाते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ।

जी दोस्तों, जीवन में कैसा भी समय आए, हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने आसपास भी खुशियां बिखेरनी चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है, लेकिन अपनी कहानियों के निशान छोड़ जाता है। तो चलिए, कार्यक्रम में अब हम भी बात करते हैं गुजरे हुए वक्त की, उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने आज के दिन को कुछ खास बना दिया। बात करते हैं आज विशेष की। साल 1939 में आज ही के दिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और जिसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी का निधन हुआ आज ही के दिन साल 1574 में। उन्होंने सिख धर्म में लंगर प्रथा को सुदृढ़ किया और इसके साथ ही सामाजिक समानता को भी बढ़ावा दिया। वर्ष 1947 की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन भारत में भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ISTको आधिकारिक रूप से अपनाया गया और इसके साथ ही राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1 सितंबर सन 1956 में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई साल 1962 में और साल 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी का विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बनाया गया। और आज ही के दिन साल 1896 में इस्कॉन के संस्थापक AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म हुआ था।

जी श्रोताओ, आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और समय मिलाइए सुबह के 7:26 और 45 सेकेंड इस समय हो चुके हैं। और श्रोताओ, अब समय है बात करने का उन बातों के बारे में जिसे आज और आप हम मिलकर अब जानेंगे कि आज के दिन क्या क्या खास है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के दिन भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो अपनी स्थापना दिवस को पूरे जोश से मना रहा है और साल 1965 को 1 सितंबर को भारत सरकार द्वारा देश की 245 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके LIC की स्थापना की गई थी और इसकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और इसका मूल ध्येय वाक्य श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, योग क्षेम वहाभ्यम, अर्थात आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। और श्रोता, इसी के साथ ही आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की भी शुरुआत हो चुकी है और साल 2026 के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम है डिस्कवर द पावर ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की शक्ति को पहचाने। और ये थीम हमें यही सिखाता है कि किस तरह हम अपनी रोज़मर्रा के खाने की सही आदतों और अपनी जीवन शैली में बदलाव करके बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी सरकार भी जागरूक है इस नारे से, इसीलिए भारत सरकार के मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पूरे सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। और श्रोता, वैसे भी सेहत से हमें समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए आज से अपनी प्लेट में थोड़ा सा पोषण जरूर शामिल करिए। और इसी के साथ आज एक बहुत खूबसूरत सा दिन है, जी हाँ, आज है वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे। वो जो बचपन में हम चिट्ठियाँ लिखते थे, लेकिन आजकल सब कुछ व्हाट्सएप और ईमेल पर सिमट गया है, लेकिन कागज़ पर लिखकर जज्बात भेजने का मज़ा कुछ और ही था, उसकी बात ही कुछ और थी। तो क्यों ना आज के दिन हम कुछ एक्सपेरिमेंटल बन जाएं, अपने किसी खास दोस्त को, परिवार के लोगों को छोटा सा नोट या छोटा सा लेटर अपने हाथों से लिख कर दें। यकीन मानिए, उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो आपके दिन को बना देगी। और हम भी आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने वाले हैं अब इस गीत के साथ।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपको देश दुनिया और अपने प्रदेश की बड़ी खबरों से रूबरू करवाने का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रदेश के मौसम के बारे में। तो देवभूमि में मौसम एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश की लगभग 145 सड़कें बंद हैं और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो सुनने वालों को सभी को यही कहेंगे कि अगर आप कहीं सफर करने की सोच रहे हैं या घूमने जाने की सोच रहे हैं तो प्रशासन की गाइडलाइंस देखकर ही घर से बाहर निकलें। और इसके साथ ही देश में कई बड़े बदलाव भी आज से लागू किए गए हैं। पहली खबर मुंबई से है जहां आज से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इसी के साथ ही ऑटो और टैक्सी का सफर भी महंगा हो गया है और हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर है। आज से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर मुहर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, अब डिजिटल पास से ही उनका काम चल जाएगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के बाद अब 60

साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। और इसके साथ ही खेल जगत से चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे दुनिया भर के उनके फैंस काफी भावुक हो गए हैं। और खबरों के सिलसिले में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आपसे अब विदा लेने का वक्त हो चुका है और चलते चलते बस यही कहेंगे, आज का दिन आपका है, इसे खुलकर एंजॉय कीजिए, मुश्किलों को मुस्कुराकर अलविदा कहिए और अपनों का ख्याल रखिए। और इसी के साथ सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। ये लोकगीत हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्ष्मी और राजेश कुमार का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएंगी।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी

0: बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहां तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को

0: पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
0: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। काशदास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में

0: फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस SCO समिट इन किर्गिस्तान कैपिटल बिश्केक टुडे। कंट्रीज GDP ग्रोज 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, बीटिंग RBI's प्रोजेक्शन ऑफ 7%। US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina.

0: American investment in India and greater Indian investment in the United States.
1: I think you've seen a lot of work by the president and his ambassador to India, Sergio Gore, work on trying to get more American businesses to invest in India and to get Indian businesses to invest here in the United States. And so the president and the administration are very keen to grow and develop that bilateral trade and economic relationship.
0: Desai said President Donald Trump considers ties with India highly important and has often spoken about his friendship with Prime Minister Narendra Modi. This is Akashvani giving you the news.
2: For news on the go, follow us on X at AIR News Alerts and listen to AIR News on BB Shabd.
0: India has strongly rejected a ruling by the World Bank Constituted Court of Arbitration over the Indus Waters Treaty, rejecting the tribunal's authority and calling its decisions legally invalid. In a social media post, the Minister of External Affairs, MEA, said India has never recognized the arbitration panel, did not participate in its proceedings, and would not be bound by its rulings. New Delhi also reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance. The statement came after the Court of Arbitration in The Hague ruled India's reasons for putting the treaty on hold did not justify suspension or termination. The panel called on India to continue observing its obligations under the 1960 Water Sharing Agreement. India, however, rejected the ruling, arguing that the arbitration panel itself was established in violation of the terms of the treaty. The MEA said the panel has no jurisdiction whatsoever over India's sovereign decisions concerning the treaty or its infrastructure projects. New Delhi suspended the Indus Waters Treaty following the Pahalgam terror attack in April last year, citing national security concerns and continued cross-border terrorism. Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. According to the Nepal's Disaster Management Authority, 939 people have died and 3,925 are missing, including 592 foreign nationals. So far, 279 people have been rescued from hydropower sites, while more than 11,000 people have been rescued across the country. The rescue operation has been supported by Nepalese and Chinese military teams, along with experts from India, South Korea and Australia. Severe flooding and landslides have made it difficult for rescuers to locate the buried tunnels. India has sent specialized teams to help with both the rescue operations and the identification of victims. A 19-member Indian forensic team began work in Kathmandu, assisting with DNA testing to identify recovered remains. An Indian tunnel rescue team is also working at hydropower sites in Chilime and Langtang. Experts are helping Nepalese authorities search for 933 workers and employees who have been missing since August 26th, with many believed to be trapped inside the tunnels. At least 11 hydropower projects were damaged by the floods. Families say rescue efforts have been too slow and are urging authorities to act quickly. Downstream in the Chitwan, nearly 300 bodies have been recovered from rivers. Many remain unidentified, so authorities are using DNA testing. Due to a shortage of freezers, some bodies have been temporarily buried until they can be identified. Nepal has asked several countries for help, including freezers, DNA testing equipment, drones, bridges, and specialized tunnel rescue tools. A team of 18 Indian forensic experts is assisting with DNA identification. In Tibet, Chinese state media reports 16 deaths and 546 missing people. China has rejected claims that its hydropower projects caused the disaster, calling such allegations malicious speculation. Amid the floods in Nepal and the rising water levels of rivers in Bihar, the Animal and Fisheries Resources Department has advised people not to consume fish caught from flood waters. According to the department, during floods, fish may come into contact with sewage, dead animals and other contaminated substances, increasing the risk of contamination by bacteria, viruses and other pathogens. Consumption of such fish may be harmful to health. The department has clarified that fish caught from floodwaters should not be used for consumption until the floodwater has stabilized and the condition of water bodies has returned to normal. The department has also appealed to people not to consume fish that appear unknown or unusual. People have been advised to avoid buying, selling, or consuming fish caught from the flood waters. Odisha is bracing for another spell of heavy to very heavy rain under the influence of a well-marked low-pressure area over Gangetic West Bengal and adjoining north coastal Odisha. The IMD has issued a red warning for Sundargarh and Keonjhar, with orange warning for 6 districts and yellow warning for 12 districts today. The fresh spell comes after Odisha recorded exceptionally high rainfall during July and August, with several northern districts experiencing repeated flood situations. We have more from a correspondent.
3: Odisha is witnessing another spell of heavy to very heavy rain, with the India Meteorological Department IMD issuing a red warning for Sundargarh and Keonjhar today. Orange warning is in force for Jharsuguda, Bargarh, Sambalpur, Deogarh, Angul and Mayurbhanj, while 12 districts are under yellow warning. The rain is associated with a well-marked low-pressure area over Gangetic West Bengal and adjoining north coastal Odisha. Odisha recorded 91% excess rainfall last July. Between the last 1st of June and 26th of August, the state received 1,104 millimeters of rain, about 31% above normal. IMD expects rainfall activity to decrease after tomorrow, though isolated rain may continue in this month. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: Lionel Messi has announced his retirement from international football, bringing an end to a 21-year Argentina career that included a World Cup triumph, 2 Copa America titles, and a record 207 appearances for his country. Messi said the decision has been on his mind since the World Cup final defeat to Spain before the death of his father further convinced him it was time to step away. The 39-year-old revealed the decision in a statement posted on his official Instagram account, confirming that he would no longer wear the Argentina jersey after one of the most celebrated international careers in football history. Messi said the decision has been painful, particularly because of the emotional bond he has shared with the national team and Argentina's supporters throughout his career. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
4: Thank you, Abhishek. Prime Minister Modi at the Shanghai Cooperation Organization Summit in Bishkek is noticed prominently by the dailies. The statesman quotes Prime Minister Modi telling Putin, "End hostilities and pursue peace. Ensure peace, freedom of navigation, Prime Minister urges Iran," says the Hindu. SIR draft leaves out 47.7 lakh Delhi voters, informs the Asian Age. One nation, one time, India moves towards self-reliance in timekeeping, reports the Tribune, adding IST to be mandatory time reference from March. Singapore diplomat, Myanmar activist and Bangladeshi aid giver win Magsaysay Awards, reports the Indian Express. Messi closes the Argentina chapter, reports Hindustan Times. Football loses part of its soul as legend calls time on Argentine career after failure to defend World Cup crown and death of his father George, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in the first quarter of the current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे अब। दोस्तों नमस्कार, कैलेंडर बदल चुका है और सितंबर का महीना आ गया है। हवाओं में नई ताजगी है, लेकिन क्या आपके खाने की थाली में भी वो ताजगी है? जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये प्रश्न आपसे क्यों किया है, तो इसका कारण ये है कि आज 1 सितंबर से शुरू हो चुका है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और आप सब जानते ही होंगे, तंदुरुस्ती अगर साथ हो तो हर दिन एक त्योहार है, वरना ये दौलत और शोहरत सबके सब बेकार है। और हमारा देश भारत भी तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ का हर नागरिक स्वस्थ और पोषित होगा। तो चलिए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक विशेष भेंट वार्ता जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आधारित है, जिसमें हम जानेंगे सेहत से जुड़े हुए टिप्स और हमारी रसोई में मिलने वाले पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि हमें बीमारियों से दूर रखता है।
6: श्रोतो, हर किसी का सपना रहता है एक खुशहाल और खूबसूरत जीवन जीने का, और ये तभी संभव हो पाता है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और इसके लिए हमारा खान पान सही रहना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि हमारे आहार का हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर सीधा असर पड़ता है। जी हाँ, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हर वर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन तनु धीमान। तनु धीमान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद
6: जी। सबसे पहले आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने का क्या उद्देश्य रहता है?
7: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का सबसे बड़ा उद्देश्य है न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को ये समझाना न्यूट्रिशन यानी कि पोषण जो है वो सिर्फ बीमार होने के बाद ध्यान देने वाली ही चीज नहीं है, बल्कि बीमारी से बचने और एक अच्छी हेल्थ की फाउंडेशन के लिए भी है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, इन सब का हमारी हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को बैलेंस डाइट और सही खानपान के लिए जागरूक करना है।
6: जी तनु जी, आज के समय में कुपोषण और मोटापा दोनों ही बड़ी चुनौतियां बन चुके हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं?
7: देखिए, दोनों अलग अलग समस्याएं लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का संबंध जो है वो हमारे खानपान और हमारी लाइफस्टाइल से ही है। कुपोषण का मतलब ये नहीं है कि कम खाना मिलना है, कई बार खाना जो है वो पर्याप्त होता है लेकिन उसमें वैरायटी की कमी रहती है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल्स। और वहीं हम ओबेसिटी को देखें तो उसमें ज्यादा कैलोरीज हैं, जैसे कि आजकल जंक फूड, पैकेज फूड, शुगरी ड्रिंक्स वगैरह, और जरूरत से ज्यादा खा लेना, और सबसे बड़ा है फिजिकल एक्टिविटी की कमी।
6: जी, संतुलित आहार किसे कहते हैं, एक सामान्य परिवार अपनी थाली को किस तरह से संतुलित बना सकता है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
7: जी, संतुलित आहार मींस बैलेंस डाइट, जिसका मतलब है कि ऐसा खाना जिससे हमारे शरीर की जरूरत के अनुसार अनाज, प्रोटीन, सब्जियां, फल, दूध, दही और थोड़ी मात्रा में हेल्दी वाले फैट्स भी शामिल हो।
6: जी जी।
7: इसका एक सिंपल सा तरीका है कि थाली का एक अच्छा हिस्सा सब्जियों और सैलेड का हो, साथ में रोटी, चावल या मिलेट्स हो, प्रोटीन के लिए दाल, राजमा, चना, पनीर, अंडा, मांस या मछली आदि लिया जा सकता है। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि कोई महंगा खाना है, हमारे जो घर में सिंपल सा खाना रहता है उसकी आप एक वैरायटी ले लो तो वही एक बैलेंस्ड फूड बन जाता है।
6: जी तनु जी, आपके माध्यम से जाना चाहेंगे कि महिलाओं के जीवन में विभिन्न चरणों जिसमें कि किशोरावस्था, गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति में पोषण की क्या विशेष आवश्यकता रहती है?
7: महिलाओं की हर स्टेज की जरूरत जो है वो अलग है, जैसे किशोरावस्था में शरीर जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा होता है तो इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी में माँ के साथ साथ बच्चे का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इसके लिए आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन की जरूरत पर ध्यान देना है। और मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, इसके समय हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो हमें मेटाबॉलिक हेल्थ पे ध्यान देना है। इस टाइम पे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, प्रोटीन हो गया और एक रेगुलर सी फिजिकल एक्टिविटी, इन सब के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
6: जी, तो चलिए अब बच्चों पे आते हैं और बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में पोषण की क्या भूमिका रहती है?
7: बच्चों के लिए न्यूट्रिशन सिर्फ उनकी हाइट या वेट बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, कंसंट्रेशन है, लर्निंग है और इम्यूनिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे को आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं देते हैं तो इसका असर जो है उसकी फिजिकल और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो बच्चों को सिर्फ पेट भरकर ही खाना नहीं देना है बल्कि उनको वैरायटी और जो न्यूट्रिशियस फूड हो वो देना है।
6: जी, ये बताइए कि क्या केवल महंगे खाद्य पदार्थ ही पौष्टिक होते हैं या फिर स्थानीय और सस्ते खाद्य पदार्थ भी संतुलित आहार होते हैं, इसके बारे में आप कुछ उदाहरण देकर भी हमें समझा सकते हैं?
7: जी, ऐसा नहीं है कि महंगे ही जो है वो ही न्यूट्रिशियस होंगे, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो हेल्दी खाने के लिए महंगे फूड ही खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में जो नॉर्मल होता है, सब्जियां हैं हमारे हिमाचल में जैसे दालें, चने, राजमा,

0: लोविया जो रोंगी बोलते हैं हम, उसके अलावा अंडे, दूध, दही, मूंगफली और खासकर सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारे बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शंस में मिल जाते हैं हमें। और अगर नॉन वेजिटेरियन है कोई तो उनके लिए मांस, मछली, अंडा ये भी अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के और अदर न्यूट्रिएंट्स के, तो ये सब जो है वो हेल्दी फूड हम दे सकते हैं।
1: जी तनु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आसानी से उपलब्ध होने वाले कौन कौन से स्थानीय खाद्य पदार्थ पोषण की दृष्टि से सबसे अधिक लाभदायक है।
0: हिमाचल में हमारे ट्रेडिशनल फूड्स में बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन वैरायटी है, जैसे कि मिलेट्स में ले लेते हैं, रागी है, कोदरा है, कंगनी वगैरह है, फिर दूसरे अनाज है हमारे मक्की, जौ,
1: जी
0: राजमा, कुलथी और बाकी दालें। और इसके अलावा हमारे सीजनल जो भी फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, उनका तो किसी भी चीज से कोई कंपेरिजन ही नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल फूड को कम समझने के बजाय हमें उन्हें अपनी प्लेट में लाना चाहिए।
1: जी जी तनु जी, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि हम सभी ने देखा है कि आजकल जंक फूड और पैकेज खाद्य पदार्थों का चलन जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है, और इसके सेवन से कितना ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है, चाहे इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं।
0: जी, जंक फूड खाने में कोई जैसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तब है कि जब हम इसको डाइट का हिस्सा बना लें, मतलब डेली बेसिस पे हम ले आए। अगर आप एक आध बार खाते हैं महीने में एक बार, तो इसका कुछ भी नहीं है। जैसे कि इन फूड्स में अक्सर रहता है कि सॉल्ट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, फैट्स ज्यादा रहते हैं और फाइबर की कमी रहती है, और न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स हैं बाकी वो भी बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि आजकल शुगर को भी एक विलेन के रूप में ही बना दिया कि नहीं खाना है, मतलब
1: जी
0: उसको खाने का नुकसान नहीं है बट आप उसको
1: अधिक
0: एक एक्सेस मात्रा में खा रहे हैं तो नुकसान है। जैसे आजकल केक्स वगैरह है बच्चे लेते हैं बट उसमें बहुत सारी शुगर, बहुत सारा ऑयल होता है, तो या तो आप उनको घर पे ही बना के दो, अगर नहीं दे सकते तो एक लिमिट रख दो मतलब उसकी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसकी।
1: जी तनु जी, खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेट पर लिखे न्यूट्रिशन लेबल को कैसे पढ़े, और इसको लेते वक्त हम किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें।
0: इसका है कि सबसे पहले जैसे कि आप देखते हैं कि पैकेट पे कई बार लिखा होता है हेल्दी,
1: जी
0: विदाउट शुगर या मल्टीग्रेन, नेचुरल, बट जो पैकेट का सामने वाला लेबल है उस पे ही ना जाएं। सबसे पहले उसकी बैक लेबल जो
1: बैक
0: है वो
1: साइड पे
0: चेक करें, उसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करें, उसमें क्या कितनी मात्रा में है, और उसकी कैलोरीज भी चेक करें, और पैकेट में भी देखें कि कितनी कैलोरीज है। कई बार होता है कि उसमें लिखा होता है कि इन 100 ग्राम 300 या 400 कैलोरीज, बट वो पैकेट कई बार 35 ग्राम्स का होता है, कई बार 20 ग्राम्स का होता है, और कई बार 200 ग्राम्स का भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को दें कि आप उसकी कितनी मात्रा दे रहे हैं, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हैं, और इसे भोजन में हम कैसे शामिल करके इन सभी कमियों को पूरा करें।
0: जी, सबसे पहले लेते हैं जैसे आयरन। आयरन से होता है कि जैसे थकान, कमजोरी, हर टाइम नींद लगे रहना, सुस्ती पड़े रहना, चक्कर आना,
1: जी
0: तो आयरन के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं हमारी दालें, राजमा, चना और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, और मांस मछली वगैरह तो है ही अगर कोई लेता हो तो।
1: जी
0: बट इसमें एक बात यह है कि जैसे आप आयरन वाली चीजें लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप जब भी आयरन वाला कोई भी फूड ले रहे हो तो साथ में विटामिन सी वाला लो, क्योंकि विटामिन सी की वजह से आयरन जो है वो अच्छी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। फिर बात करते हैं हम जैसे कैल्शियम की, तो कैल्शियम दूध में, दही में, रागी और तिल में अच्छी मात्रा में होता है, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है विटामिन डी।
1: डी की आवश्यकता।
0: जी, और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है दालें, कोई भी ले लो, चने, राजमा, कुलथी वगैरह, और साथ में मांस मछली, अंडा, पनीर वगैरह
1: पनीर
0: ये
1: वगैरह
0: सब ले
1: शाम।
0: सकते हैं। और लास्ट में है जैसे विटामिन डी, तो इसका सबसे बढ़िया सोर्स जो कि सब जानते ही
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: सनलाइट है।
1: सनलाइट है।
0: हाँ, और बाकी जो है बाकी में थोड़ा कम रहता है बट सनलाइट जो वो एक अच्छा सोर्स है। और जैसे कि कई बार होता है कि हमें डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, बट
1: जी
0: सप्लीमेंट्स भी तभी लो जब एक डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आपको एडवाइस कर रहा है। और साथ में जब भी आप वाइटामिन डी ले रहे हो तो उसके साथ हेल्दी फैट लो, मतलब उस वाली डाइट के साथ लो जब आप एक हेल्दी फैट वाली डाइट ले रहे हो, तो उससे जो वो आपकी वाइटामिन डी जो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और साथ में जब भी आप अगर आपने कैल्शियम लेना है, वाइटामिन डी लेनी है और आयरन लेना है, तो थोड़ा डिफरेंस रखना है, कैल्शियम के साथ आयरन कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि वो आयरन, कैल्शियम जो वो आयरन को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगा।
1: चलिए, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनीमिया विशेषकर महिलाओं और किशोरियों में एक बड़ी समस्या है, इससे बचने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए।
0: जी, महिलाओं और किशोरियों में पीरियड्स के कारण जो है वो आयरन की जरूरत पर खास ध्यान देना पड़ता है। जैसे डाइट में आयरन

0: फूड जो है उनको शामिल करें, विटामिन सी वाले करें, जैसे आंवला है, अमरूद है, नींबू है। आंवला जो है वो बहुत अच्छा, एक आंवला अगर आप डेली लेते हो तो वो आपकी डेली की नीड को पूरा करने में सक्षम है। तो और वो साथ में आपके जो मील ले रहे हो आप, उसकी आयरन एब्जॉर्प्शन को भी अच्छी तरह बना रखता है। और एनीमिया जो है वो केवल एक डाइट पर ही डिपेंड नहीं है, अगर आपकी जो HB है वो कम आता है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका HB बहुत कम है तो हम उसको एक डाइट से ही सही नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमें सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं।
1: जी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बिना डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह के भी हम सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं?
0: नहीं, आपकी बॉडी को नहीं कि हर टाइम ही ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी के बारे में देखना है कि आपको क्या हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो चेक करवाना है। हो सके तो आप एक जैसे डेली रूटीन वाले टेस्ट होते हैं वो लेते रहो, फिर उसके बाद आपका डॉक्टर जैसे एडवाइस करेगा उसके अकॉर्डिंग लो। बिना ज़रूरत के जो है वो आयरन, कैल्शियम या विटामिन डी जैसी चीजों को लेना जरूरी नहीं है। पहले अपनी जरूरत को समझो, उसी के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स लो।
1: जी, अगर टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपको सजेस्ट करे तो ही ये सब चीजें।
0: हाँ, तो ही ये सब लो।
1: जी, तनु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों में खान पान कितना महत्वपूर्ण है?
0: जी, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह और हाई BP, ओबेसिटी, इन सब में खान पान के साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको चावल या जैसे बोलते हैं शुगर बिल्कुल ही बंद कर देनी है, क्योंकि शुगर तो आपके हर चीज़ में ही है।
1: जी,
0: सबसे पहले तो आप जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग जाओ, साथ में अपना जो आपकी एक्टिविटी है वो उसको एक्टिव रखो, दिन भर एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। एक अच्छा सा खाने का पोर्शन बनाओ, जैसे आपकी प्लेट में जैसे कि मैंने पहले भी बताया बैलेंस डाइट, प्रोटीन हो, फाइबर हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, नट्स हो वो, और अपनी जो आपकी एडेड शुगर है उसको एक ट्रैक पे रखो कि वो हमने एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। अपना एक लाइफस्टाइल सही रखो तो ये चीजें रिवर्स भी हो जाती है।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे तनु जी कि बरसात के मौसम में भोजन और पेयजल की स्वच्छता को लेकर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बरसात में पानी खाना है उसके दूषित होने के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी जरूरी होती है। हमेशा कोशिश करें कि सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही पिए, और अगर ज़रूरत हो तो पानी उबाल कर पी लें। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आप जब भी घर लाते हो, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि उनको कम से कम 15-20 मिनट पानी में रहने दीजिए, फिर उनको स्टोर की। वॉश तो सभी करते हैं, बट अगर आप 15-20 मिनट उनको रहने देंगे तो उसमें जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल रहते हैं। और जो कुक्ड फूड है आपका उसको भी ज़्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पर मत रहने दो, आजकल टेम्परेचर वैसे ही थोड़ा हाई रहता है, तो खाना बच गया तो उसको स्टोर कर दो, फ्रिज कर दो उसको।
1: जी तनु जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमारा आजकल का लाइफस्टाइल बन चुका है कि हम देर रात भोजन करते हैं या फिर अपना मॉर्निंग का नाश्ता करना छोड़ देते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है?
0: जैसे कि देर रात की बात है तो कई बार हम ना चाहते हुए भी देर रात को ही करना पॉसिबल हो पाता है। हो सके तो कोशिश करिए कि आप जल्दी ले लें, अगर नहीं हो रहा है तो एक लाइट सा मील लें, कोई हैवी मील मत ले रात में। और रही ब्रेकफास्ट की बात तो करते हैं, जैसे आजकल इंटरमीटेंट फास्टिंग का भी चलन बढ़ रहा है, लोग कर रहे हैं, बट आप उसमें ये देखिए कि अगर आप उसमें अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या 12 बजे तक खाना ले रहे हैं तो आप वो वाला मील जो वो उसको हैवी बना दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे तो अच्छा आप छोटे छोटे मील जो है वो 4 बार ले लीजिए दिन में।
1: जी जी।
0: दो हैवी मील्स लेने के बजाय दिन में 4 बार खाना ज्यादा सही है। बस मेन ये है कि आप अपना बैलेंस्ड डाइट रखिए, अपना एक पोर्शन कंट्रोल रखिए और अच्छी सी डाइट लीजिए।
1: जी तनु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि महिलाओं और खासकर स्टूडेंट्स के लिए दिन भर का सरल और पौष्टिक आहार किस तरह का होना चाहिए?
0: इसमें यह कि सिंपल सा और प्रैक्टिकल सा हो, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। बस वही है कि जैसे ब्रेकफास्ट में आपने पोहा, उपमा, दलिया, अंडा, रोटी सब्जी, परांठा, स्टफ्ड परांठा वो ले लिया। लंच में रोटी, चावल, दालों में से कोई भी आप ले सकते हो, साथ में सब्जी, बीच में फ्रूट्स ले लिए, नट्स ले लिए, रोस्टेड चने हैं, मखाने हैं, वो सब ले लिया। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक बैलेंस्ड मील भी देंगी और एक सिंपल सा मील भी होगा, मतलब आपको एक कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग करने की भी जरूरत नहीं रहेगी।
1: जी तनु जी, हम सभी ने देखा है कि बच्चों के लिए और खासकर मदर को जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को कुछ खिलाना, तो आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को पौष्टिक भोजन हम किस तरह से खिलाएं और ये आदत उनके अंदर हम किस तरह से पैदा करें?
0: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे जो देख

0: देखते हैं वही सीखते हैं।
1: जी
0: तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपना खान पान सुधारना होगा, क्योंकि मैक्सिमम होता है कि आजकल पेरेंट्स भी पैकेज्ड फूड है या पिज्जा बर्गर है
1: जी,
0: उस
1: जी,
0: पे
1: जी,
0: ज्यादा रहते
1: हाँ।
0: हैं, तो अगर आप खुद ही वो चीजें कम करोगे तो बच्चे भी कम कर देंगे। और मतलब उनको आप अवेयर करिए, जो आप आसपास वाले फूड्स हैं उनकी, उनको थोड़ा बहुत बताइए कि इसमें ज्यादा

0: कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, रखना सिंपल है और साथ में उनको इन्वॉल्व करना है।
1: जी जी जी अतनु जी, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर डाइट से जुड़ी ही हमें ढेरों जानकारी आजकल मिलती है, तो लोग सही और गलत जानकारी में कैसे फर्क करना सीखे?
0: उसमें ये है कि सबसे पहले आप मतलब देखिए कि जो एक सोर्स है जहाँ से आप सुन रहे हो वो एक रेलिवेंट सोर्स है या नहीं है, सबसे पहले तो वो देखिए। और हाँ, इस चीज़ पे मत जाइए कि जैसे कि आजकल आता है 5 दिन में 5 किलो गायब,
1: जी
0: तो उस पे नहीं जाना है। वो 5 दिन में 5 किलो गायब तो हो जाएगा बट वो फिर से आ जाएगा।
1: जी जी जी
0: वो तो आप एक क्रैश डाइट से कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि छोटी छोटी जो है वो आदत बनाइए अपनी, वो एक सस्टेनेबल वे में रहेगा।
1: जी तनु जी, ये बताइए कि एक लिमिटेड बजट में हम किस तरह से पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: उसके लिए जैसे कि हमारे घर पे जो नॉर्मल सोर्सेस रहते हैं वही वाले सही हैं। महंगे प्रोडक्ट्स पे जाने के बजाय जो आपके लोकल में जो भी सब्जियां मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं, उनके ऊपर जाइए। जो आपके घर में दालें रहती हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, वो वाला लीजिए। आप साथ में नट्स सीड्स हो सके तो वो ले लीजिए। स्नैक्स में भी कोशिश करिए कि नट्स पे जाएं, सीड्स पे जाएं। जो रोस्टेड वाले चने हैं, मखाने हैं, पीनट्स हैं, मूंगफली जो रहती है हमारी, ये सब जो है वो बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं, तो ये सब अपनी डाइट में शामिल करिए आप।
1: जी, कहने का मतलब ये है कि हम अपने घर पर ही जो है अपना बजट बना के जो सीजनल फ्रूट्स है, सब्जियां हैं और दालें हैं, उनको आहार में शामिल करके भी
0: जी, जी,
1: संतुलित यानी कि बैलेंस डाइट ले सकते
0: हैं, बना सकते हैं।
1: जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं श्रोताओं से बस यही कहना चाहूंगी कि हेल्दी ईटिंग को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, एक प्रॉपर प्लानिंग करिए। प्रॉपर मील प्लानिंग करेंगे तो फूड की वेस्टेज भी कम होगी। पौष्टिक खाना जरूरी नहीं है कि महंगा ही हो। आपको अपने पूरे किचन को बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी वही घर की थाली रखिए, बस उसमें वैरायटी बढ़ाइए, उसको कलरफुल बनाइए।
1: जी जी,
0: दालें, सब्जियां, फल, लोकल ग्रेन्स, मिलेट्स जो हैं उसको लाइए, दूध दही, अपनी पसंद के अनुसार अंडा, मांस, मछली, और जंक फूड और पैकेज्ड फूड जो है उससे थोड़ी सी दूरी बनाइए। मतलब रोज के बजाय उसको कभी कभार लीजिए। शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहती है, उनको भी बहुत लिमिट कर दीजिए। और फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत जरूरी है, जितना हो सके उतना फिजिकल एक्टिव रहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए। एक बार शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी खुद ही आपको बोलेगी कि नहीं आज जाना है।
1: जी जी।
0: और सबसे जरूरी बात ये है कि एक हेल्दी मील से हेल्थ नहीं बनती और एक अनहेल्दी मील से हेल्थ खराब नहीं होती। हमारी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर हमारी हेल्थ बनाती है। इस न्यूट्रिशन वीक पर कोई क्रैश डाइट शुरू करने के बजाय एक छोटा और टिकाऊ बदलाव शुरू कीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन किसी एक सप्ताह की बात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट है।
1: जी तनु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
2: तो श्रोताओं, आपने ये जानकारी सुनी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर, और हम भी अपने श्रोताओं को यही कहेंगे कि इस पोषण सप्ताह के पहले दिन खुद से एक वादा करते हैं, प्लेट में सलाद, हरी सब्जियां और संतुलित भोजन को बढ़ाएंगे और पैकेट वाले जंक फूड को बाय बाय कहेंगे। क्योंकि वैसे भी श्रोताओं, पहला सुख निरोगी काया होती है और इसीलिए अच्छा खाइए और अपनी सेहत से प्यार कीजिए।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
4: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे, 10 लाख दीजिए बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए, 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?

0: बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
5: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
6: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
5: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
7: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
8: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
7: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
9: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
10: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
11: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
12: और श्रोता लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं कर्नेल राणा का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं, डीजे प्रस्तुत है सजीव, फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।
1: हेलो धर्मशाला, हेलो धर्मशाला,
0: श्रोताओं गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो धर्मशाला में आप सबका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और स्टेशन है आकाशवाणी धर्मशाला। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। तो दोस्तों, घड़ी में 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो का, जिसका नाम है हेलो धर्मशाला। और ये वह शो है जहाँ पर सुर हमारे होते हैं लेकिन आवाज़ फरमाइश आपकी होती है। अगले एक घंटे के लिए हमारी फ़ोन लाइन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खुल चुकी हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन और घुमाइए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर

फोन नंबर है 01892224391। 01892224391 करिए अपने दिल की बात और साथ ही सुनिए अपनी पसंद का गीत। लेकिन श्रोताओं को ये बता दें कि फिल्में होंगी हमारी पसंद की। आज इस कार्यक्रम में जो फिल्में हमने चुनी हैं उनके नाम अपने श्रोताओं को सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं, तो जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और नोट कीजिए आज के कार्यक्रम में शामिल की जाने वाली फिल्मों के नाम। तो श्रोताओं, फिल्में हैं हमारे पास टू स्टेट्स, बलमा, बेमिसाल, ब्लैकमेल, मधुमति, संगम, शेरशाह, सिलसिला, ताल, तीसरी मंजिल, तुम्हारी सुलू, यादों की बारात और जमीन।

0: जी श्रोता, और हमारे फ़ोन की घंटियां जो हैं वो बजना शुरू हो चुकी हैं और कॉलर्स फ़ोन नंबर मिलाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना परिचय दे दीजिए।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। फिल्म का नाम है बलमा।
0: जी जी, और आप क्या करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में।
1: खेती किसानी करते हैं दीदी,
0: और
1: अभी खेत पर आए थे।
0: जी, इनसे संपर्क हमारा टूट गया है और एक बार फिर से हमें अपने श्रोताओं से निवेदन भी करना पड़ेगा कि कृपया जब भी स्टूडियो का नंबर मिलाते हैं तो हमारे स्टूडियो का नंबर मिलाते वक्त सिग्नल का पूरा पूरा ध्यान रखें। फरमाइश इनकी हमें मिल चुकी है और इनकी पसंद पर हम सुनवाने जा रहे हैं बलमा फिल्म का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं त्रिपुरा से अविनाश बोल रहा हूँ
0: जी अविनाश जी, कैसे हैं आप?
1: जी। बहुत बढ़िया है। और आज मूवी का नाम पहले बता देते हैं। मूवी है ब्लैकमेल, से कुमार सानू जी का आवाज में सुनाइए।
0: जी ये ब्लैकमेल जो है वो पुरानी वाली है जिसमें धर्मेंद्र जी हैं। जी जी और कुछ बताइए त्रिपुरा के बारे में, क्या खास बात है वहाँ की?
1: यहाँ पर तो देखिए अभी रिमझिम रिमझिम बारिश चल रहा है। और यहाँ पर खास बात है कि यहाँ पर टी गार्डन के भरमार पड़े हुए हैं। रबर का भी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, जो पूरे देश में रबर का यहाँ पर आम रफ्तानी होता है। उसके बाद फिर यहाँ का खास बात है कि घूमने लायक बहुत सारी जगह है, जो हमारे 51 शक्तिपीठों में से त्रिपुरेश्वरी टेम्पल के नाम से जाना जाता
0: चलिए
1: है।
0: बहुत अच्छी बात है। और ये चाय के बगीचे जो हैं वो त्रिपुरा की शान है और साथ ही वहाँ की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं।
1: जी, बिल्कुल।
0: जी बहुत अच्छी बात है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हाथों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो धर्मशाला, और कॉलर हमें लगातार यूं ही कॉल करते जा रहे हैं। तो जानिए अगले कॉलर का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और जानते हैं कौन है वो। हेलो जी, नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए।
4: जी, योगेश जांगड़े पे मैं तरह छपती
3: जी। जांगड़े जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
4: ब्लैकमेल से सुनवा
3: जी। ब्लैकमेल फिल्म का गीत अभी हमने सुनवाया है, किसी और फिल्म का गीत बताएं
4: जी। जी, तो आप हमें ये क्या फिल्म बताए, लास्ट में थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो
3: फिल्में हैं हमारे पास, फिल्में हैं हमारे पास टू स्टेट्स, बेमिसाल, मधुमती, संगम, शेरशाह, सिलसिला, ताल, तीसरी मंजिल, तुम्हारी सुलु, जमीन और यादों की बारात।
4: सिलसिला से सुनवा देंगे
3: जी। सिलसिला फिल्म से हम आपको गीत सुनवाने जा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल किया, आपका धन्यवाद जी। श्रोताओं, सिलसिला फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे और इसके साथ ही हमें थोड़ा रुकना भी पड़ेगा प्रादेशिक

समाचारों के लिए। और इसके साथ ही हम अपने श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि जिन श्रोताओं का कॉल पिछले हफ्ते हेलो धर्मशाला में लग चुका है, कृपया इस बार वो थोड़ा सा विराम दें और थोड़ा सा इंतज़ार करें और दूसरे नए श्रोताओं को भी हम संग जुड़ने का मौका दें।

श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो धर्मशाला अब आप सुन पाएंगे 9:30 पर, क्योंकि सुबह के 9:18 होने को हैं और थोड़ी ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के शिमला स्टूडियो, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 6 नए विधेयक होंगे पुनः स्थापित। बारिश से हुए नुकसान और खनन में मजदूरों के दबने पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। रोजगार पर चर्चा रहेगी जारी। प्रदेश भाजपा विधायक दल की अहम बैठक शिमला में आयोजित। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर किया विचार विमर्श। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल जनवरी में नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लाहौल स्पीति प्रशासन ने 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खेपन ग्लेशियर झील की निगरानी और आपदा तैयारियों को मजबूत करने का लिया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज 8वीं बैठक है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 6 नए विधेयकों को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा

0: सदन में तीन अहम दस्तावेज भी रखे जाएंगे, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 91वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सोलन स्थित नौनी विश्वविद्यालय के 2021-22 और 22-23 के ऑडिट व निरीक्षण प्रतिवेदन, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 शामिल है। वहीं सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा में आएंगे, जिनमें विधायक सुल्तानपुरी गत दिनों परवाणु व नजदीकी गांव में हुए वर्षा से नुकसान और विधायक विक्रम सिंह ठाकुर कमरू में खनन के दौरान तीन मजदूरों के दबने की घटना पर सरकार का ध्यान खींचेंगे। इसके अलावा सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी दो स्टाम्प विधेयक संशोधन वापस लेने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सदन में नियम 130 के तहत कल से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी, जिसमें पक्ष व विपक्ष के विधायक हिस्सा लेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रदेश भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक कल देर सायं शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने भी बैठक में मुख्य रूप से हिस्सा लिया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विधायक दल के साथ विस्तृत चर्चा की और सदन में पार्टी की भूमिका, संगठन व विधायक दल के बीच बेहतर समन्वय और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर विचार साझा किए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वे प्रदेश की जनता से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषयों को पूरी मजबूती और तथ्यों के साथ सदन में रखें। बैठक में अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा एफआईआर किए जाने के विरोध में कल प्रदेश कांग्रेस ने शिमला में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किया गया, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय इस घटना पर आपत्ति जताने वाली पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना निंदनीय है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सर्व समाज की विचारधारा है और भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। उन्होंने एफआईआर को तत्काल वापस लेने की मांग भी की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के सिलसिले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एनआईए ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां आतंकी हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने और घटना से जुड़े व्यापक नेटवर्क और संबंधों का पता लगाने के लिए चल रही जांच का हिस्सा है। आरोपियों की सटीक भूमिकाओं का पता लगाने, उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने और हमले के पीछे के आपराधिक नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एनआईए की जांच जारी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। शेष समाचारों में, नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने भी एहतियातन तौर पर अब 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन ग्लेशियर झील की निगरानी और आपदा तैयारियों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त किरण भडाना ने बताया कि झील के जलस्तर और अन्य महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी के लिए इस माह में सी डेक के सहयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का सफल परीक्षण सिसु झील पर हो चुका है और आवश्यक आंकड़े भी प्राप्त किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि घेपन झील का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की 5 सदस्यीय टीम आज से अगले

0: 15 दिनों तक क्षेत्र में अध्ययन करेगी। मंडी जिला के सुंदरनगर को स्वच्छ व नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन ने जमीनी स्तर पर पहुंचने के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत एसडीएम अमर नेगी शहर की बस्तियों में पहुंचकर लोगों को स्वच्छता व नशे के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: स्वच्छ हवा और नशा मुक्त सुंदरनगर अभियान के तहत एसडीएम अमर नेगी शहर की स्लम बस्तियों में पहुंचे और लोगों से सीधे संवाद कर स्वच्छता के साथ साथ नशे के खिलाफ जागरूक किया। बीएसएनएल एक्सचेंज और बस स्टैंड के समीप बस्तियों का दौरा कर उन्होंने मौके पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से खुले में कूड़ा न फेंकने तथा कचरा जलाने से बचने की अपील की। उन्होंने मकान मालिकों को भी अपने परिसरों और आसपास सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। खासतौर पर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए एसडीएम ने कहा कि स्वच्छ हवा और नशा मुक्त समाज केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही संभव है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये निर्देश 2013 में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के लिए उचित पुनर्वास उपाय तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर विचार करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि पुनर्वास उपायों में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता और उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा शामिल होनी चाहिए। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भी मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मॉनसून की वर्षा से अभी तक यातायात के लिए 76 सड़कें बंद हैं जिन्हें बहाल करने का कार्य जारी है। इसके अलावा 5 बिजली ट्रांसफार्मर और 72 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, सरकार 5 लाख तक वेतन देने को तैयार, फिर भी दूरदराज सेवा देने नहीं जा रहे डॉक्टर। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, एक पंचायत में एक ही स्वास्थ्य केंद्र होगा। दैनिक भास्कर लिखता है, प्रसूता की मौत पर सदन में हंगामा, सीएम बोले दोषी को नहीं बख्शेंगे। पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, किसानों को जबरन नैनो यूरिया प्लस देने पर हंगामा, पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक। दैनिक जागरण की एक खबर है, हिमाचल की बर्फीली चोटियों पर जल प्रलय का खतरा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 6 नए विधेयक होंगे पुनः स्थापित। बारिश से हुए नुकसान और खनन में मजदूरों के दबने पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। रोजगार पर चर्चा रहेगी जारी। प्रदेश भाजपा विधायक दल की अहम बैठक शिमला में आयोजित। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर किया विचार विमर्श। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल जनवरी में नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लाहौल स्पीति प्रशासन ने 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन ग्लेशियर झील की निगरानी और आपदा तैयारियों को मजबूत करने का लिया निर्णय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक

0: चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो धर्मशाला में एक बार फिर से आप सब सुनने वालों का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं वंदना रैना आपके साथ, और श्रोताओं की सुविधा के लिए एक बार फिर से हम फिल्मों के नाम बताने जा रहे हैं जो अब से लेकर 10 बजे तक हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिल्में हैं हमारे पास टू स्टेट्स, बेमिसाल, मधुमती, संगम, शेरशाह, ताल, तीसरी मंजिल, तुम्हारी सुलू, यादों की बारात और जमीन। जी श्रोताओ, इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391, ये है हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर। और श्रोताओं से निवेदन भी करेंगे कि कृपया सिग्नल का पूरा ध्यान रखें जब भी वो हमारे स्टूडियो का नंबर मिलाते हैं, ताकि उनसे अच्छे से बात हो पाए। हेलो,
4: हेलो वंदना जी, नमस्कार।
3: नमस्कार राणा जी, कैसे हैं आप?
4: बहुत बढ़िया है जी, भगवान की कृपा है, आपकी दुआ है।
3: जी जी,
4: और बहुत अच्छे से चल रहे हैं।
3: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कार्यक्रम में आज क्या फरमाइश है आपकी?
4: देखिए, संगम फिल्म वो राजकपूर वाली है ना?
3: जी जी, वही है।
4: तो उसका टाइटल सॉन्ग है तेरे मन की जमुना और मेरे मन की गंगा का संगम होगा के नहीं, वही गाना सुना दीजिए मुकेश की आवाज में।
3: जी बिल्कुल, आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म से ये गीत, लीजिए सुनिए।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: जज्जा

0: हेलो हेलो जी, इन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये वापस से हमारे स्टूडियो का नंबर मिलाएंगे। और आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01892224391। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, अपना परिचय दे दीजिए।
1: राकेश कुमार बोल रहा जी, मलेरकोटले तो पंजाब तो।
0: जी राकेश जी, सबसे पहले आप अपनी पसंद की फिल्म बता दीजिए।
1: भाई तार से तार मिला।
0: जी ताल फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी टाइटल सॉन्ग।
0: जी बहुत अच्छी बात है, और आपकी पसंद पर हम आपको ये गीत भी सुनवाने जा रहे हैं। डीजे सुनिए और इंजॉय कीजिए। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, सिर्फ 20 मिनट हमारे पास शेष हैं इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, और हम आपको बता दें कि जो फिल्में अब हमारे पास बची हैं वो हैं टू स्टेट, बेमिसाल, मधुमति, शेरशाह, तीसरी मंजिल, तुम्हारी सुलू, यादों की बारात और जमीन। इन फिल्मों से कोई भी गीत अगर आप सुनना चाहते हैं तो मिलाएं हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391 और सिग्नल का पूरा ध्यान रखें जो बहुत जरूरी है।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हेलो जी, इन श्रोताओं ने इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं किया और शायद से सिग्नल का ध्यान भी नहीं रखा है, इसीलिए इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और श्रोता, आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, सिग्नल का पूरा ध्यान रखिए और फिर मिलाइए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर। हेलो।
2: हेलो,
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
3: गोल्डी बोल रहा हूँ जी।
1: जी गोल्डी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: हिमाचल प्रदेश सराज से।
1: जी श्रोताओं, लाइन बार बार कट रही है और श्रोताओं से निवेदन भी हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं सिग्नल में क्या प्रॉब्लम है जो उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
4: मैं जी करतार चंद बोल रहा हूँ, गांव मोहल्ला।
1: जी करतार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, लेकिन सबसे पहले हम आपकी पसंद की फिल्म जानना चाहेंगे।
4: यादों की बारात का सुना
1: जी, और इस फिल्म का कौन सा गीत आपकी पसंद का है?
4: यादों की बारात निकली है दिल के
1: द्वार जी, इस फिल्म का टाइटल गीत आप सुनना चाहेंगे
4: जी।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम है हेलो धर्मशाला, और कौन बोल रहे हैं आप?
1: गोल्डी बोल रहा हूँ जी। टू स्टेट का गाना सुनना है मुझे, टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा, आपने अभी भी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था।
1: हाँ जी मैम।
0: चलिए, कोई बात नहीं, आपका फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और फ़ोन लाइन आपकी कनेक्ट हो गई है। तो चलिए, टू स्टेट फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कोई खास गीत सुनना चाहेंगे इस फिल्म से?
1: नहीं मैम, टाइटल सॉन्ग सुनना है इसका।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनेंगे।
1: हाँ जी मैम।
0: इस फिल्म में है टाइटल सॉन्ग?
1: पता नहीं मैम मुझे तो।
0: जी, इस फिल्म का एक बहुत ही हिट गीत हम आपको सुनवाते हैं, और कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए आपका शुक्रिया। ये क्या हो गया?

0: हेलो जी श्रोताओ, थोड़े ही मिनट हमारे पास शेष बचे हैं, लगभग 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, और हम श्रोताओं को कहेंगे कि सिग्नल का पूरा ध्यान रखें ताकि उनसे बात हो पाए और कार्यक्रम में वो अपनी पसंद का गीत भी सुन पाएं। हेलो
1: नमस्कार मैम,
0: जी, नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मुकेश बोल रहा हूँ मैम, पालमपुर से जी।
0: जी मुकेश जी, सबसे पहले अपनी पसंद की फिल्म बता दीजिए।
1: मैम कौन बची हैं फिल्में?
0: फिल्में हैं हमारे पास बेमिसाल, मधुमती, शेरशाह, तीसरी मंजिल, तुम्हारी सुलु और जमीन। जी, इनसे संपर्क हमारा टूट गया है, तो श्रोताओं जल्दी से मिलाइए 01892224391 और सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: जी
0: हेलो,
1: नमस्ते, प्रेम
0: नमस्कार जी।
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा,
0: जी
1: तहसील
0: प्रेम सिंह
1: नागदा,
0: जी,
1: जिला उज्जैन
0: सबसे
1: से
0: पहले आप अपनी पसंद की फिल्म बता दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम
1: जी।
0: में
1: आप
0: समय विशेष नहीं है हमारे पास
1: हाँ जी,
0: बहुत ज़्यादा।
1: काफी समय कम है तो आप कोई सा भी फिल्म का गीत सुना दीजिए जो बची है उनमें से।
0: चलिए ठीक है, और कुछ
1: हाँ
0: बताना चाहेंगे अपने बारे में?
1: जी, बताना चाहेंगे, खेती किसानी का काम करता हूँ मैं और मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुनता हूँ
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, यूं ही सुनते रहिए और
1: जी।
0: साथ ही अनाज उत्पन्न करते रहिए, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

श्रोताओं, आज के हेलो धर्मशाला कार्यक्रम में बस इतना ही। और जिन श्रोताओं के इस कार्यक्रम में आज कॉल लग चुकी है, उनसे ये निवेदन है कि कृपया अगले एक महीने तक थोड़ा सा इंतज़ार करें और दूसरे नए श्रोताओं को भी हम संग जुड़ने का मौका दें। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने।

0: और इसी के साथ वंदना रैना को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो धर्मशाला, हेलो धर्मशाला।
2: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। सुबह के 10 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है गीतों का कारवां। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीतों का कारवां में आप सभी संगीत प्रेमियों को ज्योति का स्नेह अभिवादन। श्रोताओं, संगीत का कोई दौर नहीं होता, संगीत तो खुद में एक खूबसूरत दौर है जो हर दिल को छू लेता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सुरों का ये हसीन सफर। आज की हमारी पहली पेशकश है फिल्म रंग से ये खूबसूरत गीत। नदीम श्रवण का बेहतरीन संगीत, समीर के बोल और कुमार सानू व अलका याग्निक की जादुई आवाजें।

गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। अब सुनवाते हैं आपको सैनिक फिल्म से ये अगला गीत। इस फिल्म के गीत आज भी श्रोताओं सुनने वालों को एक अलग ही सुकून देते हैं।

कुमार सानू और साधना सरगम की मखमली आवाजों से सजा ये बेहद खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट्स पर है। गीत को लिखा है समीर ने, धुन एक बार फिर बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला, SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। अब इस कारवां को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं अब फिल्म राजा की तरफ। नदीम श्रवण का लाजवाब संगीत और समीर के लिखे सदाबहार बोलों से सजी इस फिल्म के हर एक गीत को आज भी संगीत प्रेमी बहुत पसंद करते हैं।

जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर

फूल और कांटे फिल्म से ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों से सजा हुआ। कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आप तक पहुंचा रहे हैं आशिक फिल्म से। ये एक ऐसा गीत है जिसमें सादगी भी है, ठहराव भी है और जिसने हर किसी को अपना दीवाना भी बना लिया। जी हाँ, संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन से सजा ये गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर है। गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण, समीर ने इस गीत को लिखा है।

उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपके दिल के बेहद करीब रहा होगा। दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे, पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं करनैल राणा की आवाज़ में गाए इस बेहद खूबसूरत लोकगीत के साथ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
1: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
1: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
1: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
1: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए।
2: जी,
1: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
2: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
1: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
2: जी,
1: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
2: जी,
1: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
2: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को

0: हुक्म दिया।
1: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
0: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया।
1: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
0: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
1: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
0: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दीं और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राव शहीद हो गए, लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली। उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
1: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
0: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
1: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे? आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name?
5: No.
3: I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
6: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
6: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
6: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
5: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन

0: coming.
1: Oh, yes, sure. Yes, yes. Why not? Why not?
2: Come, yeah. Hey. Come. John, please come here.
1: Oh, sure, hey. Sure. Hey.
0: Join us for a drink, please.
3: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
4: अच्छा।

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने

0: उन्हें सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
1: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है, हरित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।
2: और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
3: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
0: मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
2: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं।
0: जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
2: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: प्रोफेसर डेनिस क्लेट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
4: प्रोफेसर डेनिस
5: जी,
4: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
5: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
4: ओह।
5: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
4: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
5: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
4: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
5: जी।
4: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
5: तो लीजिए सुनिए।
0: जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं, उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: 237 हफ्तों तक चली एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
6: और प्रश्न करो,

0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
1: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: मान विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग।
7: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को है अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज 8वीं बैठक है। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 6 नए विधेयकों को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा सदन में 3 अहम दस्तावेज भी रखे जाएंगे, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 91वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सोलन स्थित नौनी विश्वविद्यालय के 2021-22 और 22-23 के ऑडिट व निरीक्षण प्रतिवेदन, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 शामिल है। वहीं सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा में आएंगे, जिनमें विधायक सुल्तानपुरी गत दिनों परवाणु व नजदीकी गांव में हुए वर्षा से नुकसान और विधायक विक्रम सिंह ठाकुर कमरू में खनन के दौरान 3 मजदूरों के दबने की घटना पर सरकार का ध्यान खींचेंगे। इसके अलावा सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी 2 स्टाम्प विधेयक संशोधन वापिस लेने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सदन में नियम 130 के तहत कल से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी, जिसमें पक्ष व पक्ष के विधायक हिस्सा लेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रदेश भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक कल देर सांय शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने भी बैठक में मुख्य रूप से हिस्सा लिया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विधायक दल के साथ विस्तृत चर्चा और सदन में पार्टी की भूमिका, संगठन व विधायक दल के बीच बेहतर समन्वय और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर विचार साझा किए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वे प्रदेश की जनता से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषयों को पूरी मजबूती और तथ्यों के साथ सदन में रखें। बैठक में अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस साल जनवरी में प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन

0: किचन में हुए विस्फोट के सिलसिले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एनआईए ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां आतंकी हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने और घटना से जुड़े व्यापक नेटवर्क और संबंधों का पता लगाने के लिए चल रही जांच का हिस्सा है। आरोपियों की सटीक भूमिकाओं का पता लगाने, उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने और हमले के पीछे के आपराधिक नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एनआईए की जांच जारी है। नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने भी एहतियातन तौर पर अब 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन ग्लेशियर झील की निगरानी और आपदा तैयारियों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त किरण भडाना ने बताया कि झील के जलस्तर और अन्य महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी के लिए इस माह में सी डेक के सहयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का सफल प्रशिक्षण सिसु झील पर हो चुका है और आवश्यक आंकड़े भी प्राप्त किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि घेपन झील का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की 5 सदस्यीय टीम आज से अलग 14 दिनों तक क्षेत्र में अध्ययन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये निर्देश 2013 में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के लिए उचित पुनर्वास उपाय तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर विचार करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि पुनर्वास उपायों में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता और उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा शामिल होनी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 और 20 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ।

0: गूंज पहाड़ों की ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: जन्मजय सिंह की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रदीप परदेसी की आवाज में आइए सुनते हैं ये अगला लोकगीत।

आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। आइए अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको रवि रघुवंशी की आवाज में गाया हुआ ये अगला लोकगीत।

कार्यक्रम के इसी अंतिम लोकगीत के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की अब आपकी रेडियो दोस्त ज्योति लेती है आपसे अनुमति। नमस्कार।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:30 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण रिले किया जाएगा। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: चलते रहे अतर सईद और डी एंड्रू, आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, मैं अतहर सईद अपने सहयोगी कमेंटेटर डी एंड्रयू के साथ आकाशवाणी की ओर से विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा। आज का ये अलंकरण समारोह माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उनकी गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि गणमान्य व्यक्तियों का आगमन का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। एंड्रयू,
2: आज का दिन हमारे बल के लिए,
3: इन फैक्ट द चीफ गेस्ट सेंट्रल होम सेक्रेटरी श्री गोविंद मोहन हैज अराइव्ड एंड सीटेड नेक्स्ट टू हिम आर मिस्टर अनीश दयाल द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड डॉक्टर राजेंद्र कुमार द सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट। And today they are celebrating the investiture ceremony of the Sashastra Seema Bal, and this is being held in the plenary hall of Vigyan Bhavan. The hall is packed with personnel of the SSB in their khaki uniforms.
1: बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है जब राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और देश सेवा के लिए समर्पित सशस्त्र सीमा बल के वीर अधिकारियों और जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं, साहस और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें अलंकृत किया जाएगा। समारोह में माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी का आगमन यहां पर हो चुका है। श्रोताओं के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में की गई थी। बाद में इसे भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व भी

0: That was the anthem of the Sashastra Seema Bal, or the SSB song. And now the welcome address by the Director General, Sashastra Seema Bal, Shri Sanjay Singhal, IPS officer of the 1993 branch.
1: हम देख पा रहे हैं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह सचिव इस समय यहां पर मौजूद हैं. उनको उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका आगमन का आभार व्यक्त किया जा रहा है, उन्हें पौधा भेंट किया जा रहा है और यहां पर उपस्थित जन तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं. सभी गणमान्य व्यक्ति एक बार फिर अपने आसन पर बैठते हुए
2: अलंकरण समारोह के इस विशेष अवसर पर भारत के केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी की उपस्थिति न केवल इस स्तंभ को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है बल्कि आज समस्त सशस्त्र सीमा बल आपकी उपस्थिति से अभिभूत है. महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल सशस्त्र सीमा बल परिवार के इसी भाव को व्यक्त करने तथा स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं.
1: और अब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री संजय सिंघल द्वारा स्वागत संबोधन हम सुन पाएंगे. माइक्रोफोन पर श्री संजय सिंघल.
3: आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशकगण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशकगण, विशिष्ट अतिथिगण, आज अलंकृत होने वाले सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता, उनके गौरवान्वित परिवारीजन, एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे साथी देवियों और सज्जनों, आप सभी का सशस्त्र सीमा बल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणवश माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, परंतु उन्होंने वीरता पदक के अलंकरण अधिकारियों, कर्मियों और परिवारिक जनों को एवं समस्त एसएसबी परिवार हेतु अपनी हार्दिक शुभेच्छाएं प्रेषित की हैं. मैं समस्त एसएसबी परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनकी शुभेच्छा हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. मैं माननीय केंद्रीय गृह सचिव महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी उपस्थिति से हमारे अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों का उत्साहवर्धन किया. आज हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का अवसर है. आज न केवल हमारे 18 साथियों को वीरता एवं पराक्रम के सर्वोच्च समर्पण के लिए एवं 5 साथियों को डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए सम्मानित किया जाएगा, बल्कि राष्ट्र सेवा की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाली 248 करोड़ रुपए लागत की आधारभूत संरचना परियोजनाओं का भी आभासी माध्यम से महोदय द्वारा लोकार्पण किया जाएगा. सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में भारत चीन युद्ध के पश्चात हुई थी और वर्ष 2001 में बल को भारत नेपाल तथा वर्ष 2004 में भारत भूटान की कुल 2450 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया. इन सीमाओं की अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं. भारत नेपाल सीमा पर प्रतिदिन लगभग 46,000 वाहन और 3.25 लाख से अधिक व्यक्ति तथा भारत भूटान सीमा पर लगभग 8,000 वाहन और एवं 50,000 से अधिक व्यक्तियों का आवागमन होता है. इतनी बड़ी संख्या में वैध आवागमन के बीच सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए

0: सुरक्षा, संवेदनशीलता और मित्र संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारे अधिकारी और जवान मादक पदार्थों, हथियारों, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, अवैध आवर्जन तथा अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही सशस्त्र सीमा बल, आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, CI ऑपरेशंस, इलेक्शन ड्यूटी, कानून व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दायित्वों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान में नेपाल में आई भयावह त्रासदी से निपटने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में SSB के बचाव व राहत दल अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। आज सुरक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हाइब्रिड वारफेयर, साइबर एवं इंफॉर्मेशन वारफेयर, ड्रोन आधारित खतरे और तस्करी के नए नए तौर तरीके हमारे सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में सशस्त्र सीमा बल का आधुनिकरण निरंतर जारी है। बल के तकनीकी आधुनिकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक निगरानी प्रणालियों, आधुनिक संचार साधनों, ड्रोन एवं अन्य तकनीकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से हमारी परिचालन क्षमता को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप तकनीकी दक्षता और आधुनिक साधनों का समावेश हमारी प्राथमिकताओं में है। सीमावर्ती क्षेत्र में विन हार्ट्स एंड माइंड हमारी कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिविक एक्शन प्लान के माध्यम से हम सीमावर्ती नागरिकों तक सुरक्षा के साथ साथ विकास और विश्वास का संदेश पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा लक्ष्य केवल सीमाओं को सुरक्षित करना ही नहीं बल्कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत, सजग समाज के संकल्प के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एक जागरूक और सशक्त सीमावर्ती समाज का निर्माण करना भी है। SSB ने विगत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 28 स्वर्ण, 25 रजत एवं 40 कांस्य पदक समेत कुल 93 पदक जीते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए विशेष प्रदर्शन करने वाले 19 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग, नशा मुक्ति भारत अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी SSB निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं गृह विभाग के मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जल कल्याण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आधुनिकरण और कार्मिक कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। सशस्त्र सीमा बल इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में अपना जिम्मेदारी के अनुरूप पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहा है। आज इस अवसर पर मैं गृह मंत्रालय के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के कारण ही सशस्त्र सीमा बल आज एक आधुनिक, प्रोफेशनल और जन केंद्रित सीमा प्रहरी के रूप में उभरा है। अंत में मैं पुनः गृह सचिव महोदय का SSB परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी गर्मयमयी उपस्थिति और प्रेरणादायक मार्गदर्शन से आज के इस अवसर को विशेष बना दिया है। आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय SSB।
1: That was the welcome address by the Director General, Shri Sanjay Singhal, an IPS officer of the 1993 cadre. And now, we have the online inauguration of the SSB projects by the Honorable Chief Guest, the Home Secretary, Shri Govind Mohan. And this will be followed by unveiling of the SSB e-magazine.
2: बहुत ही गौरव के क्षण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभागार जवानों से खचाखच भरा हुआ है और गणमान्य व्यक्ति मंचासीन। इस समय हम देख पा रहे हैं कि समारोह के मुख्य अतिथि और माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन महोदय SSB परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य।
1: Press the button and there it comes on the screen right behind them and it has been inaugurated and what a beautiful sight it is over here with people clapping and of course the SSB
3: सशस्त्र सीमा बल परिसर फरीदाबाद हरियाणा में 440 अत्याधुनिक पृथक आवासीय भवन बनकर तैयार हैं। हर जरूरत का सम्मान करते हुए इस परिसर में टाइप 2 के 336 आवास, टाइप 3 के 96 आवास और अधिकारियों के लिए टाइप 4 के 8 विशिष्ट आवास, सोलर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग

0: सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीसीटीवी सर्वेलेंस, मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक भव्य मल्टीपर्पस हॉल के निर्माण का कार्य 170 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ अधिकारी आवासीय मैस तथा टाइप 2 के 48, टाइप 3 के 6 एवं टाइप 5 के 3 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य 31 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 30वीं वाहिनी दिरांग अरुणाचल प्रदेश में टाइप 2 के 80 आवास एवं टाइप 3 के 28 आवास के निर्माण का कार्य 46 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। यह उपलब्धि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सशस्त्र सीमा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है।
1: तो हमने देखा कि SSB परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन यहां पर हुआ माननीय केंद्रीय गृह सचिव द्वारा। और अब सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की ई स्मारिका का अनावरण माननीय श्री गोविंद मोहन जी के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत ही शानदार दृश्य यहां पर नजर आ रहा है विज्ञान भवन नई दिल्ली के इस सभागार में।
2: And now, the chief guest, the secretary, he is going to unveil the e-magazine of the SSB.
1: SSB की स्मारिका का अनावरण इस समय स्क्रीन पर पत्रिका के पृष्ठ उलटते हुए बहुत ही गौरवशाली क्षण यहाँ पर है। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, और यही भावना यहाँ पर नजर आ रही है। यही भावना बल के कार्यों में नजर देती है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ विश्वास, सहयोग और सौहार्द का संबंध बल यहाँ पर रखता है।
2: That was the unveiling of the SSB e-magazine, and now we're going to start the investiture ceremony. And the Central Home Secretary, Shri Govind Mohan, he is the chief guest for this gathering over here, and he is going to give away the awards to the ones who have really done their yeoman work, and of course for the selfless duty towards the safety of the country and of contribution towards the security of their motherland, that is India. And now it will be starting in a very short while, and of course about 18 people are going to get the awards for the fantastic service which they have done for the safety of the country, and of course the selfless contribution towards the security of their motherland.
1: असाधारण साहस, उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्य के प्रति अदम्य निष्ठा का प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाना यकीनन पूरे बल के मनोबल को नई ऊंचाई प्रदान करता है।
3: 23 नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के माटला रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में चल रही रावघाट रेलवे लाइन परियोजना के पास सीओबी कोसरुंडा 33वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल केवटी के 30 जवानों की रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन पार्टी पर लगभग 130 से 150 नक्सलियों ने हथियार व गोला बारूद लूटने के उद्देश्य से घात लगाकर हमला किया, जिसके उपरांत तत्काल ही उप निरीक्षक चंद्रमोनी मजुमदार व उनकी टीम ने अत्यंत दिलेरी के साथ बेहतर रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए न सिर्फ उस हमले को विफल किया बल्कि 3 दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया। इनके अदम्य साहस, दृढ़ता और असाधारण कार्य हेतु इन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है।
4: इसी क्रम में दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया जिस हेतु मरणोपरांत वीरता पदक हेतु आमंत्रित हैं, दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी शर्मा।

0: on their chest. Yeah. And he gives them the scroll and they salute the chief guest, the Home Secretary, and they walk back. One person was given posthumously, whose wife came and collected the scroll.
1: Mukhya Arakshi Narendra.
2: Kendri Krihi Sachiv Bharat Sarkar Shri Govind Mohan ki garima mein upasthiti mein unke karkamalon se yahan par alankaran samaroh chal raha hai. Karkal dhwani se yahan par upasthit jawan utsah badhate hue sadhiv kadmon se मंच
3: दिनांक 11 फरवरी 2021 को बिहार के लखीसराय के चिरोन कुंडासी के घने व दुर्गम जंगलों में नक्सली गतिविधि के संदर्भ में पुख्ता खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए उप कमांडेंट हेमंत कुमार और उनकी टीम ने उत्कृष्ट शौर्य रणनीतिक समझ और साहस का परिचय देते हुए एक सशस्त्र नक्सली को मार गिराया व एक इंसास राइफल तथा भारी मात्रा में गोला बारूद के बरामदगी में सफलता हासिल की. उप कमांडेंट हेमंत कुमार व उनकी टीम के चार सदस्यों को उनके असाधारण वीरता, अदम्य साहस और शौर्य को सम्मान देते हुए वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है.
2: ये क्षण केवल
1: आमंत्रित है उप कमांडेंट हेमंत कुमार
2: बल्कि उनके परिवार, उनके साथियों और पूरे सशस्त्र सीमा बल के लिए गर्व का क्षण है. वर्दी केवल एक परिधान नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है. सभागार में उपस्थित जवान करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए उत्साह वर्धन करते हुए
0: द मोटो ऑफ एसएसबी इज सर्विस
1: सहायक कमांडेंट सैयद अफसर
0: ब्रदरहुड दे रिस्क देयर लाइफ दे फाइट अगेंस्ट द नक्सलाइट्स हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बट फॉर देम Service comes first, risking the life for the safety of the country. And for that, they are being awarded today. They are getting a scroll and a medal.
2: Seema par tainat hamare jawanon ka jeevan kathin
1: parishtiyon ke beech Arakshi Raut Yogendra Ramchandra
2: nirantar satarkata aur seva ka jeevan hai. Alankaran samaroh yahan par Vigyan Bhavan ke sabhagar mein garv ka kshan गौरवशाली क्षण तमाम जवानों के लिए, सशस्त्र सीमा बल के लिए और हम सब के लिए.
1: आरक्षी जुनमुनि बरुआ
2: सदे हुए कदमों से सीना ताने हुए ये जवान अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के सामने मेडल और प्रशस्ति पत्र उनके हाथ में छायाकार इन क्षणों को कहते हुए
1: आरक्षी रितेश कोंगारी
0: दिस सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर टू ऑनर द पर्सनल्स फॉर देयर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ देयर मदरलैंड एंड द हॉल ऑफ कोर्स इट्स पैक्ड यू कैन सी इन फैक्ट यू कैन जस्ट इफ यू वर हियर यू वुड हैव रियली एंजॉयड सीइंग द साइट ओवर हियर ऑल इन द खाकी यूनिफॉर्म्स सीटिंग इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन द आर्मी लाइफ यू ऑलवेज लीड अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ
1: दिनांक 8 जून 2022 सोलहवीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल को विभिन्न स्रोतों से पुलिस स्टेशन गढ़ी के वीरगोड़ा गांव के अंतर्गत 4 से 5 नक्सलियों के एक समूह के उपस्थिति के संदर्भ में खुफिया जानकारी प्राप्त हुई जिस पर कार्रवाई करते हुए कमांडेंट सोलहवीं वाहिनी के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिवशंकर कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त आसूचना के आधार पर नक्सलियों के संभावित स्थान पर दबिश दी और विपरीत परिस्थितियों में भारी गोलाबारी के बीच अपने जान की परवाह न करते हुए एक कुख्यात नक्सली मतलू तुरी को मार गिराया व भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया उनके अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मान देते हुए निरीक्षक शिवशंकर कुमार व उनकी टीम के 4 सदस्यों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है आमंत्रित है निरीक्षक शिवशंकर कुमार

0: उप निरीक्षक कुमारजीत।
1: कुमारजीत जी सदैव कदमों से मंच की ओर। कुमारजीत सिंह को पदक पहनाते हुए मुख्य अतिथि महोदय, सीने पर पदक, हाथ में प्रशस्ति पत्र और दिल में भारत की रक्षा का प्राण साफ नजर आ रहा है।
0: मुख्य आरक्षी अनिल कुमार कुम्हार।
2: अनिल कुमार, he walks to the place where the home near where the secretary is standing, and of course he salutes, gives a crisp salute, and then he takes the award on his chest, and now the scroll is handed over to him, gives a salute to the home secretary, and marches out. In fact, the way they march.
0: Arakshi Ziaul Haq Ansari.
1: और अब जियाउल हक अंसारी मंच की ओर अग्रसर, सदैव कदमों से केंद्रीय गृह सचिव के सामने आज के मुख्य अतिथि के सम्मुख सीना ताने हुए, सीने पर पदक सजा, हाथ में प्रशस्ति पत्र और अद्भुत दृश्य को कैद करते हुए यहाँ पर छायाकार हाथ मिलाते हुए।
3: 20 सितंबर 2022 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला जम्मू कश्मीर से ग्राम यादीपुरा पत्तन में खूंखार आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल अतिरिक्त परिचालन बल की मांग की गई। तत्कालीन कमांडेंट मुकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में त्वरित विचार विमर्श के पश्चात एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे अभियान की व्यूह रचना की गई। 29 राष्ट्रीय राइफल्स एवं विशेष अभियान समूह के साथ तालमेल बिठाते हुए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों, निरंतर मंडराते खतरे और दुश्मनों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलाबारी के बीच श्री मुकेश कुमार और उनकी जाबाज टीम ने अदम्य साहस, श्रेष्ठ रणनीतिक सूझबूझ और अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया। मुठभेड़ के दौरान अपने जान की परवाह न करते हुए की गई इस सटीक और घातक जवाबी कार्रवाई में भारी हथियारों से लैस दो कुख्यात आतंकवादियों यावर शफी भट्ट और आमिर हुसैन भट्ट को ढेर कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में स्वचालित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया।
0: कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इस अदम्य साहस, अद्वितीय शौर्य और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उप महानिरीक्षक श्री मुकेश कुमार एवं उनकी टीम के 3 सदस्यों को वीरता पदक से अलंकृत किया जाता है। आमंत्रित है उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार।
1: वीरता पदक के लिए अब मुकेश कुमार और उनके 3 साथी इस समय मंच पर नजर आते हुए, मुकेश कुमार के सीने पर पदक टांगते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और सारे ही जवान कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हुए अपने साथी का अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है।
0: उप कमांडेंट रणजीत सिंह।
2: द एसएसबी पर्सनल इनिशियली दे वर पुट ओनली फॉर द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड भूटान, बट ओवर द इयर्स एज टेररिज्म एंड ऑल द क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम स्टार्टेड, देयर एरिया ऑफ कवरेज हैज बीन इंक्रीज्ड एंड दे आर कवरिंग ऑल द स्टेट्स व्हिच आर बॉर्डरिंग ऑन नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज पाकिस्तान, चाइना and apart from that Bangladesh and Burma.
0: मुख्य आरक्षी मेडिक्स रितेश शर्मा।
1: मंच पर उप कमांडेंट रणजीत सिंह के बाद अब मंच पर अग्रसर हमारे जवान, बहुत ही अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है।
0: आरक्षी मोहम्मद सैदुल्लाह मीर।
1: आरक्षी मोहम्मद सैदुल्लाह मीर इस समय मंच की ओर अग्रसर, पदक प्राप्त करते हुए पुरस्कृत होते हुए। इस सम्मान दरअसल एक जवान का नहीं बल्कि देश का सम्मान है, उन भावनाओं का सम्मान है जो भावनाएं
3: विशिष्ट सेवा के लिए
1: रक्षा करती हैं।
3: पदक से सीमाओं की डॉक्टर परेश सक्सेना, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा बिहार
2: से। दिस इज Mr. Paresh Saxena, who walks up, and the medal that they're getting, in fact, it is a lifetime achievement for them. And the scroll, the commendation letter, I'm sure they'll definitely frame it and put it in the house, that they remember it all their life, as long as they are alive. And what a wonderful sight it is over here. I mean, every moment of this program is being photographed, clicked away to glory. And I'm sure this is going to be a wonderful experience.

0: लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन ओवर हियर।
1: और अब रतन सिंह जी इस समय मंच पर, दरअसल आज प्रदान किया जा रहा प्रतीक अलंकरण राष्ट्र की ओर से सेवा और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक है, और ये भावना यहाँ पर नजर आती हुई साफ तौर पर विज्ञान भवन में कर्तव्य ध्वनि से जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है।
2: श्री सोमित जोशी महानिरीक्षक।
1: और अब सोमित जोशी अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर मौजूद, मुख्य अतिथि के सम्मुख उनके सीने पर पदक और ये प्रशस्ति पत्र उनके हाथों में। मुख्य सचिव श्री गोविंद मोहन इस समय,
2: श्री वंदन सक्सेना महानिरीक्षक।
0: मिस्टर वंदन सक्सेना, ही वॉक्स, ही कम्स फॉरवर्ड, ही हैज द मेडल पुट ऑन हिज चेस्ट एंड सैल्यूट्स द होम सेक्रेटरी, द चीफ गेस्ट, and takes a scroll, the commendation letter, which he gets it in his hand. And I'm sure they're going to frame it, of course, as I said earlier, they'll frame it and put
2: Shri
0: it, hang
2: Jagdish
0: it in their house.
2: Ram, Up Commandant.
1: Shri Jagdish Ram, Up Commandant, ab apna padak prapt karne hetu manch par maujood, anushasan ke saath yahan par apne padak grahan karte hue jawan, सैल्यूट करते हुए केंद्रीय सचिव।
2: धन्यवाद महोदय। महानिदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि विमाननीय मुख्य अतिथि महोदय को समस्त बलकर्मियों तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें।
0: That brings us to the end of the investiture ceremony. And now we have for you the address by the Honorable Chief Guest for today, that is Shri Govind Mohan, the Chief Secretary of the Home Ministry.
3: सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। मैं आरंभ करता हूँ। सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह के अवसर पर बल के सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, परंतु मेरी आत्मीय भावनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस आपदा के दौरान एसएसबी मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में अत्यंत सराहनीय भूमिका निभा रही है। संकट की इस घड़ी में एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत स्वरूप है। राष्ट्र की सेवा करते हुए आज तक अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले एसएसबी के 51 वीर जवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूँ। उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति एसएसबी की अमूल्य विरासत है। वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो रहे सभी अधिकारियों एवं जवानों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। ये अलंकरण आपके साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा भाव के साथ आपके परिवारों के त्याग एवं सहयोग का भी सम्मान है। पदक विजेता अधिकारी और जवान बल के युवा कार्मिकों के लिए आदर्श हैं। मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव, कार्य पद्धति और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। सीमाओं पर तैनात एसएसबी का प्रत्येक जवान देश का सजग प्रहरी, आपदा के समय प्रथम सहायक और भारत की सद्भावना का प्रतिनिधि है। मित्रवत सीमा पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन एसएसबी की सबसे बड़ी शक्ति है। एसएसबी की विशिष्ट पहचान उसकी शक्ति

और संवेदना के अद्भुत समन्वय में है। हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जल जैसी पवित्र संवेदना के साथ एसएसबी भारत की मित्रवत सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की सेवा तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ करता रहे। सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं और उनके परिवारों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा के आपके संकल्प, साहस, त्याग और समर्पण को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब मैं अपनी ओर से कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मंच पर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल जी, गृह मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, श्रीमती रेखा लोहानी एडिशनल डीजीपी, श्री रामलू नायक आईजी ऑप्स एसएसबी, इस सभागार में उपस्थित सीएपीएफ और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के वरिष्ठतम नेतृत्व, उनके डीजीज, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और एसएसबी परिवार के सभी अधिकारी और कर्मीगण, गृह मंत्रालय की ओर से कुछ विषय हैं जो आज चूंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं यहां रखना चाहूंगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारे मंत्रालय का और अंततः भारत सरकार का एक बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य है। 15,000 किलोमीटर की लगभग भारत और अन्य देशों की सीमा की निरंतर चौकसी और उसकी सुरक्षा जब तक हम मजबूत ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विभिन्न सीमाओं पर काम करती हैं, वो देश के प्रति एक बहुत उच्चतम उनका बलिदान है और देश निर्माण के काम में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व एक चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भारत के सभी बॉर्डर्स के लिए परिकल्पित करी है। इस चतुष्कोणीय सीमा व्यवस्था में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, राज्य सरकारों के जो प्रथम पंक्ति में बॉर्डर्स पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें बॉर्डर के जिलों के जिला अधिकारी, वहां के पुलिस निरीक्षक और अन्य जो पूरी व्यवस्था है बॉर्डर के जिलों पर जो राज्य सरकार ने स्थापित की हुई है, वो इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आयकर विभाग है, जिसमें नारकोटिक्स का पूरा व्यवस्था है। इस तरह के जो 15 से 20 प्रमुख निकाय हैं भारत सरकार के, जो आर्थिक अपराधों पर, नारकोटिक्स पर, फेक करेंसी पर निगाह रखते हैं, वो इसका तीसरा स्तंभ है। और अंततः इसका चौथा स्तंभ है जो वहाँ का समुदाय है, जो वहाँ के आम नागरिक हैं। ये शायद पहली बार भारत के, स्वतंत्र भारत के लगभग 75 से 80 वर्ष के इतिहास में एक ऐसी परिकल्पना को जन्म दिया गया है जिसके प्रणेता गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके आदर्श से ये परिकल्पना विकसित हुई है। और यहाँ मुझे इस परिकल्पना के बारे में बताते हुए इसलिए मुझे हर्ष भी हो रहा है और ये प्रासंगिक भी है कि इस व्यवस्था को आत्मसात किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स में और इसको ग्राउंड पर सुचारू रूप से उतारा जाए। इसका पहला जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो एसएसबी के ही तत्वाधान में भारत नेपाल बॉर्डर में, बिहार के किशनगंज और लगे हुए जो जिले हैं उनको सम्मिलित करते हुए लगभग आज से 6 से

7 महीने पहले हुई थी। तो इस पूरी व्यवस्था जो कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ वर्षों में एक बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभरेगी, इसका जन्म एसएसबी के ही कर्मभूमि में हुआ था और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को आरंभ करने की जो बधाई है उसके पात्र एसएसबी के महानिदेशक, उसके अधिकारीगण और उसके कर्मी हैं। उसके उपरांत इस व्यवस्था को और विकसित किया गया गुजरात के बॉर्डर्स पर, राजस्थान के बॉर्डर्स पर, त्रिपुरा के बॉर्डर पर और अंत में बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं उनमें इसकी अंतिम बैठक लगभग आज से 1 महीने पहले हुई थी। इन्हीं बैठकों के क्रम में हम और जगह भी जाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर जिले हैं उनके साथ वार्तालाप करके इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये नई पहल जो गृह मंत्रालय में आरंभ हुई है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्लानिंग है और इसमें एसएसबी जो हमारी एक अहम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो दूसरा विषय मैं एसएसबी के बारे में आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अपने आप में एक अनोखा कार्य क्षेत्र है क्योंकि वहाँ जो हमारी सीमाएं हैं वो मित्र देशों से लगी हुई हैं, इसलिए वहाँ बाड़ लगाने का कोई प्राविधान नहीं है और बाड़ जो सुरक्षा प्रदान करता है उस सुरक्षा के बगैर एसएसबी को उस सीमा को सुरक्षित रखना है। पिछले 2 वर्ष में मेरा जो अपना अनुभव रहा है सीमा सुरक्षा के विषय में वो ये है कि ये अपने आप में एक कठिनतम कार्य है। बिना किसी फिजिकल बैरियर के एक बॉर्डर को सेफ रखा जाए इसकी कल्पना शायद विश्व में बहुत कम जगह पर की गई है और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि एसएसबी ने पिछले कुछ वर्षों में इस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं लेकिन जिनका प्रभाव लगभग लगभग उतना ही है जैसे कि वहाँ पे एक भौतिक बाड़ की व्यवस्था हो। इसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा लेकिन फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से, रडार्स और सीसीटीवीज के माध्यम से और अन्य प्रणालियों को विकसित करके आज एसएसबी ये सुनिश्चित करता है कि नेपाल से और भूटान से जो भारत में आवागमन हो रहा है उस पर एक पैनी निगाह रखी जाए और किसी भी हालत में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी ऐसा तत्व जो भारत में किसी भी प्रकार का उपद्रव करने में के लिए यहाँ आ रहा हो उसको हम बॉर्डर पे ही उसको रोक सकें और उसको वहीं पे अपनी गिरफ्त में ले सकें। इसमें सफलताएं भी मिली हैं और अभी हाल में ही गृह मंत्री जी सिलीगुड़ी गए थे, वहाँ एसएसबी ने एक विस्तृत उनके समक्ष प्रस्तुति भी की थी और उसके माध्यम से बताया था कि मानव तस्करों से लेके एफआईसीएन के स्मगलर से लेके नारकोटिक्स और आर्म्स के जो नेटवर्क्स हैं उन तक एसएसबी ने अपनी पकड़ मजबूत करी है और एक हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिला और एक इस बात का सामने प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिला कि एसएसबी के प्रयासों के चलते आज नेपाल और भूटान से जो भारत की सीमाएं हैं वो काफ़ी हद तक हमने सुरक्षित कर ली हैं। अंत में एसएसबी की उभरती भूमिकाओं के बारे में जो मंत्रालय का एक विजन है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया एसएसबी का जब जन्म हुआ था 1961-62 के कालखंड में तब उसका मुख्य ध्येय था बॉर्डर के गांवों में एक भारत के प्रति एक सद्भाव पैदा करना, जो गांव के निवासी हैं उनके साथ मिलके एक आसूचना का सुदृढ़ तंत्र बनाना भारत के बॉर्डर्स पर
और जो बाकी

0: अन्य आर्म्ड फोर्सेस हैं यूनियन की, उनकी मदद में इन दो तीन गतिविधियों के माध्यम से अपना सहयोग देना। धीरे धीरे ये जो व्यवस्था थी ये थोड़ी क्षीण होती गई और एसएसबी का रोल एक सशक्त और एक आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अधिक होता गया, और जो ओरिजिनल रोल था कि सीमावर्ती गांवों के साथ मिलके वहाँ एक नेटवर्क बनाना, सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, आसूचना के तंत्र को और सुदृढ़ करना, वो कहीं ना कहीं कम होता हमको दिखा है। तो अब आने वाले समय में मंत्रालय का ये मत है कि एसएसबी को अपना जो ओरिजिनल रोल था उस ओर फिर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जो इसकी मूल परिकल्पना थी उसके भी उसके भी निरूपण के लिए हम एक व्यवस्था बना सके। और जो आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का रोल है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अतिरिक्त जो ओरिजिनल रोल था उस ओर भी हम अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। तो हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान महानिदेशक के नेतृत्व में ये जो नई परिकल्पना विकसित हुई है इस पर भी एसएसबी पूरे बल से और पूरे अपने मन से अपने कार्यों से इस ओर भी काम करेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जाते जाते एसएसबी के अलंकरण समारोह में गृह मंत्रालय की ओर से फिर सभी एसएसबी कर्मियों को बधाई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको पूरा पूरा गृह मंत्रालय का सहयोग रहेगा आने वाले समय में, इसका आश्वासन देते हुए आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: That was the address by the Honorable Chief Guest, Shri Govind Mohan, the Central Home Secretary.
2: और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ओजपूर्ण संबोधन के बाद अब मंच पर हम देखेंगे कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
1: And our memento will be presented to the Honorable Chief Guest by the Director General of the Sashastra Seema Bal. A memento is being given, and a beautiful one, a beautiful memento, a big one, and it's being shown to the public, the people over here.
2: और अब अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल पोडियम पर।
3: माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, मंचासीन महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल जी, आईजी ऑप्स श्री एमआर नायक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशक गण एवं वरिष्ठ अधिकारी गण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक गण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथि गण, आज अलंकृत किए गए सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता कार्मिक गण, मीडिया के प्रतिनिधि गण, देवियों एवं सज्जनों, आज सशस्त्र सीमा बल के इस अलंकरण समारोह के अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक एवं गौरवपूर्ण बना दिया है। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मान्यवर, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस समारोह के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान एवं विश्वास अटूट है। सशस्त्र सीमा बल आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हम सभी अपने कार्य एवं जीवन में आत्मसात करते हुए और अधिक निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मेरा विशेष आभार माननीय सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार

0: के प्रति भी है, जिनका स्नेह एवं मार्गदर्शन सशस्त्र सीमा बल को सदैव मिलता रहा है। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनेक धन्यवाद। मैं आज सम्मानित किए गए सभी पदक विजेताओं, उनके गौरवान्वित परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इन पदकों के पीछे आपकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं आपके परिवारों का त्याग और निरंतर सहयोग भी निहित है। मैं मीडिया के सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से इस बल के कार्मिकों की उपलब्धियों एवं राष्ट्र सेवना की भावना को देशवासियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। एक बार पुनः मंचासीन अति विशिष्ट अतिथिगणों एवं सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों को बल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
1: That was the vote of thanks by the Additional Director General of Sashastra Seema Bal.
2: और अब अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए सभी उपस्थित जन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो रहे हैं।
3: आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के उपरांत सभी लोग अपने आसन पर एक बार फिर विराजमान नजर आ रहे हैं। और जहां तक गणमान्य व्यक्तियों का प्रश्न है तो उनका प्रस्थान यहां पर शुरू हो गया है। गणमान्य व्यक्ति प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये अलंकरण समारोह अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। आज विज्ञान भवन में आयोजित ये सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह 2026 हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सतत दायित्व है। सीमा पर तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए अपना वर्तमान समर्पित करते हैं ताकि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। आज जिन अधिकारियों और जवानों को अलंकरण प्रदान किया गया उनकी वीरता, सेवा और समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। इसी के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल SSB द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह संपन्न होता है। अब मैं अतहर सहित अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू और OB प्रभारी विवेक कुमार तोमर और हमारी तकनीकी टीम के सदस्य अशोक कुमार मिश्रा और सुमित कटियार के साथ आपको आकाशवाणी स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। नमस्कार, जय हिंद।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए देशगान।

0: मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12:30 हो चुके हैं। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो सखी।

0: घर को जो स्वर्ग बनाए, जो हर रिश्ते को मुस्कुरा कर निभाए, ऐसी ही हर एक सशक्त और प्यारी सखी को मेरा सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी सखियों का आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी में। मैं हूं आज आपकी रेडियो सखी ज्योति। अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए सखियों, मिलाइए हमारा ये नंबर 01892224391। जी हाँ, आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज का नंबर है 01892224391। आज जिन फिल्मों में से आप गीत सुन पाएंगे वे फिल्में हैं तुमसे अच्छा कौन है, चलती का नाम गाड़ी, क्या कहना, मेरा साया, खूबसूरत, लगान, दिल तो पागल है और एयरलिफ्ट। अब कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं, मिलते हैं अपनी पहली कॉलर से।
1: मेरा साया क्या गीत है? हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी,
1: बैठो,
0: नाम बताएं।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं दर्शना बात कर रही हूँ मैडम जी, मुकेरियां से।
0: जी बिल्कुल, दर्शना जी हमारी नियमित श्रोता हैं।
1: हाँ जी,
0: और कैसी हैं आप?
1: हम ठीक है मैडम जी, आप सुनाइए।
0: जी बहुत बढ़िया हैं। आप सब सखियों से जब बात होती है ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है मैडम जी आपकी आवाज सुनकर।
0: जी धन्यवाद। जी
1: आज सुबह,
0: हाँ जी
1: जी, सुबह सुहानी से ही हमारी सुबह शुरू होती है।
0: जी
1: हाँ जी,
0: तो सुबह से मतलब आकाशवाणी धर्मशाला के साथ आप जुड़ जाते हैं।
1: हाँ जी मैडम जी,
0: कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं मैडम जी, इसीलिए सुनते हैं।
0: जी धन्यवाद आपका इसके लिए तहे दिल से।
1: पहाड़ी गीत सुनते हैं
0: जी, पहाड़ी गीत।

0: ही सुनते हैं।
1: हाँ जी
0: बहुत अच्छा लगा जानकर दर्शना जी।
1: हाँ जी, इधर मौसम कैसा है मैडम जी?
0: मौसम यहाँ पे बारिश भी है, कभी धूप है।
1: अच्छा,
0: जी
1: इधर तो बहुत गर्मी है मैडम जी।
0: जी वहाँ गर्मी है तो आ जाइए हिमाचल।
1: हाँ आएंगे, जरूर आएंगे हम।
0: जी स्वागत है आपका।
1: इसी महीने में हम श्रीनगर जाने वाले हैं।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी, हर साल जाते हैं, साल में दो बार भी चले जाते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया
1: का,
0: जी घूमने की शौकीन है।
1: हाँ जी मैडम जी, बहुत ज्यादा।
0: बहुत अच्छी बात है, घूमना ही चाहिए।
1: हाँ घूमते ही रहते हैं मैडम जी।
0: बहुत अच्छी बात है, और संगीत भी साथ साथ चलता है।
1: हाँ जी,
0: तो
1: मैडम
0: आज
1: जी दुकान पे बैठकर हम सुनते रहते हैं, चाय पीते हैं 11 बजे, फिर प्रोग्राम देखते रहते हैं, पहाड़ी जी सुनते रहते हैं।
0: जी
1: हाँ
0: तो ठीक है, अपने सफर को यूं ही एंजॉय आप कीजिए, और बताइए आज की फरमाइश आपकी।
1: मेरा साया फिल्म का मैडम जी सुना दो।
0: मेरा साया फिल्म से गीत सुनेंगी।
1: हाँ जी, साधना के गाने हमें बहुत पसंद है।
0: ठीक है जी, आपको सुनवा रहे हैं ये बड़ा ही खूबसूरत गीत। यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: थैंक यू मैडम जी,
0: जी धन्यवाद।
1: बहुत

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए सखियों आपको मिलाना है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज का ये नंबर 01892224391। जी हाँ, ये नंबर है 01892224391।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: कार्यक्रम सुनो सखी आप इस समय सुन रहे हैं और आज जिन फिल्मों में से आप गीत सुन पाएंगे उन फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं। तुमसे अच्छा कौन है, चलती का नाम गाड़ी, क्या कहना, दिल तो पागल है, एयरलिफ्ट, खूबसूरत और लगान। जी लगता है इनका फ़ोन जो है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। आप फिर से एक बार कोशिश करें और आपकी कॉल ज़रूर लगेगी। 01892224391 ये है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ का फ़ोन नंबर। नंबर मिलाइए और सुनिए अपनी पसंद का गीत। सखियों के मनोरंजन में हम कोई कमी नहीं रखेंगे जब तक आप हमें कॉल करती हैं, आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हेलो
1: हेलो मैम
0: जी। हेलो नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: मेरा नाम नेहा है।
0: नेहा, नेहा कहाँ से बोल रही हैं?

0: बेसिकली हिमाचल से ही हूँ
1: जी। हिमाचल में कौन से जिले से ताल्लुक रखती हैं?
0: मैं कांगड़ा से।
1: कांगड़ा से, ठीक है। और क्या करती हैं
0: अभी? तो मेरी मैं करती हूँ
1: जी,
0: मैं अभी स्टडी करती हूँ,
1: पढ़ाई कर रही हैं जी, ठीक है। कौन सा विषय आपको पसंद है?
0: मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है
1: जी। इतिहास में जाना आपको पसंद है?
0: हाँ जी।
1: ठीक है, तो आज की फरमाइश क्या है आपकी, बताइए। जी मैं फिल्म में आपको बता देती हूँ। तुमसे अच्छा कौन है, चलती का नाम गाड़ी, क्या कहना, खूबसूरत, लगान, दिल तो पागल है और एयर लिफ्ट।
0: दिल तो पागल है
1: जी। ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत नेहा। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
0: ओके।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी। मैं साक्षी बोल रही हूँ नूपुर से। देखो,
0: जी साक्षी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आप
0: जी ठीक हैं? आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ आपसे बात करके। हाँ
0: जी अच्छा लगता है आप सब श्रोताओं का ये प्यार पाकर हमें।
1: जी मैम जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं जरूर बात कर पाऊँ, मेरी बात हो जाए तो मेरे को इतना ऐसा अच्छा लगता है कि मैं बोल नहीं सकती आपको।
0: जी धन्यवाद साक्षी, आपने हमें कॉल किया अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाएं।
1: कौन कौन से सॉन्ग मैंने सुने नहीं है आप?
0: तुमसे अच्छा कौन है, चलती का नाम गाड़ी,
1: सबसे
0: खूबसूरत।
1: अच्छा कौन है?
0: जी कौन है, आपसे अच्छा कोई नहीं है।
1: मेरे से अच्छा कोई नहीं है।
0: जी आप हमारे इतने प्यारे श्रोता हैं।
1: मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा मेरे से अच्छा कोई भी नहीं होगा, और
0: जी
1: फिर दुनिया में लोग मेरे से वैसे होंगे।
0: शुक्रिया साक्षी, आपने हमें कॉल किया और इस गीत के बाद आपकी फरमाइश आपको सुनवाएंगे।

हमारा ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391। अब पूरी कर रहे हैं साक्षी की ये फरमाइश।

कार्यक्रम सुनो सखी में आपका स्वागत करते हैं। हेलो जी, आपकी कॉल लग चुकी है। हेलो,

0: हेलो
1: मैडम, ये मतलब पुरुष मतलब महिलाओं का कार्यक्रम है कि जेंट्स का भी?
0: ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का है।
1: जी मैडम, वही जानना चाहता हूँ।

के लिए है, वही इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। तो सखियों जल्दी से मिलाइए 01892224391, ये है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज का फोन नंबर, और तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: चलते चलते आपको बताते चलें कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। कार्यक्रम को आपके घर द्वार तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह। दीजिए अनुमति, नमस्कार। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर का 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफ़ेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे

0: Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. Meanwhile, the Indian Embassy in Kathmandu has shared details regarding the identification and repatriation of mortal remains of victims of the recent flash floods in Nepal. Akashwani's FM Gold is celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. And with that, we end this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
2: चलाते थे तो कभी आपने कैंची साइकिल चलाई है? ये कैंची साइकिल क्या होती है, ये भी आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक मज़ेदार बात है, पिताजी ने पहली साइकिल ली थी, वो सेकेंड हैंड थी, जो मैं और मेरे पापा यूज़ करते थे। बाद में नौकरी मिली तो ट्रेन से उतरने के बाद कंपनी का जाने के साइकिल कंपनी जाने के लिए साइकिल लेनी पड़ी। वो एक मित्र के साथ इन्होंने कुछ 45 रुपीज़ लिखा है कि उसमें ली थी, जो सेकेंड हैंड थी, और मित्र का कहना था कि उसे मैं रोज़ डबल सीट खींचूँ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे श्रोताओं, जो उस वक्त जिनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग किराए की साइकिल पर हम बच्चे खूब साइकिल चलाते थे। ऐसे भी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो ज़रूर हमें लिख भेजिए। साइकिल की सवारी करते हमारे ये कौन अदाकार हैं?

0: बंदी है, वादा भी है उसकी गली।
1: साइकिल अगर मौसम बहुत अच्छा हो श्रोताओं, यानी धूप कड़ी न हो, तो चलाने का मज़ा कुछ और ही होता है। आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है। आजकल क्या आप साइकिल चला रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम के समस्त प्रिय श्रोतागण, आप सभी को शुभ दिवस तथा स्नेह वंदन। और शब्द इन्होंने लिखे हैं, जीवन सफ़र मंजिल हो सकते हैं, साइकिल भी तो है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज मुझे याद आ रहा है कि ये सारे शब्द हो सकते हैं, साइकिल, पापा और सफ़र, ये लगते हैं मेरे लिए। तो ये इबारत बिल्कुल मेरी ही कहानी है। मैं खुद मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और रोज़ अपनी दुकान पर साइकिल से ही जाता हूँ। जब भी रास्ते में गुनगुनाता हूँ, बचपन की यादें और पापा का सिखाया हौसला याद आ जाता है। और सच में साइकिल जैसी प्यारी और टिकाऊ सवारी कोई और नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और साइकिल का रिश्ता ही कुछ अलग सा था। आज भी याद आता है वो कभी कभी साइकिल से स्कूल जाना, वो मस्ती, वो लड़ाई, वो भाई बहनों का प्यार। साइकिल के साथ सिर्फ पहिए नहीं घूमते, हमारा बचपन, हमारी शरारतें और छोटी छोटी खुशियाँ भी दौड़ा करती हैं। गिर कर फिर उठना और आगे बढ़ते जाना, शायद साइकिल नहीं ज़िंदगी का पहला सबक सिखाया। अब इन कलाकारों को आपको पहचानना है श्रोता, और फिल्म पहचाननी है।

हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि प्रेम रोग फिल्म में ऋषि कपूर की साइकिल जो थी वो काले रंग की थी। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया इशारा फिल्म का, उसमें जॉय मुखर्जी बहुत ही खूबसूरती से और बड़े मज़े से साइकिल चलाते हुए

0: चले जा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कैंची साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें आधा पैडल मारना पड़ता है। बचपन में जब साइकिल तक पूरे पैर नहीं पहुंच पाते थे तो आधा पैडल ही मारा करते थे। जी हाँ, क्योंकि बड़े लोगों की जो साइकिल थी वो आसानी से मिल जाती थी श्रोताओं। और तब क्या होता था कि हम लोग छोटे होते थे, बड़े लोगों की साइकिल जब उठाकर चलाते थे तो पहुँच नहीं पाते थे, फिर कैंची साइकिल चलानी पड़ती थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जी श्रोता मित्रों को नमस्कार। और साइकिल का बचपन में हर किसी को चाम रहता है। हमने भी किराए की साइकिल लेकर बहुत चलाई है और कांची डंडा फिर सीट से आज भी साइकिल ही चलाता हूँ। जी हाँ, और साइकिल में श्रोता अलग अलग तरह के जो जो लाइट्स होती थी वो पहले होती थी, उनकी कुछ अगर याद है तो आप ज़रूर बताएं। वैसे मेरे पास तो कुछ याद है कि साइकिल में किस तरह की लाइट्स हुआ करती थी, यानी कहें कि लाइट हुआ करती थी। किसी किसी साइकिल में होती थी पर ज़्यादातर साइकिल में नहीं हुआ करती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं विद्यार्थी दशक में 25 पैसे देकर पिताजी ने साइकिल सिखाई मुझे। बाद में हम 8x9 किलोमीटर साइकिल पर धूप में साइकिल पर जाते थे। उस वक्त सहेलियों के साथ जाते थे। सबसे बढ़िया साइकिल तो वो सर्कस में देखी जहाँ कई लड़कियाँ साइकिल पर सवार हो जाती हैं। जी हाँ, ये तो बड़ा कमाल का होता था। और एक घर के पास भी तो कभी कभी ऐसा खेल दिखाने लोग आते थे कि जिसमें कई कई दिन लगातार साइकिल चलाते रहते थे। ऐसा खेल आपने कभी अपने मोहल्ले में, कभी आपने शहर में देखा हो तो आप ये यादें हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज दिलचस्प गीत होंगे साइकिल पर। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल का दौर वो था, मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने या स्कूल जाना साइकिल से हुआ करता था। मैं आज भी सब्जी मंडी या दूरी कोई ख़रीदारी होती है तो साइकिल पर ही करता हूँ, यानी कि पास की जो दूरी होती है उसके बारे में शायद ये बात कर रहे हैं। वैसे मेरे पास 2-व्हीलर है लेकिन पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रोज़ नियमित साइकिल चलाता हूँ। ये डाकिया कौन है?
1: डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी।

डाकिया डाक लाता था और जब उसके साइकिल की घंटी बजती थी श्रोताओं, तो क्या एक जुनून होता था कि लोग उसके पीछे जाते थे, घर के बच्चे हों या बूढ़े, कि शायद उनकी कोई चिट्ठी आई हो। तो इस तरह की भी कोई यादें अगर आपकी हो तो आप साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे पलकों की छाव, फिल्म का गीत हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि राजेश खन्ना डाकिया के रूप में है। किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से गुलजार का लिखा ये प्यारा सा गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बचपन की आज़ादी, पापा का प्यार और जीवन का पहला सबक थी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन जब पहली बार कैंची साइकिल जब हमने चलाई, थोड़ा बहुत गिरा, फिर संभला, फिर धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। कैंची साइकिल का मतलब साइकिल के फ्रेश के अंदर एक पैर, धीरे एक पैर इधर एक पैर उधर करके कैंची साइकिल चलाई जाती थी और बचपन की यादें अभी भी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल में लाइट के लिए पिछले व्हील से चलने वाला डायनमो लगा होता था। लाइट जब जलती थी तो डायनमो व्हील के साथ चलता था और फिर उसको कुछ घर्षण से जो करंट मिलता था उससे ये डायनमो जलता था। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि साइकिल मेरे पापा की थी और हीरो डंडे वाली, मैंने वो सीखी थी, कई बार गिर के, कई बार किसी के ऊपर सीधे, बस तब से बंद हुई, एक बार तो खड़े ट्रक में घुस गई, बहुत पिटा था बाबा मेरे बाबा ने, मतलब इनके बाबा ने शायद इनकी पिटाई की। तो भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। जी हाँ, साइकिल चलाते समय बहुत ही ज़्यादा सतर्कता की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा होता है श्रोताओं कि जो बच्चे होते हैं वो साइकिल की दौड़ जो है वो अन्य गाड़ियों के साथ लगाते हैं, तो ऐसा ज़रूर संभव हो सकता है। साइकिल जितनी हमें प्रिय होती है तो लगता है कि इसकी रफ्तार उसी हिसाब से होनी चाहिए, और होती भी वैसे तो वास्तविकता में नहीं है, तो इसलिए बहुत संभल कर चलाना चाहिए साइकिल। और एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल पर पहले हम बैठ जाते थे, उतर नहीं पाते थे और बस गोल गोल चक्कर काटते रहते थे। जी हाँ, गोल गोल चक्कर काटने में ही तो हम गिरते थे और फिर सीखते थे, और गिरना, फिर उठना, फिर चलना, और इसी तरह से जो जीवन का एक फलसफा है कह सकते हैं साइकिल, वो भी हमें सिखाती है। वैसे साइकिल आप क्या समझते हैं कि आज भी प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है, तो आप हमें ज़रूर लिखें। और साइकिल क्या आज भी आप चलाते हैं, आपने सहेज रखी है? कितनी साइकिलें हैं श्रोताओं इस गीत में।

मेरे से तुम फिल्म का ये गीत था विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया। हमारे कुछ श्रोताओं ने 7 साइकिलें लिखी हैं, कुछ ने 8 लिखी हैं, तो कितनी साइकिलें हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 26 साल पहले मैं और मेरे बड़े भैया ने बैनर छपाई का काम शुरू किया था, तो पहली साइकिल ली थी, फिर वो चोरी हो गई, लेकिन साइकिल की चाबी अभी भी संभाल रखी है। देखिए कितना प्यार होता है श्रोताओं साइकिल से। आपकी कौन से रंग की साइकिल थी आप अगर बताना चाहें तो आप ज़रूर बता सकते हैं। वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें 3 पहिए की एक लकड़ी की साइकिल आती है भी, और पहले भी आया करती थी, आजकल तो वॉकर आ गए हैं, लेकिन 3 पहिए की लकड़ी की साइकिल से बच्चे चलना भी सीखते थे, न सिर्फ साइकिल चलाना बल्कि वो चलना भी सीखते थे। ऐसी कुछ यादें हैं। वैसे आजकल आप किस तरह की साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल बचपन की आंगनवाड़ी होती है, साइकिल सीखना चलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन में ट्राई साइकिल इनके पास थी, उस वक्त वो कांच पर गिर गए थे, अंगूठा कट गया था, 3 टाँके आए थे, आज भी निशान है। तो भाई ऐसी भी बातें हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारा नमस्कार, साइकिल बचपन में हमारे लिए केवल एक खेलने का ज़रिया थी, वही साइकिल आज रोज़ी रोटी और अपने परिवार चलाने का ज़रिया बन गई है। जी हाँ, साइकिल से चलना तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रोताओं क्या आप भी साइकिल से आजकल चलते हैं या फिर चलाना आपको अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है कि साइकिल आज भी अनगिनत यादों का प्रतीक है, जहां गति से ज़्यादा दिशा, दिखावे से ज़्यादा सादगी और गिरने के डर से ज़्यादा उठकर दौड़ने का जुनून मायने रखता है। पिता के हाथों से मिली वो पहली साइकिल दरअसल जीवन की हर चुनौती से मुस्कुराकर पार पाने का पहला पाठ थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जब स्कूल में थी तो किराए की साइकिल लेकर खूब चलाई, लेकिन अपनी साइकिल नहीं ले पाई, इस बात का मलाल मुझे है। अब इस उम्र में थोड़ा डर लगता है कि कहीं हाथ पर न टूट जाए, लेकिन सुबह योगा में साइकिल ज़रूर चलाती हूँ और एकदम फिट रहती हूँ। जी हाँ, हम भी फिट रहते हैं और पर्यावरण भी इससे बहुत प्रभावित होता है। श्रोताओं ये कौन जनाब हैं साइकिल पर?

0: लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी। झांसा देखे ना जा मुझको देश मेरा है झांसी। लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी। होए होए मरते मरते लिख जाऊंगा गवर्नमेंट को लेटर जी LETTER।
1: जो ये गीत फिल्म बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म से था, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ थी और जॉनी वॉकर पर फिल्म है गया ये गीत था। श्रोताओं अजीज़ कश्मीरी के बोल थे, सुरीले सफ़र के बहाने याद आ गई साइकिल कभी नहीं होती पुरानी, भविष्य इसका उज्जवल, रंग बिरंगे रूप इसके आधुनिकता से, चपल चंचल सेहत को संवार कर प्रदूषण को रोके बन गई है सदा सफल, बचपन में सिखाती जवानी में हंसाती आगे चलकर काम में आती, अदृश्य काल चक्र को यादों का अनुपम कारवां बनाती। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं आज साइकिल की सवारी की जाएगी और साइकिल की सवारी सबसे सस्ती और स्वास्थ्यवर्धक है, इससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। आजकल कई तरह की साइकिलें आ रही हैं, सस्ती महंगी और रंग बिरंगी, और गीत भी इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब से होश संभाला तब से घर में साइकिल को देखता आ रहा हूँ, पिताजी साइकिल से ही ड्यूटी जाया करते थे, मेरी उम्र 10 वर्ष की थी तो मेरे बड़े भाइयों की शादी एक साथ हुई तो उन्हें शादी में 2 साइकिल मिली, बस मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, तब से गिरते पड़ते कितनी बार चोट खाई और अंततः साइकिल सीख ही गया। साइकिल चलाने का इतना जुनून सवार था कि 10वीं कक्षा में अपने दोस्त को बिठाकर पूरी दिल्ली को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाला एकमात्र रिंग रोड साइकिल दौड़ाकर मात्र 3 घंटे में नाप दिया। तो इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। और साइकिल जब हम लोग चलाते थे श्रोताओं तो कई बार ऐसा होता था कि

अपने दोस्तों को लिए बगैर साइकिल नहीं चलाते थे, और फिर घंटी बजाना, उन्हें बुलाना और साथ में जाना, ऐसे भी कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। कुछ अभिनेता और अभिनेत्री जो दिखाए जाते हैं पर्दे पर साइकिल चलाते हुए, इनमें से कौन आपको अच्छे लगते हैं, यानी साइकिल चलाते हुए कौन से अभिनेता या अभिनेत्री आपको बड़े स्टाइलिश लगते हैं। ये अजब सी स्टाइल है धर्मेंद्र जी की, ऐसी साइकिल आपने चलाई है क्या?

हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छू

ये गजब तरीके से धर्मेंद्र जी ने साइकिल चलाई है श्रोताओं, और ऐसी साइकिल यानी उल्टी साइकिल बहुत सारे लोग चलाया करते थे, तो क्या आपने भी कभी चलाई है? तो आप ज़रूर लिखें। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म औरत का जो गीत हमने आपको सुनवाया नाजिमा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मैंने भी कैची साइकिल चलाई है। और एक और श्रोता लिखती हैं, साइकिल भी क्या चीज़ थी बचपन, क्या आज भी साइकिल को लेकर उतनी ही पॉजिटिव हूँ जितना अपने बचपन में थी। जब पहली बार साइकिल पर बैठे थे तो लगता था कि साइकिल नहीं हवाई जहाज है, और इस पर बैठकर चाहे जहां तक उड़ सकते हैं। वो चैन के दिन जब साइकिल से सारा शहर नाप लेते थे, आज भी मेरे पास एक गुलाबी साइकिल है। साइकिल हमारी दोस्त ही नहीं, ये तो पर्यावरण की भी सच्ची साथी है। और साइकिल चलाइए और अपनी और प्रकृति की सेहत

बनाइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ चीज़ें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में और तहजीब से रख दी जाती हैं। मेरी पहली साइकिल भी कुछ ऐसी ही थी, उसने मुझे रास्तों से ज़्यादा ज़िंदगी का संतुलन सिखाया था। गिरना भी उसी ने सिखाया और उठकर फिर चलना पढ़ना भी। और पापा के हाथ पीछे, पापा का हाथ था सामने खुली हुई गली। और कुछ इन्होंने अपनी बात भी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ताऊ दादा यदि सब ने नौकरी अधिकतर साइकिल के द्वारा की है और सेवा उपरांत भी उपयोग किया है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज तक साइकिल से जाके पढ़ाई हम लोगों ने की और बाइक भी थी। साइकिल से घूमना जाना आज भी जारी है और अब पापा नहीं चला रहे, फिर भी हम लोग उन्हें बताते हैं साइकिल जा रहे हैं, वो ऐसे सेफ समझते हैं। यानी कि इन्होंने कहा होगा कि शायद हम साइकिल से जा रहे हैं तो वो सेफ समझते हैं, और अच्छी बात है ये।

0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, शहरों में भी और गांवों में भी। भले बाइक से फराटा लोग आज दिखाते हैं, लेकिन पेट्रोल की महंगाई ने तमाम लोगों को सिखा दिया कि 4-5 किलोमीटर तक जाना है तो साइकिल ही ठीक है। हम आज भी इस उम्र में साइकिल चलाते हैं, जो एक तरह का व्यायाम कराती है और पैसे भी बचाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे ज़माने में लकड़ी की गुड़गुड़ी चलाई जाती थी, नाना जी ने दी थी। फिर भाई हुआ तो बाबा ने 3 चक्के वाली साइकिल खरीदी। अब नवासे के ज़माने में चलना क्या सीखेंगे, तो साइकिल खरीदी, अब तो स्कूटर की मांग है।
1: सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल।

मनोज कुमार शोर फिल्म में 7 दिन तक साइकिल चलाते हैं, श्रोताओं ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाया गया है। आप सुन रहे थे ये गीत मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्यामा चित्तर की आवाज में। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी वाली 3 पहिए की साइकिल पर हम तो 2 बहनों ने चलाना सीखा, पर अब वो नहीं दिखती। मेरी पहली साइकिल काले रंग की थी, स्कूल जाते थे भीगते पानी में और धूप में कोहरे में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बच्चे के लिए लकड़ी की 3 पहिया साइकिल को हिंदी में गडूला और मराठी में पांगुल गाड़ी कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जॉनी वॉकर, जो गीत हमने आपको सुनवाया था, इन्होंने ही लिखा है कि जॉनी वॉकर साइकिल पर नजर आते हैं और ये मुकाबला करते हैं कलकत्ता की ट्राम से। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैंने साइकिल चलाना सीखने की बहुत कोशिश की पर सीख नहीं पाई, पार्क में जिम में है और वहाँ मैं जाती हूँ और चलाती हूँ साइकिल। आपको ये अदाकार और फिल्म बतानी है और संगीतकार बताने हैं श्रोताओं।

श्रोताओं, ऐसा शायद ही कोई हो जो साइकिल चलाते चलाते कुछ गुनगुनाता ना हो, और ये आदत शायद वहीं से पड़ती है। आज भी जब कभी हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गुनगुनाते हैं। आप कौन सा गीत गुनगुनाते थे जब साइकिल चलाते थे?

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत था। देवानंद और मुमताज पर फिल्माया गया। नीरज के बोल थे, सचिन देव परवीन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ और साइकिल से जो है सुबह निकलता हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसा इनका लिखना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर यूको पार्क जाता हूँ, फिर वहाँ मॉर्निंग वॉक कर साइकिल से ही वापस लौटता हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है, जिससे अपने तरोताज़ा अपने आप को महसूस करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल से लौटते वक्त साइकिल पर तीन तीन दोस्त बैठ कर आते थे, अन्य दोस्तों के साथ रेसिंग भी करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लीडर में दिलीप कुमार ने जो उल्टी साइकिल दौड़ाई है, उसकी बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कॉलेज टूर पर इंदौर गए, 1989 की यादें ताज़ा हुई।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं, सहरा बानो नजर आती हैं। श्रोताओं, आपके तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके तमाम कमेंट्स के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के संग सुरीला सफर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें सिर दर्द की। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वो दर्द जो कि हमारे सिर के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग कारणों से होता है। आमतौर पर सर्दी, जुकाम, ठंड, एसिडिटी, मौसम के बदलने का असर सिर दर्द के रूप में सामने आता है। इसके कारण कई बार हमें बिल्कुल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द के कई कारण भी हो सकते हैं और उसी के अनुसार उनका इलाज भी होता है, पर आम तौर पर सिर दर्द के दौरान सीधा सा उपाय पेय पदार्थों का सेवन और स्क्रीन से दूरी ही है। बस आंखें बंद करके लेट जाइए और हो सके तो किसी से सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश भी करवा सकते हैं, जो कि आपके सिर दर्द से आपको राहत दिलाने में कारगर होगा।

सिरदर्द के स्वास्थ्य संबंधी कारणों की बात तो हमने की, लेकिन कुछ सिरदर्द अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ आदतें और कुछ लोग भी कई बार सिरदर्द की श्रेणी में आते हैं। सिरदर्द कहलाने वाली आदतों में शुमार हैं चुगली, बेवजह के सवाल जवाब या नकारात्मकता का पिटारा, जो कई बार हमें सामान्य नहीं रहने देता। वैसे ही कुछ लोगों की फितरत भी इस तरह की होती है जो हमें कई बार सिरदर्द की हद तक ही परेशान कर देती है। इस तरह के सिरदर्द की खासियत या कहें मुसीबत ये होती है कि इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ना तो कोई चंपी काम आती है और ना ही कोई दवा। इनसे बचने का सीधा सा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को देखते ही हो जाइए 9-2-11, वरना आप भी यही कहेंगे।

जैसे कुछ आदतें और लोग सिरदर्द होते हैं, उसी तरह से कई काम भी हमें सिरदर्द ही लगते हैं। जैसे बैंक, ऑफिस या स्कूल में तरह तरह के कामों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना, किसी के बड़े से खत का जवाब देना, किसी के इत्मीनान से कहे जा रहे वॉइस मैसेज को सुनना और भी न जाने क्या क्या। सबके अपने अपने अलग सिरदर्द होते हैं, हो भी क्यों ना, सबके सिर अलग अलग हैं और उनके दर्द झेलने की क्षमता भी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सिरदर्द चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या हो किसी आदत, काम या व्यक्ति संबंधी, उससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए जीवन उतना ही

आनंदपूर्ण हो जाता है। जीवन में आनंद बढ़ाने और हर प्रकार के सिरदर्द को कम करने का एक कारगर उपाय है संगीत। अच्छा संगीत आपको स्वस्थ और आनंदमय रखता है। जब

हमारी यही है कामना कि आपको जीवन भर न करना पड़े किसी भी तरह के सिरदर्द का सामना। और इसी के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किया।

0: ये हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। SSB के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने SSB की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। एजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ AI समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के

0: विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के 4th चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है।

0: और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आंखें।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आम्रपाली फिल्म का गीत था हसरत जयपुरी के बोल, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी,
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती एसिड लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ।

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया ये दुगाना आपने सुना गुमराह फिल्म से। साहिल ध्यानवी के बोलों को शुरू में ढाला रवि ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे संगीता श्रीवास्तव के साथ।

हसरत जयपुरी के बोलों को सुनो में ढाला शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। फिल्म थी प्यार ही प्यार। फिल्म पेइंग गेस्ट, किशोर कुमार की आवाज़।

आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज ये तो गाना मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर का गाया फिल्म अनजाना से और यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचारों का। 3:05 पर जिला की चिट्ठी रिले की जाएगी।
1: 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड

0: महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि सभी देशवासी स्वदेशी को अपनाने की आदत डालें तो आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत का संकल्प पूरा किया जा सकेगा।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है। विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 2035 संस्थानों को डीनोटिफाई किया गया है, जबकि 362 नए संस्थान खोले गए हैं। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें से 123 संस्थान ऐसे हैं जिन्हें बंद करने के बाद उसी स्थान पर दोबारा खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां संस्थानों की वास्तविक जरूरत होगी वहां उन्हें खोला जाएगा और आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत आधारित संस्थान खोलने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर चुनाव से कुछ महीने पहले राजनीतिक लाभ के लिए संस्थान खोलने की घोषणाएं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई संस्थान खोल दिए गए लेकिन वहां पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गई। विधायक सुखराम चौधरी के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है और आयोग भी इस विषय पर मंथन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग का कल्याण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि उनके हित के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और जातीय जनगणना के बाद कई तथ्य सामने आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार बेबुनियाद मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान वास्तविक समस्याओं से भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, ऐसे में उनका धरने में शामिल होना उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने पेंशनरों के धरने को लेकर कहा कि सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष पेंशनरों की मांगों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगा।
2: कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार हो गई है। अगर राहुल गांधी जी के बारे में इस प्रकार से वो मान करके चले कि आने वाले समय में उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो ये आज से पहले कम से कम 12-13 बार उनकी लॉन्चिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं कि हम कर्मचारी तैसी हैं, कर्मचारी तैसे, तो कर्मचारी धरने पर क्यों है? और कहते हैं कि हम पूर्व कर्मचारियों के सारे पेंशन के साथ जो ड्यूज हैं उनके सारे जो है वो क्लियर करने के लिए आगे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। इस सारे मामले में विधानसभा के अंदर जो बात कहनी होगी वो कहेंगे, जरूर कहेंगे।
0: सोलन जिला प्रशासन ने आज से 3 दिवसीय अतिक्रमण हटाने की विशेष मुहिम शुरू की है। उपमंडलाधिकारी नीरजा शर्मा ने बताया कि इसके तहत कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर नगर निगम सोलन के क्षेत्र सहित शहर में भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से आग्रह किया है कि नगर निगम व प्रशासन द्वारा अधिकृत स्थानों पर ही व्यापार करें ताकि राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी न हो।
3: अतिक्रमण हटाने की हमने शुरुआत की है यहाँ से, और इसमें भी लाइन डिपार्टमेंट से जो भी इन्वॉल्व है वो सभी मिलके काम करेंगे ताकि मार्केट में जो एनफोर्समेंट

0: या रोड साइड जो एनक्रोचमेंट्स है उनको हटाया जा सके। आपसे अनुरोध है कि वेंडर मार्केट में या फिर जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ पे वो अपना कार्य करे और इस तरह से रोड साइड बैठ के एनक्रोचमेंट्स जो होती है वो राहगीरों को भी दिक्कत होती है चलने में, रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ की मशीनें होंगी स्थापित। वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
3: हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ऐसी अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं जो अभी देश में प्रमुख रूप से दिल्ली के एम्स जैसे संस्थानों में ही उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक तकनीक की मशीनरी स्थापित होने से जांच और डायग्नोस्टिक सेवाएं अधिक सटीक और मजबूत होंगी। इससे मरीजों को बीमारी का सही समय पर पता लगाने और तुरंत उचित उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल बड़े मेडिकल कॉलेजों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सीमित रखना नहीं है बल्कि लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर उपचार उपलब्ध करवाना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के 70 आदर्श चिकित्सा संस्थानों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार जल्द ही 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 150 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भर्ती करने जा रही है। इससे प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को विशेषज्ञ उपचार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता कम होगी। हमीरपुर के जोलसप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। यहां उत्तर भारत का पहला अलाइड हेल्थ सर्विसेज संस्थान खोला जाएगा। इस संस्थान में इसी वर्ष से दाखिले शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य अलाइड हेल्थ सर्विसेज से जुड़े विभिन्न प्रोफेशनल्स को हमीरपुर में ही तैयार करना है। इस संस्थान के शुरू होने से स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी और प्रदेश के अस्पतालों को भी प्रशिक्षित पैरामेडिकल व अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स उपलब्ध हो सकेंगे। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और अलाइड हेल्थ सर्विसेज के क्षेत्र में नए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। करीब 500 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक मशीनरी, 650 डॉक्टर और विशेषज्ञों की प्रस्तावित भर्ती तथा हमीरपुर में नए अलाइड हेल्थ सर्विसेज संस्थान की शुरुआत को प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 90% स्टाफिंग का लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की कमी दूर करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक मेडिकल कॉलेजों में 90% स्टाफिंग का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 150 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की घोषणा की है। सरकार का जोर केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर और सटीक जांच सुविधा उपलब्ध करवाना तथा बीमारी की पहचान के बाद जल्द उपचार शुरू करना है। यानी हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था में इस समय 3 स्तरों पर बदलाव की तैयारी है। कई नई मशीनें, ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतर स्टाफिंग। इन प्रयासों का असली फायदा तभी दिखाई देगा जब अत्याधुनिक सुविधाएं और पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारी मरीजों को समय पर और प्रभावी उपचार उपलब्ध करवाने में सफल हों। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक और अहम बिंदु ये भी है कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 27 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के बाद लागू हो गए हैं और इनका दायरा सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों तक है। नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों को हिमकेयर के पैकेज के अनुसार भुगतान किया जाएगा। दावा राशि निर्धारित पैकेज दर या वास्तव में हुए खर्च में से जो कम होगा उसी आधार पर तय की जाएगी।
2: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ की मशीनें होंगी स्थापित। वाचक स्वर था प्रभा शर्मा का। हम आकाश
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
5: नाश्ता ही देर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, तो उस समय आप नाश्ता एक पौष्टिक लीजिए, पोहा उपमा ये सब चीज़ें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना, चीला वगैरह में मूंग का चीला ले सकते हैं। और दोपहर के भोजन में अनाज दाल जैसा तुमने कहा है, और दही के साथ साथ प्रोटीन और अन्य सब्जियां भी शामिल करें। और शाम को ज़रूरत से ज़्यादा तले भुने या अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों के बजाय पौष्टिक विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि हम काम करके थक जाते हैं तो हमें खाना खा के रात को सोना भी है, तो जब हम तेल वाला मिर्च मसाले का खाएंगे तो हमें तकलीफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
6: और वैसे भी शाम के समय थोड़ा सा हमारी जो पाचन क्रिया होती है थोड़ी धीमी हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही हल्का और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। और जैसे सैलड हम खा सकते, सलाद खा सकते हैं, है ना, या कोई हरी या सब्जी कोई अपने हमने हरी बनाई, हरी सब्जी बना रखी तो उसको खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं,
5: बिल्कुल,
6: तो इस तरीके की चीज़ें हमें खानी चाहिए।
5: बिल्कुल।
6: और इसके अलावा हमारे शरीर के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी, तो दिन भर पर्याप्त पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है।
5: ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम 7-8 गिलास पानी आप ज़रूर पिए, कि जिससे आपके अंदर की शरीर की जो गंदगी है वो बाहर
6: घूट कर पानी पीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि फिर हमारे शरीर को उसको भी करने में बहुत टाइम लगेगा, परेशानी होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके पीजिए।
5: और पानी जब भी पिए ना तो बैठ कर पिए, धीरे धीरे पिए। तो फिलहाल तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

आसमान निखरा हुआ क्यों है? हवाएं क्यों झूमती हैं? लहरें बार बार किनारे को क्यों चूमती हैं?

0: तो अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है आरती सखी सहेली। तो हमारे साथी जो लगे उन्होंने क्या क्या संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: बहुत कुछ लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वही शरीर को स्वस्थ बनाता है। कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत अपनी जो वैसी चाय होती है उससे करती हूँ, और दिन में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और रात में सब्जी डालकर ज्वार की दलिया खाती हूँ, और कभी कभार तीज त्यौहार पर पूरी सब्जी खा लेती हूँ।
0: क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि दैनिक आहार और पोषण, रोजमर्रा के जो हम खाना खाते हैं उसमें पोषण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे सेहत को एक अच्छी गति प्रदान करता है। उसमें पोषण हम किस तरीके से ला सकते हैं? दैनिक आहार में पोषण लाने के लिए हर तरीके की चीज़ खाएं, चावल रोटी, लेकिन कहते हैं चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना है। और अपने आहार में अनाज, हर प्रकार की दालें, राजमा, चना, मूंग, इस तरह की चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। दूध दही ले, और जो मतलब जिस तरह के निरामिष या शामिष भोजन वैसे करते हैं तो वो करें आप, और जंक फूड और तली चीज़ों से दूर रहें, और घर में ही पोषक तत्वों से भरा स्वादिष्ट खाना जो बनता है वो आप खा सकते हैं। मूंग का दाल का चीला है, और इससे सिस्टम भी आपका सही रहता है, सेहत सही रहती है, और बहुत से खाने भी आप खोज सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए, सूजी का उपमा वगैरह, चीला, ये सब खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार और पोषण में भोजन में रंग बिरंगी सब्जियाँ और फल आप खा सकते हैं, 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, और बहुत ज़्यादा चीनी और मैदे वाली चीज़ों से दूरी बना कर रखिए, और खाने को स्वाद के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के अनुसार खाइए।
0: बिल्कुल। और जैसे कि दैनिक आहार और पोषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और मानसिक विकास का मुख्य आधार है, आहार है, और ये वो भोजन है और पेय है जिसे हम नियमित रूप से सेवन करते हैं। पोषण जो है ये शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है। और भाई इस की जानकारी हम एक दूसरे से ले सकते हैं, घर में जो परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं ना आरती, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी बताते हैं कि देखो ये चीज़ खाओ, गर्मी में ऐसी चीज़ें खाओ कि आपका तन में शीतलता बनी रहे, और जैसे कि बारिश के समय है तो इस तरह की कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें खाओ कि आपको थोड़ी सी गर्मी भी रहे, और सर्दी में तो कहा ही जाता है कि गर्म पदार्थ खाने हैं। तो इन सब चीज़ों का आप बड़े बूढ़ों से भी आप सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी किताबें भी आ गई हैं, आप सोशल मीडिया या आप उससे भी जानकारी नेट से भी, इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो
1: बिल्कुल। और वैसे भी अगर हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, या जैसे कि अपने घर का खाना छोड़ के हम बाहर का खाना खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया हुआ जब तेल भी उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें बन चुकी होती हैं और लगातार वो तेल खौल रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, तो वो तो आपको नुकसान पहुँचाने ही वाला है वैसे भी। और हम जो भी चीज़ें बाहर की खाते हैं उसमें कितना तेल, कितना नमक तेज़ है, या कितना तेल बहुत ज़्यादा है, या कितना मिर्ची तेज़ है, मतलब वो जो चीज़ें हैं, मसाले हैं, वो कौन से हिसाब से डाले गए हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि हम बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम खाएं, अपने घर पे ही आप अच्छा ताजा भोजन खाएं और सुपाच्य अच्छा

0: जो हल्का हो, जो
1: बिल्कुल
0: पचने में आसान हो, ऐसा भोजन खाना चाहिए
1: बिल्कुल। और खुला जब भी खाना किचन में बने आप बना के रखती हैं तो उसको ढक कर रखें, कभी भी खुला मत रखें। और हो सके तो आप बिल्कुल बासी खाने को मतलब ना ही खाएं तो अच्छा है, ताज़ा ही भोजन का जैसा तुमने कहा ही है। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि भाई आप भी ताज़ा खाना खाइए, हम बना रही है नहीं कि अभी नहीं खाएंगे तभी नहीं खाएंगे। बच्चे करते ना अक्सर ऐसा कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, अभी पेट भरा हुआ है, या कोई भी बहाने कर देंगे कि अब मोबाइल छोड़ के उन्हें खाना खाने के लिए बोल दिया गया है ना। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखें। और साथ में जब खाना खाने के लिए आप लोग बैठते हैं, खाना खाने सब लोग, हम सभी लोग बैठते हैं, तो उस समय इन सब चीज़ों से को अपने आप से दूर कर दें, मोबाइल वगैरह, कि सिर्फ खाने पर आप ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं।
0: वो हमारे स्वास्थ्य का के लिए जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो जब अपने हाथों से खाना अपने मुंह तक पहुंचाते हैं, वो जो खाना होता है ना, वो एक अलग सा रिश्ता बनाता है हमारे हाथों से, हमारे मुंह तक आता है खाना, तो उसकी वजह से ना हमारे शरीर पे बहुत बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा, जो बनाता भी है ना, एक घंटे दो घंटे करके मेहनत करके जो हमारी सखियाँ बहनें सब बनाते हैं हम लोग, तो उनकी तारीफ करने के लिए भी आप सोचिए ना कि अब जब स्वाद से खाएंगे तभी तो आप तारीफ कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान मोबाइल में लगा है या टीवी में लगा है तो आप तो खाने का स्वाद ही नहीं ले रहे, पता नहीं चल रहा है ना। तो वो चीज़ भी बहुत ध्यान रखना है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वो शरीर को स्वस्थ बनाता है, कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत मतलब हर्बल चाय से करती हूँ। तो ये देखो, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, और तुमने भी इस को बताया ही था आगे इसी संदेश को, तो बहुत अच्छी सी बात है कि इस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपना। और हम ध्यान रख लेते हैं बातों के बीच में
0: एक गीत का।

0: तो भाई देखो आरती, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया तो भाई आज कौन सी सखी विशेष की तुम बात करने वाली हो?
1: मैं हम बात करने वाले हैं आज छाया नंजप्पा जी की।
0: जी,
1: तो छाया नंजप्पा राजप्पा की, जो कि भारत की जानी मानी महिला उद्यमी में से शामिल हैं, और इनका जन्म हुआ था दक्षिण कूर्ग नलकरी में। उनका बचपन अपेक्षाकृत पारंपरिक और सुरक्षित वातावरण में बीता था। उन्होंने मैसूर में अपनी शिक्षा पूरी की, हालांकि उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो आगे बहुत समय तक जारी नहीं रह सकी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा और पत्राचार के माध्यम से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया।
0: छाया के जीवन में एक कठिन दौर तब आया जब उनके पिता का निधन हुआ और बाद में उनका विवाह भी असफल रहा, और इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और उनका उद्देश्य केवल अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं था, बल्कि अपने गृह क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी था।
1: बिल्कुल, छाया ने जब अपनी शुरुआत करी थी अपने उद्यम की, तो उनके पास ना तो पारिवारिक व्यवसाय की पृष्ठभूमि थी और ना ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कोई लंबा अनुभव। उन्होंने शहद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CBRTI पुणे में प्रशिक्षण लिया। इसी दौरान उन्हें मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी भी मिली,
0: और उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे शहद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का व्यवसाय विकसित किया। उनके व्यवसाय की शुरुआत विशेष रूप से शहद और कृषि आधारित खाद्य उत्पादों से हुई, और कंपनी की शुरुआत में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIC समर्थित ग्रामीण उद्यम के रूप में विकसित किया गया।
1: उनकी कंपनी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बनाना है, खाद्य उत्पाद बनाना है। बाद में कंपनी ने अपने उत्पादों का विस्तार किया, जिसमें शहद, जैम, सॉस, चिया सीड्स, प्राकृतिक सिरका, सेब का सिरका, कॉफी और मसालों जैसे उत्पाद हैं। छाया के उद्यम में का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ग्रामीण रोजगार और छोटे किसानों और सभी समुदायों को उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करके आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने वन समुदायों से प्राप्त शहद की खरीद और उसे बाजार तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। उनका मॉडल किसानों, शहद संग्रह करने वाले समुदायों, खाद्य उपयोग और उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने पर केंद्रित रहा है, और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कम शिक्षित और कम प्रशिक्षित लोगों को काम के दौरान प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि उनकी जो उद्यमिता है उसको सामाजिक उद्यमिता का उदाहरण भी माना जाता है। उनकी कंपनी को वी कनेक्ट इंटरनेशनल के उनको के वीमेन ओन्ड लोगों का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला ब्रांड बताया गया है। ये पहचान महिला उद्यमिता और महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने का के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने धीरे धीरे बड़े होटल समूहों, खुदरा संस्थानों और आयुर्वेद और फार्मा क्षेत्र के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाई। और उनकी कंपनी ने केवल कच्चे शहद की बिक्री तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया। और छाया ने भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले पैक किए गए शहद और अन्य खाद्य उत्पादों को स्थापित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
1: बिल्कुल, और छाया नंजप्पा नेशनल बी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी रही हैं और KVIC के हनी मिशन की नेशनल लेवल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी रही हैं। वो एसोसिएशन ऑफ बिजनेस वीमेन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारत की कंट्री प्रेसिडेंट और कर्नाटक की स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी सूचीबद्ध हैं।
0: और देखो, इनके बहुत सारे काम हैं, इन्होंने मतलब इस तरह से जो किया है वो सबके लिए एक मिसाल है, और हम लोग इनके बारे में और भी बातें करेंगे आरती, लेकिन अभी एक समय हो रहा है, धीरे धीरे एक अंतराल का समय हो रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर हम इनके बारे में आगे बातें करेंगे।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग बात कर रहे थे छाया जी के बारे में। तो क्या बातें चल रही थी आरती?
1: बिल्कुल, छाया नंजप्पा विभिन्न संस्थाओं और मंचों से भी जुड़ी रही हैं। वो नेशनल बी बोर्ड से जुड़ी हैं और हनी मिशन की राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार भी हैं, और जैसे कि हमने बताया था अभी, और उन्हें बहुत ही अलग अलग जगहों पर पूरा उन्होंने उसका वक्ता के रूप में भी भाग लिया है। और साथ ही ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के विकास के साथ छाया ने पारंपरिक कला और कारीगरों को बाजार से जोड़ने की दिशा में भी पहल की है। और नमन नामक पहल का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी कारीगरों की कला और सांस्कृतिक विरासत को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुँचाया है। छाया नंजप्पा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रियदर्शनी अवार्ड, सार्थक नारी अवार्ड के सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था।
0: क्या बात है। और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि छाया नंजप्पा ने मैसूर कर्नाटक में शहद प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की। विदेश में इस प्रकार का प्लांट स्थापित करने वाली पहली महिला उद्यमी बनी। कंपनी ने केवल शुद्ध शहद से शुरुआत की, लेकिन बाद में किसानों की सहायता के लिए जैम, सॉस, कॉफी, चिया सीड्स जैसे 35 से अधिक प्राकृतिक खाद्य उत्पादों का विस्तार किया। नेक्टर फ्रेश देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बिना कृत्रिम रंगों और प्रिजर्वेटिव के जैम का निर्माण किया। बहुत सुंदर सी बात है ये।
1: बिल्कुल। और साथ ही छाया नंजप्पा जी ने पहली बार शहद और जैम के लिए पॉलीप्रोपलाइन ब्लिस्टर चिपलेट्स और तकनीक का उपयोग अन्य ब्रांड्स के रूप में किया था अपने। इनके ब्रांड ने भारत में कई विदेशी और 20 साल पुराने स्थापित ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया था। आज इनके उत्पाद भारत के प्रमुख प्रीमियम होटल में भी सप्लाई किए जाते हैं। ये हमारा एक संदेश मिला है हमें
0: श्रोता ने। और आरती, हमारे साथी और लिखते हैं कि हर बार जगह बदलने पर लाखों का नुकसान होता था। इसके अलावा उपकरणों की टूट फूट के कारण कुशल कर्मचारी कम हो जाते थे और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता था। इसलिए हमेशा आशावादी रहने वाली छाया कहती हैं, हर बार जब हम नए लोगों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनके साथ मेरे संबंध और भी मजबूत होते जाते हैं। बहुत सही बात है, जब हम इस तरह से किसी को भी सिखाना चाहते हैं ना, तो वो एक टीम बन जाती है और टीम के अंदर एक आपसी जो सद्भाव होता है, एकता होती है, अनुशासन होता है और आप सबका सहयोग होता है, तो उससे ही वो काम अच्छा निखर के आता है।
1: बिल्कुल। और इस समय हमें अपने सखियों को, अपने सखाओं के साथ थोड़ा सहयोग करना चाहिए, उन्हें गीत सुनाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो भी आरती, अब हम लोग किस विषय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं?
5: अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मुफ्त की ओर।
4: अच्छा, सबसे प्यारा विषय लगता है तुम्हारा
5: मुफ्त की ओर। कई बार होता है ना कि हम लोग कभी कभी लालच में भी जाते हैं। अच्छा सेल लगी है, अच्छा मुफ्त मिल रहा है सामान, चलो चलो ले लेते हैं, कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी। तो ये जो लालच होता है ना हमारा, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
4: ओवर बजट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और हम लेते चले जाते हैं सामान। ये नहीं सोचते कि हमारे घर में स्टोर जमा हो जाएगा, अलमारी भर जाएगी, है ना।
5: इससे बस घर भी तो घर में भी सब सामान इतना ज्यादा जमा हो जाता है ना, जिसको इसका प्रयोग नहीं, हमारे पास जब उसका हमें उपयोग नहीं करना है तो हम जबरदस्ती में उसको भरते ही तो हैं। और दूसरी चीज है, कभी कभी खाने में जब हम ये काम करते हैं ना कि इसके साथ में ये मुफ्त है या ये हम इतना खा सकते हैं, ये थाली मुफ्त है या बड़ी थाली लेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे।
4: और कई बार क्या होता है कि हम उसके चक्कर में ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं, फिर अंत में होता है कि भाई इसको पैक कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी होती है। तो मुफ्त का लालच जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही होता है ना कि मुफ्त मिले तो बुरा क्या है, यही सोचकर कई बार हम ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं जिनकी वास्तव में हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। और मुफ्त शब्द सुनते ही मन में बड़ा उत्साह सा जाग उठता है और हम बिना सोचे समझे उस वस्तु या अवसर को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही मुफ्त का लालच कई बार नुकसान का कारण बन जाता है।
5: बिल्कुल, बाजार में जो आकर्षक ऑफर रहते हैं, फ्री गिफ्ट्स रहते हैं, एक के साथ एक मुफ्त जैसी योजनाएँ रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती हैं और कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ मुफ्त मिल रहा होता है साथ में हमें, और बाद में पता चलता है कि जिस चीज़ को पाने के लिए इतना खर्च किया उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में भी मुफ्त के लालच से सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय नकली इनाम, आकर्षक ऑफर और संदिग्ध संदेश लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मुफ्त चीज़ के पीछे भागने से पहले उसकी सच्चाई और अपनी आवश्यकता को समझना चाहिए।
4: बिल्कुल। और कई बार हम कहीं दुकान पर लेने जाते हैं आरती, तो वहाँ पर एक दिखाएंगे कि आप स्क्रैच कार्ड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रैच कर दीजिए तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो भाई वो चीज़ कभी ना करें, लालच में ना पड़े। और कहा भी गया है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती।
5: बिल्कुल।
4: और हर मुफ्त मिलने वाली वस्तु वास्तव में लाभदायक नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम लालच के बजाय विवेक से निर्णय लें, क्योंकि कई बार मुफ्त का लालच हमें इतना महंगा पड़ जाता है आरती कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और जो चीज़ बिना सोचे समझे मुफ्त में मिल रही हो उसके पीछे छिपी कीमत को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, है ना। और हमारे साथी क्या लिखते हैं?
5: हाँ, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर हमें हल्की फुल्की मुश्किलों में डाल देता है, कभी कभी भारी मुश्किल में भी।

0: निकाल देता है। विज्ञापन दाता और दुकानदार हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और मुफ्त की हर चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है, चाहे वो आपका कीमती समय हो, फोन का डेटा हो या घर में बढ़ने वाला कबाड़। इसलिए अगली बार जब भी फ्री का बोर्ड देखें तो खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। बहुत सही बात कही।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्त का लालच इस विषय की सबसे बड़ी खूबी इसका आम जीवन से जुड़ा होना है। हमारे साथी लिखते हैं कि लोग 100 रुपए की मुफ्त चीज पाने के लिए 500 का ऐसा सामान खरीद लाते हैं जिसकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं होती। घर की अलमारियों में बंद पड़ी बेकार वस्तुएं इस मुफ्त के लालच का जीता जागता सबूत है। और ये हमारे खोखले प्रदर्शन और दिखावे की संस्कृति पर करारा प्रहार भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू लेखन में इस बात का गहरा अर्थ मिलता है कि मुफ्त केवल एक ऑफर नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि मुफ्त का लालच देकर किसी भी फालतू चीज को बेचा जा सकता है। ग्राहक को लगता है कि उसने पैसे बचा लिए हैं, जबकि असल में वो अपनी जेब को वो ढीला कर चुका होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे मान लो तवे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम गए नहीं, हमें तो कुछ दूसरी ब्रांड का चाहिए, वो ले आए, तो बेचारे दो तवे जो ऑलरेडी आपके उसमें रैक में रखे थे वो अफसोस मना रहे हैं कि कब मुझे चढ़ाओगे, कब मुझे गर्म करोगे।
0: उनका तो मौका ही नहीं मिलता।
1: इसलिए कहा जाता है कि घर में जितनी चीजें हैं अगर एक है तो उसकी बड़ी कद्र होगी, बहुत ज्यादा चीजें होती तो किसी ना किसी की तो बेकदरी हो ही जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और हमारे एक साथी जो कहते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा कमजोर पहलू है जिस पर दुनिया का पूरा बाजार टिका हुआ है। ये विषय आज के उपभोक्तावादी समाज का कड़वा सच दिखाता है, जिसे बेहद हल्के फुल्के और हास्यास्पद शैली में आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक के साथ एक मुफ्त या मुफ्त डिलीवरी जैसे शब्द इंसानी दिमाग पर किसी जादू की तरह काम करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि मुफ्त का शब्द सुनते ही इंसान की तार्किक बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जहां हमने सुना मुफ्त है बस फिर कुछ सोचते नहीं है।
1: हम जो महिलाएं ना, माफ कीजिएगा, हमने अपने को भी शामिल किया, हम लोग मुफ्त के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई वो साड़ी वहाँ पे एक के साथ एक मिल रही है, ले लेते हैं। या कुछ भी कान की चीजें हुई, झुमका शुमका चूड़ी कंगन, ऐसी चीजें पे हम लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, यानी चमक दमक में बस
0: खो जाते हैं।
1: फिलहाल तो हम खोते नहीं है, हम सुनते हैं एक गीत।

0: तो भाई आरती देखो, मुंह में पानी आना, अब सोचो अगर हमने कोई नाम ले लिए तो तुम्हारे मुंह में क्या पानी आएगा क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो तुरंत आ जाता है जहाँ समोसे की बात चलती है।
0: समोसा तो छोड़ो, इमली कैथा बेर कमरक
1: बस करो
0: चूरन पानी के बताशे, तुम्हारे तो पानी आ गया, मुझे तो सामने दिख रहा है, लेकिन हमारे जो साथी हैं सखियां हैं तो वो बताएं कि ये सब चीज़ जो मैंने नाम लिया है, सबने आसपास देखी भी है तो खाई भी है ना अपने स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे, तो किसके किसके मुंह में पानी आया ये बताएं, है ना? और हमारे साथी लिखते मुंह में पानी आना हिंदी साहित्य में मुहावरों का एक विशेष स्थान है, ये हमारी भाषा को सुंदर सजीव और असरदार बनाते हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय और मजेदार मुहावरा है मुंह में पानी आना, और इस मुहावरे का सीधा संबंध हमारी जीभ स्वाद और मन की इच्छा से है। और किसी भी पार्टी समारोह में शादी ब्याह में जाते हैं या फिर वो जमाना याद आता है पत्तल पे जो खाना परोसा जाता था पंगत में हम बैठते थे, तो वहां पर सब चीजें देख के तो मुंह में पानी आता था, रायता आ गया या रसगुल्ला आ गया तो फिर पूछो मत, है ना? तो चलो आगे हमारे साथी क्या लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ है किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर या उसके बारे में सोचकर मन ललचा जाना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को संदेश मिलता है और मुंह में लार बनने लगती है। इसी स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया को भाषा में एक खूबसूरत मुहावरे का रूप दिया गया है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते हैं।
0: बिल्कुल, देखते हैं
1: आपके समाज चीज को देखिए, इतना अच्छा आपने रेसिपी बनाई है कि एकदम मुंह में पानी आ गया नहीं?
0: या बगल वाला कुछ बना रहा हो उसकी महक दूसरे के उसमें घुस जाए घर में, इसकी नाक में वो सुगंध लेके, भाभी जी आपने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे तो लग रहा था कि बस खाने को मिल जाए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था, ऐसी बातें भी होती है। और हमारे साथी लिखते हैं मुंह में पानी आना मुहावरा हमारी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अच्छी चीजों को देखकर उसका मन मचल ही जाता है, और ये मुहावरा हमारी आम बोलचाल को सरल रोचक और जीवंत भी बनाता है।
1: बिल्कुल। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये हिंदी भाषा का बहुत ही अच्छा मुहावरा है और इसका संबंध हमारे खाने पीने की इच्छाओं से है, और साथ ही इसके अभी इन्होंने पूरी लिखा हुआ चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हम देखते हैं या सोचते हैं, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, मिठाई या अचार, इनको देख के हमारा जो दिमाग है वो प्रतिक्रिया करता है और तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है।
0: भाई देखो, ये चाट पकौड़े ये सब जब जाते हैं ना मेले ठेले में जिसे कहते हैं बाजार में, तो ये सब चीज़ें देख के तो बिल्कुल पानी आना स्वाभाविक ही होता है। और मुंह में पानी आना ये मुहावरा लालच या इच्छा जैसी अमूर्त भावनाओं को एक शारीरिक क्रिया के माध्यम से बेहद सरलता से व्यक्त करता है। इसका प्रयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है, किसी भी आकर्षक वस्तु धन या अवसर को देकर पैदा होने वाले लालच के लिए इसका खुलकर प्रयोग होता है। सरल शब्दों के कारण ये आम बोलचाल से लेकर साहित्यिक रचनाओं तक में समान रूप से बिल्कुल फिट बैठता है, और हम सोचते हैं यहाँ पर हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे घर में बस हमारे बड़े भाई हैं जिनके मुंह में गोल गप्पे देखकर पानी आ जाता है. गोल गप्पे देखकर फिर वो नहीं रखें, मतलब नहीं रखेंगे. अब 80 साल के हो गए हैं फिर भी नहीं मानते, मतलब रुकते नहीं होंगे,
1: हाँ
0: उनको ऐसा लगता है ना.
1: एक और साथी जो कहते हैं कि मुंह में पानी आना इस मुहावरे का अर्थ है जीभ ललचाना या किसी चीज़ को खाने की तीव्र इच्छा होना। अक्सर हम सबके मुंह में कुछ ना कुछ देखकर तो पानी आ ही जाता है। और मेरे लिए वो क्या है वो मैं बताती हूँ। मेरे लिए वो है घर का चावल दाल और चोखा, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है। बहुत सिंपल खाना है पर मुझे बहुत पसंद है। कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है जब हम अपने किसी मनपसंद खाने की चीज़ को देखते हैं और हमारे मुँह में पानी आ जाता है। वाक्य प्रयोग मतलब अगर जब भी हम बारिश का मौसम हो तो क्या होता है, चाय और पकौड़े की एकदम से लगता है ना याद आ जाती है। तो
0: हाँ
1: पकौड़ों की जब याद आती है या खुशबू आ रही होती है हमारे एकदम, तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल. और एक साथी लिखते हैं कि भाई मुझे तो खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मिठाई देखकर मुंह में पानी जरूर आ जाता है. अच्छा, कह भी रहे हैं खाने पीने में इंटरेस्ट है लेकिन मिठाई देख के हो जाता है पानी. ये तो भाई आपने कमाल की बात करी. और इसी तरह एक लिखते हैं कि बचपन में मैं कच्ची इमली और कच्ची बेरी जब भी देखता था मेरे मुँह में पानी आ जाता था, खूब चटकारे लेकर खाता था. मैं अभी सखी सहेली प्रोग्राम में ये कमेंट लिख रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ गया. और कच्ची इमली और कच्ची कैरी खाना कम हो गया, नहीं तो ज़्यादा खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं. क्या
1: बिल्कुल सही
0: बात
1: कहा।
0: है.
1: और एक हमारे और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे पापा जब भी अपने हाथों से घेवर बनाते थे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था।
0: तो चलो भाई, इसी के साथ साथ हम लोग एक गीत की ओर बढ़ चलते हैं.

0: तो आरती देखो, बातें करते करते प्रोग्राम का समय कैसे बीत चला पता ही नहीं चला। तो लेते हैं सबसे विदा सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता जमील खान। इनकी वेब सीरीज गुल्लक तो आपने देखी होगी, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो आइए सुनते हैं अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने रंगमंच की सादगी से अपना सफर शुरू किया, सिनेमा और स्क्रीन पर अपने किरदारों से जाने गए और एक बहुत ही खूबसूरत शो गुल्लक के जरिए लाखों दिलों का हिस्सा बने हैं। हम बात कर रहे हैं गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान जी की। जमील खान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे आमंत्रित करने का। ये मेरे लिए बाईस फख्र चीज़ है कि मैं विविध भारती के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और दिल खोल के बातें करूँगा।
1: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, दिल खोल के बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। तो शुरुआत हम चाहेंगे, जैसे हम विविध भारती के परिसर में आए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, कुछ रेडियो
2: मेरी यादें हैं उसकी बात है। तो देखिए, मैं बोर्डिंग स्कूल निकल गया था तीसरी क्लास से ही,
1: जी,
2: तो उतना ज़्यादा रेडियो से नाता नहीं रहा, लेकिन जब मैं छुट्टियों में आता था तो मुझे याद है हमारे घर में, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में, लेकिन जो म्यूज़िक बजता था वो रेडियो पर बजता था आमतौर पे, या कैसेट प्लेयर्स होते थे उस ज़माने में, तो वो भाई बहन वो चलाते थे। और रेडियो मुझे याद आता है कि अम्मी हमारी जो है ना वो गुनगुनाती थी हल्के हल्के,
1: कुछ भी काम करते हुए वो यादें हमेशा बरकरार रहती हैं।
2: तो वो एक बड़ी मीठी याद है कि अम्मी काम कर रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, पीछे कहीं रेडियो बज रहा है और साथ साथ वो भी गुनगुना रही हैं। तो वो अम्मी से बहुत ज़्यादा रिश्ता जुड़ा है रेडियो और गानों का, तो वो मेरी बहुत मीठी याद है बचपन की। और अब जो है वो गाड़ी में ख़ास तौर से मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा घर पर कभी कदार चलता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिस पर आप गाने सुनते हैं
1: जी।
2: लेकिन जो एक
1: सफर का साथी,
2: हाँ सफर का साथी जो है, और एक क्लासिकल जो गाने जो हैं जिनसे कि बहुत गहरा मरासिम है, वो विविध भारती जैसे चैनलों पर मिलता है। और पुराने गाने हों चाहे नए गाने हों, खासतौर से पुराने गाने जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, वो ऐसे चैनलों पर ही सुनने को मिलता है, और मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: नॉस्टैल्जिया की बात की तो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपने कहा ही बहुत कम उम्र में आप हॉस्टल चले गए थे, घर का परिवेश कैसा था, और स्कूल के दौरान या उस वक्त हॉस्टल की यादें तो खैर खूबसूरत रहती है, हमेशा याद रहती है, बट एक्टिंग का क्या तभी से आपने सोच लिया था अभिनय में जाना है, या तब तक किस तरह से आपका झुकाव इस तरफ हुआ, या घर से कैसा योगदान मिला?
2: मेरे पूरे खानदान में किसी का किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा है।
1: अच्छा,
2: दूर दूर तक बिजनेस व्यवसाय जो है वो रहा है। हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं, और अगर सर्विस क्लास जो रहे हैं वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रहा है। मेरे दादा का इंतकाल हो गया काफ़ी जल्दी, वो जब स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ाई भी कर रहे थे और नौकरी शुरू कर दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कालीनों का बिजनेस शुरू किया, पहले ट्रेडिंग से शुरू की
1: जी,
2: और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने लगे। और एक्सपोर्ट करते करते ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि भदोही के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होने लगा।
1: क्या बात है।
2: अब मैं सुनता हूँ, ये सब मेरे बचपन की बात है, जो ये किस्से कहानियाँ फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के
1: जी,
2: कि मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई।
1: ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता है।
2: तो वहाँ से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा ऐस सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है, किसी ने कभी रोका टोका नहीं। खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा
1: जी।
2: तो वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ से

0: करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहाँ भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जेईई का होता है,
1: का
0: उसमें जब नहीं हुआ मेरा तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा अब हो गई पढ़ाई साइंसेज वगैरह की, अब जो मज़ा आता है जिसमें वो करते हैं, तब इस तरफ झुकाव हुआ। और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया। बीए कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया। शेरवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक,
1: जी
0: और फिर यह एएमयू से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने।
1: जी
0: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था।
1: थिएटर था, और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो वो ज़रूर मिलती है। तो मुझे
0: जी
1: लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे
0: जी
1: कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनका साथ मिला मुझे और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम होता है।
1: जी
0: तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते, फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए।
1: जी
0: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है वो दो प्रोडक्शन जो मुझे ख़ास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी
0: जी
1: सुना है।
0: जी तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखा है उनसे और अभी भी सीख रहे हैं। ज़्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूँगा कि इंसान के तौर पे और नज़रिए के तौर पे उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफ़ी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत
0: अरे
1: सुनवाएं।
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत प्यार किया तो डरना
1: प्यार
0: क्या।
1: किया तो डरना क्या,
0: जी
1: आइकॉनिक गीत।
0: जी
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते हैं लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये दोनों कैसे चली? पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल,
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नज़र किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेज़ी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हों या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी, और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में, और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नज़रिए से, और वो यही आता था तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीज़ें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का ज़रिया देखा जाए। और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
0: आज भी नहीं है,
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की, अच्छा, लोगों से काम मांगने का
0: जी।
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं। बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हों, चाहे वो एड्स हों, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहाँ देखा, समझा, बुलाया, और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूँगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज़ है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर,
0: वो एक नींव है
1: जी,
0: जहाँ से सब चीज़ें शुरुआत होती
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
1: जी। तो हाँ, वही एक शुरुआत, और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके
0: जी,
1: तो करना चाहिए थिएटर में। उन्होंने देखा, सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज अ वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते खुले।
0: हाँ। अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
1: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
0: क्या बात है, क्या पसंद है सुनवाते हैं गीत
1: जी।

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है,
1: जी
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी ज़रूरी है।
1: जी
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे,
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूँ मैं।
1: जी
0: एक तो जहाँ से शुरुआत हुई, संजय लीला भंसाली की फिल्म से,
1: जी
0: हम दिल दे चुके सनम,
1: रामलीला भी उनके साथ
0: रामलीला भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर। बिल्कुल अलग किरदार, और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही, लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, तो क्या डिफरेंस है? और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो हैं वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं, और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है, वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी,
0: बिल्कुल जी,
1: तो
0: लार्जर देन लाइफ
1: लार्जर देन लाइफ।
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में,
0: जी
1: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज़ में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी
0: बिल्कुल
1: वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज़ में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज़ बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूज़िक
0: बिल्कुल
1: कंपोज भी करते हैं अब तो,
0: बिल्कुल हाँ
1: और बाकी तमाम चीज़ें तो हैं ही। तो उनका जो अंदाज़ है वो काफ़ी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगें चाहे 200 टेक लगें,
0: अच्छा
1: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं।
0: जी
1: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं कि
0: जी
1: जो उनको वो चीज़ दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो। वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं हैं तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज़ भी है वो।
0: बिल्कुल
1: और अनुराग का जहाँ तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज़ डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है, और वो रियलिज्म में ज़्यादा घुसता है। तो अनुराग

0: उस लिहाज से अच्छा है कि वहाँ पर भी आपको अच्छे एक्टर की ज़रूरत पड़ेगी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है, क्योंकि वो
1: स्पॉन्टेनियस
0: हाँ
1: स्पॉन्टेनियस
0: स्पॉन्टेनियस बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए, कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीज़ें भी मिल जाती हैं उसमें। कभी कभी अच्छी चीज़ें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फ़र्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
1: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
0: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
1: श्रीकांत में आपने काम किया?
0: श्रीकांत, हाँ श्रीकांत,
1: श्रीकांत,
0: श्रीकांत मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा
1: हाँ
0: सा टफ था,
1: जी
0: क्योंकि एक तो उम्र ज़्यादा और क्या कहते हैं ऐसी शख्सियत
1: जी
0: जो बहुत ही अजीम बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है
1: हाँ
0: उसको,
1: हाँ
0: सुना
1: बिल्कुल
0: है देखा है,
1: बिल्कुल
0: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर। मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
1: हाँ हाँ
0: एक तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेज़ी भी, वो क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे तो
1: बिल्कुल
0: अंग्रेज़ी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज़्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा।
1: जी
0: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था और थोड़ा मुझे डराया भी उसने
1: अच्छा,
0: कि ये
1: ज्यादा
0: सही।
1: तैयारी के साथ
0: हाँ
1: उतरे
0: हाँ
1: आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के
1: क्या बात है, आपकी पसंद। बिल्कुल
0: जी।
1: सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है।
1: जी
0: गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार। अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है,
1: बहुत ज़्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नज़दीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मज़े से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी जो
1: जी
0: एपिसोड्स आएंगे।
1: जी दो चीज़ें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया, ऐसा
1: घर घर
0: लगता
1: का
0: है
1: हिस्सा
0: हमारे
1: हो गया।
0: घर के
1: और मेरे
0: मेहमान हैं।
1: लिए भी एज ए कैरेक्टर
0: जी
1: अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीज़न कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी ज़बान, ये मेरी नॉर्मल ज़बान
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की ज़बान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा, स
0: जी
1: श
0: हाँ
1: ज, और
0: बिल्कुल
1: मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की ज़िंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफ़ी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी,
0: जी
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल ज़िंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल
1: क्या
0: क्या
1: क्या
0: चुनौतियां हैं,
1: चुनौतियां हैं। तो
0: बिल्कुल
1: उतार में वो उसका एहसास हुआ, ख़ास तौर पर जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहाँ से आता है, और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहाँ से उठाई हुई चीज़ें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं हैं तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही ज़रूरी बेसिक चीज़ है।
1: जी, और आँख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें, वो ज़खीरा बनता है आपका, कब क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी
0: जी,
1: आप वहाँ से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
0: और यहाँ पर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा करना, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है, क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक,
1: जी
0: ये भी एक सीख देता है,
1: जी
0: तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है।
1: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि
0: जी
1: मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अब्बू आए कहने कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी, पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ

0: मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाई ये मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
1: बिल्कुल।
0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है। और मैं यही कहूँगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं। और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ अ सी ऑफ लाइट्स,
0: राइट?
1: उसके बारे में कुछ बताइए, वहाँ का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहाँ पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइस, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा। और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था और वक्त पे ख़त्म भी हो जाता था
1: जी।
0: तो वो एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा दिखी मुझे। तो फ़र्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है
1: जी। और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहाँ पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
0: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूँगा मैं, कोई कमाल की चीज़ आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूँगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा। अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फलां के बाप है कर लिए। मैं सैकड़ों मना कर चुका हूँ, मना करता रहूँगा उसको
1: जी।
0: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी मैं करना ज़रूर चाहूँगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
1: बिल्कुल। हम चाहेंगे कि जो चीज़ की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो ज़रूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतज़ार हम करें?
0: अभी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक फिल्में हैं। सूरज बड़जत्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने। और एक फिल्म जो कर रहा हूँ, जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज़ में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगे मुझे नहीं मालूम, वो डेट्स अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा
1: जी।
0: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेज़ी में भी की है, तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेज़ी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज में से तो गुल्लक का सीज़न 6 आएगा अगले साल,
1: उसका इंतज़ार रहेगा हमें।
0: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी लिखा जा रहा है वो।
1: जी,
0: तो यही सब है। और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आएँ, आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह
1: हमें भी इंतज़ार रहेगा।
0: ज़रूर।
1: तो आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
0: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं। तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी है, अमर अकबर एंथनी
1: जी।
0: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा होती नो, अमर अकबर एंथनी।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहाँ से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेरवुड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी
0: जी।
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं
0: बिल्कुल।
1: और

0: उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में, और उन्होंने पहचान लिया जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले
1: जी,
0: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल भाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन है कि डायरेक्टर से बात हो रही भी वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब हैं, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया है, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं
1: जी,
0: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल हैं हमारे, उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने। और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और लेजेंड हैं वो, तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है।
1: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
0: जी,
1: वो बताना चाहेंगे? तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
0: जी,
1: कभी कभी मज़ेदार भी होती है
0: जी जी,
1: उस बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था। तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहाँ पर पड़ा, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहाँ से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं मज़ा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज़ अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
1: एक और
0: हाँ तो सर एक और करते हैं
1: जी,
0: मतलब मुझे ऐसा मज़ा आ रहा है कुछ कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया तो मैंने छलांग और ऊँची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुए था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
1: फिसल गया
0: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई तगड़ी, लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि वहाँ मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहाँ शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहाँ से, तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया
1: बेहोश हो गए
0: कुछ, मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहूँगा मैं। फिर होश आया तो कह रहे सर, उसने मुझे फिर उसके बाद लिटाया वटाया सब, पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था ये, वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन्स हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिम्प है
1: अच्छा।
0: हाँ कुछ कुछ एक सीन में,
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी।
1: जी जी जी
0: तो वो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए,
1: हाँ,
0: और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का घरों का, और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर देखा रंग चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सलिए वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई, वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और फिर जब वो गुजर गया फिर वापस आया, तो वो
1: वो एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में,
1: बिल्कुल,
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप,
1: बिल्कुल।
0: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया कि नहीं अरे ये वहां से रोको यार भाई नहीं आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके से?
0: बेसिकली देखिए मेरे

0: लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, जो स्क्रिप्ट है, वो बहुत कुछ बोलती है और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे।
1: जी
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना, कि बगैर बोले बहुत सारी चीज़ें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो हैं, जो अल्फाज हैं, वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में। तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज़ करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूँ, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूँ।
1: जी
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है, डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है।
1: जी
0: और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी ज़बान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका, उससे आपकी चाल बदल जाती है, आपका
1: आजकल
0: अंदाज बदल
1: वर्कशॉप्स
0: जाता
1: भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से
0: है।
1: पहले,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीज़ें, कुछ एक एक होता है ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे। और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से, तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना,
1: जी
0: क्योंकि एक परिवार है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज़ की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी,
1: जी
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया, और फिर शूट करते टाइम तो और ज़्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा।
1: बिल्कुल दौड़ने लगा और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़
0: जी
1: रहा है।
0: जी
1: यहां पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: योगदान स्क्रिप्ट का ही है. अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते
1: जी.
0: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज़्यादा योगदान है. और जहाँ तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीज़ें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं
1: जी,
0: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं. तो वो एक मिली जुली एफर्ट है. लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पर स्क्रिप्ट नहायत ही अच्छी होती है गुल्लक की. और मुझे लगता है कि इसी वजह से ही भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक के कामयाबी में.
1: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का कुछ फैन मोमेंट?
0: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा. थिएटर में जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर. कुछ एक फिल्में आईं उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी. लेकिन गुल्लक से मुझे जो फ़र्क जो महसूस होता है वो है पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने ज़रूर दिया है मुझे. और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हों.
1: बिल्कुल.
0: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले. बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं, या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो.
1: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, उस बारे में कुछ बताएं.
0: हाँ, वो भी देखिए ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पाँव छूने लगे. तो मैंने उनको उठाया, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप. तो वो गले लग गए, और गले लगे रहे काफ़ी देर तक. और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए, वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी, और बस थैंक यू कह के चले गए.
1: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना ज़्यादा ये नवाजा जाता है इस प्यार
0: जी
1: से.
0: जी जी. और कमाल की चीज़ है वो. वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो.
1: बिल्कुल. और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
0: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूँ. अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफ़ी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है
1: जी.
0: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का
1: जी,
0: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूँ मैं. तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूँ कि उसको समझूँ, जटिल न रहूँ इस बात का कि मैं सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ वही सही है. दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नज़रिया, और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस बात को समझना कि
1: हाँ,
0: कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है.
1: बिल्कुल.
0: और मस्तीखोरी तो भरी है मेरे अंदर. मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ और मैं सीरियस कम रहता हूँ लाइफ में, और ज़िंदगी को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं, और स्ट्रेस देता भी नहीं. मैं बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से और इस तरीके से काम भी करता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए.
1: बिल्कुल.
0: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है
1: जी.
0: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से.
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं.
0: यही कहूँगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं।

0: है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़ें।
1: जी,
0: इसी में हम सबकी भलाई है।
1: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सेलुलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शन से जुड़ी

0: सभी प्राथमिकी को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे की जांच नहीं करने का आदेश दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। यह आदेश उन विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया जो सद्भावना के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन की घटनाओं पर कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को भी कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने आज कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्य के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकता। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मेट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं 840 मेट्रिक टन प्याज लेकर दूसरी मालगाड़ी चेन्नई पहुंच चुकी है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने का एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार एवं शासन में एमए की डिग्री दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Alongside the 25th anniversary of Bishkek Declaration, member states signed a wider package of resolutions aimed at improving institutional frameworks and countering modern security threats. More from our correspondent.
3: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, "Wars and conflicts are not a solution to any problem, and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy." The Prime Minister said, "India supports all efforts that connect markets, facilitate trade, and open new avenues for development." However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries.

0: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
1: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
0: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
2: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
3: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आशा इस फिल्म से ये भक्ति रचना मोहम्मद रफ़ी और नरेंद्र चंचल व साथियों की मिलीजुली आवाज़ों में

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:25 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस युवा मंच कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट रेनू मनकोटिया। जी हाँ, आज का सेगमेंट बहुत ही खास रहने वाला है युवा दोस्तों, क्योंकि आज हम करेंगे सैर सपाटा। तो चलिए उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ, इस गीत के बाद हम लौट आए हैं फिर आज के युवा मंच कार्यक्रम के आज के सेगमेंट सैर सपाटा में। सैर सपाटा में आज हम आपको बिना घर से निकले देश दुनिया की खूबसूरत जगहों की सैर कराते हैं। जी हाँ, और आज हम चलने वाले हैं पहाड़ों की रानी मसूरी। जी हाँ, तो युवा दोस्तों बैठ जाइए, आराम से चाय का कप हाथ में लीजिए, क्योंकि आज का सफ़र है ठंडी हवाओं, हरे बड़े पहाड़ों और बादलों की चादर में लिपटी एक ऐसी जगह की जिसे अंग्रेज़ों ने भी अपना समर कैपिटल बनाया था। मसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में समुद्र तल से लगभग 2005 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसी यह जगह देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से महज 6 से 7 घंटे की ड्राइव पर। मसूरी की खोज सन 1820 के आसपास ब्रिटिश अधिकारियों ने की थी और तभी से यह अंग्रेजों का पसंदीदा गर्मियों का ठिकाना बन गया। आज भी यहाँ की पुरानी हवेलियाँ, चर्च और इमारतें उस दौर की याद दिलाती हैं। करेंगे बातें और भी, लेकिन रुकते हैं छोटे से अंतराल के लिए, लौटते हैं फिर इसी कार्यक्रम की ओर।
1: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
2: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
1: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत हमारे युवा दोस्तों और हमारे तमाम श्रोताओं का भी। जी हाँ, आज सैर सपाटा में हम सैर कर रहे हैं जी मसूरी की। तो अब हम चलते हैं, सीधे पहुंचते हैं मसूरी के दिल यानी कि माल रोड पर। यह वह जगह है जहां हर पर्यटक की शाम बीतती है। यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। रंग बिरंगी दुकानें, गर्मा गर्म मैगी और कॉफ़ी के स्टॉल, हस्तशिल्प की दुकानें और चारों तरफ फैली पहाड़ों की खूबसूरती। माल रोड पर टहलते हुए आपको तिब्बती बाजार भी मिलेगा जहाँ ऊनी कपड़े और स्थानीय हस्तशिल्प खरीदे जा सकते हैं। शाम के समय जब यहाँ रोशनी जगमगाती है तो यह जगह किसी सपने जैसी लगती है। अब बात करते हैं मसूरी के कुछ मशहूर पर्यटन स्थलों की। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे गन हिल की। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों का नज़ारा दिल जीत लेता है। यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे की सवारी भी उपलब्ध है। और साथ ही हम बात करेंगे कैमल्स बैक रोड की। यह एक शांत और खूबसूरत सड़क है जो एक चट्टान के आकार के अपने ही नाम पाती है, जो ऊंट की पीठ जैसी दिखती है। यहाँ सुबह शाम की सैर करना एक अलग ही अनुभव है। अब हम बात करेंगे कैंपटी फॉल्स की। मसूरी के करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित यह झरना पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ठंडे पानी में नहाना और आसपास की हरियाली का आनंद लेना यहाँ की खासियत है।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से,

0: एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम युवा मंच, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आज का हमारा सेगमेंट है इस कार्यक्रम में सैर सपाटा, और आज हम आपको करवा रहे हैं घर बैठे मसूरी की सैर। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं पर्यटक स्थलों की। लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, जहाँ से दूरबीन के जरिए हिमालय की चोटियों को करीब से देखा जा सकता है। बंदर पूंछ, केदारनाथ और यमुनोत्री जैसी चोटियां यहां से नजर आती हैं। कंपनी गार्डन, फूलों से सजा यह बगीचा परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां बच्चों के लिए झूले और नौकायन की सुविधा भी है। युवा दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि मसूरी घूमने का सबसे सही समय कौन सा है। मार्च से जून गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान सुहावना रहता है, यही वजह है कि यह समय सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है। जुलाई से सितंबर मानसून के दौरान यहाँ की हरियाली अपने चरम पर होती है, पर बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा भी रहता है। दिसंबर से फरवरी की बात करें तो सर्दियों में मसूरी बर्फ की चादर ओढ़ लेता है, और बर्फबारी देखने के शौकीनों के लिए यह सबसे अच्छा समय है। अब बात करें स्वाद की। मसूरी में आपको उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों के साथ साथ तिब्बती व्यंजन भी मिलेंगे, मोमोज, थुपका और गर्मा गर्म मैगी यहाँ के हर कोने में मिल जाएगी। इसके लिए चार दुकान यहाँ की फेमस दुकानें हैं, जहाँ पे लोग अक्सर बैठे हुए दिखते हैं। स्थानीय बाजारों में बाल मिठाई और झंगोरे की खीर भी जरूर आजमाएं, बहुत ही टेस्टी होती है। चलते चलते कुछ काम की बातें करते हैं कि एक गर्म कपड़े जैसे साथ में जरूर लेकर रखें, क्योंकि पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है। अगर मॉनसून में जा रहे हैं तो भूस्खलन की जानकारी पहले से ले लें। स्थानीय हस्तशिल्प खरीदते समय मोल भाव जरूर करें। सुबह जल्दी निकलें ताकि भीड़ से बचकर शांति के नज़ारों का आनंद आप ले सकें।

तो युवा दोस्तों, यह थी हमारी आज की सैर पहाड़ों की रानी मसूरी की। बादलों से बातें करती चोटियां, ठंडी हवाओं का स्पर्श और माल रोड की रौनक, यह सब मिलकर मसूरी को एक यादगार जगह बनाते हैं। उम्मीद है आपको आज का यह सफ़र पसंद आया होगा। अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे किसी और खूबसूरत मंजिल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। अब दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया को। चलते चलते हम आपको बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला विपिन कुमार से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ सुनिएगा। शाम 6:30 पर कार्यक्रम मोजां ग्रहिंदियां सुनवाया जाएगा। विषय रहेगा फूलों की खेती बाड़ी कैसे बनाए फायदेमंद। शाम 7:10 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम किसान वाणी रिले किया जाएगा।

रात्रि 8 बजे शिमला से ही विधानसभा समीक्षा रैली की जाएगी। रात्रि 8:15 पर सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा गायक तोशी रैना के गाए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 से 10:30 पर लोक संगीत का पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर चित्र

पर संगीत का आनंद लीजिएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में होगा, संगम जानकारियों के साथ मनोरंजन का। महिलाओं का कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है और आयोग भी इस विषय पर मंथन कर रहा है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग का कल्याण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि उनके हित के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और जातीय जनगणना के बाद कई तथ्य सामने आएंगे। सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर ओबीसी को वर्ग ए और बी में 12% जबकि वर्ग सी व डी में 18% आरक्षण दिया जाता है। सरकारी विभागों में प्रशिक्षण के लिए भी अलग अलग संस्थानों और पाठ्यक्रमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में सवालों के तथ्यात्मक जवाब न देने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में जवाब देने के बजाय जनसभा की तरह भाषण देते हैं, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है।

0: जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मौजूदा सरकार के पांच साल के सभी फैसलों की समीक्षा होगी और जो फैसले जनहित में नहीं होंगे उन्हें रद्द किया जाएगा।
1: मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सदन की गरिमा इतने निम्न स्तर पर वर्तमान सरकार ने पहुंचा दी है, कोई भी प्रश्न कोई भी जानकारी सदन के अंदर तथ्य के आधार पर नहीं मिल पा रही। वहां पे राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं कि विधानसभा को जनसभा ही समझ लिया, ऐसी स्थिति हमने कभी भी हिमाचल प्रदेश में आज से पहले नहीं देखी जो वर्तमान सरकार के दौरान देखी। रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद फैसला करेंगे, जो गलत उन्होंने फैसले लिए होंगे उनको रद्द भी किया जा सकता है।
0: जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार कर्मचारी हितैषी है तो पेंशनरों को अपने हक के लिए धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के चार साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास थम गया है और पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री जी आप बार बार कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, हर रोज हर चौक पर पेंशनर धरने पर क्यों है, प्रदर्शन क्यों। अब सीधी सी बात है, जो वर्तमान स्थिति है अब बस की नहीं है। जैसे कैसे आप वक्त निकाल रहे हैं, ना प्रदेश में जनहित की कोई योजना आज तक इस कार्यकाल में जमीन पर उतर पाई, हर तरफ जो है विकास पर एक तरह का ताला लगा हुआ है, हमारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही हिम चंडीगढ़ सिटी का विकास कार्य शुरू करेगी। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने चंडीगढ़ के निकट बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में तीन नए शहर और सिरसा रिवर फ्रंट विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि ये नए शहर लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे और प्रदेश का राजस्व भी बढ़ाएंगे।
2: पहले चरण में हम 1000 हेक्टेयर के तीन बड़े प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और जो सिरसा नदी है उसका रिवर फ्रंट बनाने के लिए मैंने डायरेक्शन दी है और जल्दी ही हिम चंडीगढ़ का कार्य शुरू किया जाएगा। एक ऐसा शहर हिमाचल प्रदेश में बसाने जा रहे हैं जिससे हमको रेवेन्यू भी आए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है।
0: प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है जो 30 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान प्रगणक घर घर जाकर जनसंख्या गणना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे। जनगणना विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस चरण में प्रदेश के पूर्ण व आंशिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। लाहौल स्पीति जिले में राशेल लिंगर सड़क निर्माण कार्य के दौरान की जा रही ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने जिला उपायुक्त और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को लिखित शिकायत के माध्यम से निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे विस्फोटकों और उससे होने वाले नुकसान की जांच करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के बाद गांव के कुछ घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में सड़क निर्माण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
4: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम।
5: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ और ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपके रेडियो सेट्स पर।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का ये गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने और बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: पुनर्मिलन, इस फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ। संगीतिया है सी अर्जुन ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जन

ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति राज फिल्म से। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा है गुलशन बावरा ने।

इसी गीत के साथ आज के सुरमई सांझ कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

मुरझा रही दिया कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मुरझा रही दिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो कम जमीन में भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फूलों की खेती के बारे में कि कैसे कम जमीन पर भी फूलों की खेती करके अच्छी आमदनी जो है वो कमाई जाती है। इस विषय पर बात करने से पहले सुनवाते हैं हम आपको ये लोक भजन।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: मोजा ग्राइंडियां, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आज हम बात कर रहे हैं कि फूलों की खेती करके हम कैसे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जी हाँ, फूलों की खेती यानी पुष्प कृषि आज के समय में किसानों के लिए बहुत फायदेमंद व्यवसाय बन चुकी है। कौन कौन से फूल किसान भाई उगा सकते हैं तो हम आपको बता दें कि गेंदा, गुलाब, ग्लेडियोलस, रजनीगंधा, जरबेरा और गुलदाउदी, ये सब मांग वाले फूल हैं। गेंदा तो सबसे आसान है, कम लागत में भी अच्छी पैदावार देता है। इसमें ज़मीन और मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जिसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। ज़्यादातर फूलों के पौधों को भरपूर धूप चाहिए, दिन में कम से कम 6 घंटे। गोबर की सड़ी हुई खाद खेत तैयार करते समय डालें, फिर संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दें। सिंचाई ड्रिप विधि से करें तो पानी की बचत भी होगी और फूलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अब सबसे ज़रूरी बात, बाज़ार और कमाई की। देखिए, फूलों की मांग शादी विवाह, त्योहारों और मंदिरों में हमेशा बनी रहती है। किसान भाई अगर सीधे मंडी या फूल व्यापारियों से जुड़ें या खुद छोटी नर्सरी खोलें तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। कुछ किसान तो अब ऑनलाइन भी फूल बेच रहे हैं। फूलों की तुड़ाई सही समय पर करें, ताजगी बनाए रखने के लिए ठंडी जगह रखें और बाजार भेजने से पहले सही पैकिंग करें। साथ ही कीट पतंगों के बचाव के लिए समय समय पर निरीक्षण करते रहें।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: उम्मीद है ये लोकगीत जरूर पसंद आया होगा हमारे किसान बागवान भाइयों को। जी हाँ, किसान भाइयों, फूलों की सीधी बिक्री के साथ साथ मालाएं, बुके, सजावटी फूल, सूखे फूल और गुलाब जल जैसे मुख्य संवर्धित उत्पाद बनाकर भी अतिरिक्त आय जो है वो प्राप्त की जा सकती है। यदि आपके पास कम भूमि है तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में उन्नत किस्मों की खेती करके और भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। सरकार द्वारा समय समय पर पॉली हाउस और फूलों की खेती के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए अपने निकटतम कृषि या बागवानी विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। फूलों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तोड़ाई के तुरंत बाद सही पैकिंग और समय पर बाजार तक पहुंच जाएं ये फूल, क्योंकि ताजे और गुणवत्तापूर्ण फूल हमेशा अच्छे दाम दिलाते हैं।

तो किसान भाइयों, यदि आप कम लागत में अधिक आय का विकल्प तलाश रहे हैं तो फूलों की खेती आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला विपिन कुमार से। और चलते चलते सुनते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन

उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्व बंधु कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई और बहनों को हमारा नमस्कार।
7: किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान वाणी के माध्यम से हम सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को संध्या 7:10 से 7

0: बजकर 45 मिनट तक प्रसारित किया जाएगा। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा। हाजिर है आपका पसंद कार्यक्रम लेके मैं हरि सिंह चंदेल
1: और मैं हूँ अशोक ठाकुर। हरि सिंह जी, कैसे हाल चाल है आपके?
0: अशोक जी, मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करते कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन है वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्य में जो है व्यस्त होंगे।
1: बिल्कुल जी, हमारे जो किसान भाई है वो पूरे ही साल देखो अपने कामकाज में व्यस्त होते हैं, क्योंकि किसानों को देखो बरसात का मौसम चला है, तो निवेदन किसानों से हम यही करना चाहेंगे कि इन दिनों जो है खेतों में पानी खड़ा ना रहने दें, और इन दिनों किसानों को काफी ज्यादा घास फूस भी जो है उग जाता है, तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि इन खरपतवारों को जो है आप हाथों से निकालते रहें, ताकि इन सभी सब्जियों का फल बागीचों का जो है विकास अच्छे तरीके से होता रहे।
0: जी, अगर बात करें बागवानी की तो हमारे जो आजकल सेब की तुड़ाई और विपणन का कार्य जो है अंतिम चरण पे है, क्योंकि जो शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के मध्य और ऊंचे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इस समय जो है सेब की तुड़ाई और ग्रेडिंग का काम काफी जोरों पे चला हुआ है।
1: बिल्कुल जी, किसानों अच्छे तरीके से ग्रेडिंग करें, पैकिंग करें, उसके बाद जो है जब आप इन फलों को जो है मंडियों में बेचते हैं तो अच्छे दाम जो है आपको तभी मिल पाते हैं। किसानों, जहां तक बात है कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में भी काफी कुछ जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं।
0: जी किसान भाइयों, आज काम की बातों के तहत विषय रहेगा फल तुड़ाई उपरांत बागीचों का बीमारियों से संबंधित प्रबंधन। साथ ही मनोरंजन करेंगे प्यारे से लोकगीतों के साथ, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन के लाभ। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर कुशाल मेहता और उनसे बातचीत करेंगे जय सिंह
1: जी, तो किसानों कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे काम की बातों से, और काम की बातों के अंतर्गत जैसा कि हरि सिंह जी आपने बताया कि आज का विषय है फल तुड़ाई उपरांत बागीचों का बीमारियों से संबंधित प्रबंधन। तो किसानों सबसे पहला हम आपको यही बताना चाहेंगे कि फल बगीचों के तुड़ान के बाद जब रखरखाव की बात आती है तो फल तुड़ाई के उपरांत बगीचों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है
0: जी,
1: जो कि हर बागवान को फलदार पौधों, स्वस्थ व ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जो है बागवान भाई बहनों को करना चाहिए। इन कार्यों में पौधों को बीमारी रहित और अगले वर्ष भरपूर फसल देने के लिए भी जो है किसानों को आपको तैयार करना होता है।
0: जी बात करते हैं पोषक तत्वों के छिड़काव की। तो सबसे पहले तुड़ाई के उपरांत पोषक तत्वों का छिड़काव पौधों पर करना चाहिए ताकि पौधों में ऊर्जा को बनाए रखा जा सके। पोषक तत्व छिड़काव द्वारा व मिट्टी में डालकर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन छिड़काव द्वारा देना हमेशा ज़्यादा फायदेमंद रहता है। फल बढ़ोतरी से लेकर परिपक्वता तक बहुत सी ऊर्जा पौधों से खींचते हैं, जिनको फिर से बनाने के लिए पोषक तत्व पौधों को देना आवश्यक होता है।
1: बिल्कुल जी, किसानों इसमें अगर बात करें तो इसमें बीज में परिपक्व व मजबूत होंगे, बड व दूसरे उत्कों में भोजन का संचार व भंडारण होगा और पौधे सुप्त अवस्था में जाएगा। पोषक तत्वों में कैल्शियम पाउडर 100 ग्राम और कैल्शियम तरल 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी, जस्ता पाउडर 100 ग्राम, तरल 250 लीटर प्रति 200 लीटर पानी के साथ साथ बोरोन 200 ग्राम व मैग्नीशियम पाउडर 100 ग्राम या तरल 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर भी जो है पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए इसका छिड़काव कर सकते हैं, या आप 19-19-19 खाद जो है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव भी किसानों आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बागवान भाई बहनों, इस बात का आप ध्यान रखें कि बागवान यूरिया 2 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर भी जो है किसानों इसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं, इससे जो है आपके पौधों का विकास जो है अच्छे तरीके से होगा।
0: जी किसान भाइयों, पोषक तत्वों के अलावा अपने फफूंदी नाशक रसायनों का भी छिड़काव जो है जरूर करना है। कैंकर रोग की रोकथाम के लिए सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव करने के तुरंत बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 ग्राम या कॉपर हाइड्रोक्साइड 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव या बोडो मिश्रण 1% का छिड़काव भी अत्यंत लाभकारी होता है।
1: किसानों, बात चली है फल तुड़ाई के उपरांत बगीचों का बीमारियों से संबंधित प्रबंधन के बारे में, तो इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य किसानों आ जाता है पौधों के तनों पर चूना लगाने का। ये कार्य जो है किसानों फल बगीचों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये एक अत्यंत आवश्यक क्रिया होती है जो कि हर बागवान को अक्टूबर नवम्बर में जो है किसानों इसके लिए आपको ये कार्य करना होता है। इससे तनों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाया जा सकता है और तनों पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से छाल फट जाती है और झुलसकर खुरदरी भी हो जाती है, और इस कारण होता क्या है कि कैंकर रोग लगने की संभावना भी बन जाती है। पेड़ के मुख्य तने पर भूमि तल से 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चूने और नीले थोथे का लेप जो है आप

0: वर्ष में दो बार इसको जो है आप जरूर ही लगा लें। एक आपने अप्रैल में इसका लेप लगाना है और एक अक्टूबर में जो है किसानियों आपने लगाना है। इससे किसानियों होगा क्या कि इससे छाल भी सुरक्षित रहती है और पौधों को कैल्शियम, कॉपर, सल्फर तत्व भी उपलब्ध जो है किसानियों इससे हो जाते हैं। तो किसानियों चूने की लिपाई का कार्य जो है आप समय रहते कर लें।
1: अशोक जी, अब हम अपने बागवान भाइयों को बताते हैं कि आप लाइकन की रोकथाम जो है कैसे कर सकते हैं। तो पौधों पर फल तुड़ाई के उपरांत बोरो मिश्रण का छिड़काव करने से लाइकन की भी रोकथाम हो जाती है। लाइकन से पौधों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कुछ खुराक पौधों से ले लेते हैं। कमजोर पौधों पर इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। वह ऐसे पौधों की ऊर्जा व शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और दूसरे हानिकारक कीटों की क्षण स्थली जो है बन जाती है, जो कि पौधों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
0: जी हाँ किसानों, साथ ही साथ बात करेंगे जड़ गलन रोग की रोकथाम के लिए भी जो है आपको फल तुड़ाई के बाद कुछ एक कार्य जो है किसानियों करने होते हैं। इस रोग का प्रकोप जून से सितंबर माह तक किसानियों हो सकता है और उपचार हेतु कार्बेनाडिजम फफूंदनाशी का जो है 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के नम तौलियों में तने के चारों तरफ एक एक फुट की दूरी पर एक एक फुट गहरे छेद करके घोल में जो है किसानियों आप डाल सकते हैं। सानू इस बात का भी आप ध्यान रखें कि तौलियों में नमी का होना इसके लिए जो है जरूरी रहता है और बगीचों में जड़ गलन की समस्या गंभीर हो तो प्रभावित पौधों और उसके आसपास वाले पौधों में नवंबर महीने में चूना पाउडर व अप्रैल महीनों में नीला थोथा पाउडर एक एक फुट के दायरे में एक फुट गहरे छेद में चूना और नीला थोथा के घोल से जो है सिंचाई करना भी जो है इसके लिए जो है किसानों फायदेमंद रहता है। तो किसानों, ये तो थी कुछ एक जानकारी फल तुड़ाई के उपरांत बगीचों में बीमारियों से किस तरह से जो है आपने इसके नियंत्रण के लिए प्रबंधन करना है और किन किन खास बातों का जो है इसमें आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपके फल बगीचे भी सुरक्षित रहे और अच्छा उत्पादन जो है आने वाले समय में वो आपको देते रहें। सानियों, अब कार्यक्रम में समय हो चला आपको एक और लोकगीत सुनाने का। तो सानियों आइए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में ये लोकगीत। तो अशोक जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का, जिसका आज आप सुनेंगे पुनः प्रसारण। विषय है सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन के लाभ। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर कुशाल मेहता और उनसे बातचीत करेंगे जय सिंह।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को नमस्कार। किसान साथियों, हम समय समय पर आपको विभिन्न प्रकार की कृषि और बागवानी संबंधी जानकारी लेकर के आते हैं और आज हम फिर से नए विषय के साथ हाजिर है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन के लाभ व चुनौतियां इस विषय पर। किसान भाइयों, यह कार्टन सेब फलों के भरान के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और बागवानों के लिए एक नई राह खोल रहा है। आज हम आपको यूनिवर्सल कार्टन के फायदे, इसके मानक और इसके उपयोग से जुड़ी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुशाल सिंह मेहता। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर साहब, किसान और बागवान भाई बहने सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सल जो कार्टन है आखिर क्या है ये?
2: जी, यूनिवर्सल कार्टन एक नया आधुनिक पैकेजिंग समाधान है जिसे विशेष रूप से सेब फलों के बरान पैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय संस्थान IIP मुंबई द्वारा दो आकारों में तैयार किया गया है। 12 इंच 500 बाई 300 बाई 310 मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई व 13 इंच 500 बाई 300 बाई 310 मिलीमीटर में डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन बागवानों को उनके सेब फलों को सुरक्षित, टिकाऊ और आकर्षक तरीके से पैक करने की सुविधा देता है ताकि फल बाजार में अच्छे दामों में बिक सके।
1: जी डॉक्टर साहब, अब सवाल उठता है कि जो यूनिवर्सल कार्टन की जो अधिसूचना है वह कब और क्यों की गई?
2: हिमाचल सरकार द्वारा 17 फरवरी 2024 को ई गैजेट में यूनिवर्सल कार्टन की अधिसूचना को प्रकाशित किया गया व 23 अप्रैल 2024 को यूनिवर्सल कार्टन की अधिसूचना कृषि सचिव द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बागवानों को अपने सेब का मूल्य स्वयं तय करने का अधिकार व बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। बागवानों की लंबे समय से यह मांग थी कि उन्हें एक ऐसा कार्टन मिले जो उनके सेब को बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सके और उनकी कमाई में सुधार कर

0: सके, इसी मांग को ध्यान में रखते हुए यह कदम हिमाचल सरकार द्वारा उठाया गया।
1: बहुत ही बढ़िया जो जानकारी है डॉक्टर साहब आपने दी है। अब हमारे किसान भाई यह भी जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सल कार्टन की 12 इंच और 13 इंच पेटी में अधिकतम वजन और जो आकार है उसकी सीमाएं क्या है।
0: जी, 12 इंच पेटी में सबसे पहले तो किसान भाइयों, बागवान भाइयों, उसमें आप एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, पित्तू का भरान करेंगे और 13 इंच की पेटी में आप लार्ज, मीडियम, स्मॉल का भरान करेंगे, जिसके निम्नलिखित रूप से किया जाएगा। जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, उसका एक सेब का वजन 221 से 280 ग्राम होगा, आकार 80 मिलीमीटर का, चार ट्रे होगी, 80 दाने होंगे, कुल वजन उस पेटी का 20 किलोग्राम होगा।
1: जी,
0: लार्ज का वजन 180 से 220 ग्राम, आकार उसका 75 से 80 मिलीमीटर, वह पांच ट्रे होगी, 80 दाने होंगे, कुल वजन 20 किलोग्राम। उसी तरह मीडियम में जो सेब का वजन 141 से 180 ग्राम, आकार 70 से 75 मिलीमीटर, वह पांच ट्रे, 125 दाने, अधिकतम वजन 20.125 किलोग्राम होगा। स्मॉल में सेब का वजन 127 से 140 ग्राम, आकार 65 से 70 मिलीमीटर, वह पांच ट्रे, 150 दाने, कुल वजन 50.025 किलोग्राम। उसी तरह एक्स्ट्रा स्मॉल का वजन 111 से 126 ग्राम, आकार 60 से 65 मिलीमीटर, पांच ट्रे, 175 दाने, कुल वजन 20.075 किलोग्राम। पित्तू, एक सेब का वजन 90 से 110 ग्राम, आकार 55 से 60 मिलीमीटर, पांच सेपरेटर, 200 दाने, कुल वजन 220 किलोग्राम।
1: जो जितने भी जो हमारी जो सेब की पेटियां हैं, इसमें क्या लगभग सभी का जो वजन है वो समान रहने वाला है? विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न वैरायटी के जो हमारे पास सेब है, पित्तू है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा लार्ज है, तो उसमें क्या वजन सभी का बराबर होगा?
0: ये IIPA द्वारा इस तरह से डिजाइन किया गया, तभी 12 इंच और 13 इंच जिसमें अलग अलग ग्रेड के सेब पैक को होने हैं, उनका अधिकतम जो वजन है वो 20 किलोग्राम या 20 किलोग्राम से थोड़ा सा अधिकतम रहने वाला है, जो कि विस्तृत से बताया गया है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान और बागवान भाई बहन यह भी जानना चाहेंगे कि जो यूनिवर्सल कार्टन है उसके जो राष्ट्रीय मानक है वो क्या है।
0: यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए IIPA द्वारा कुछ मानक सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आयाम, जिसको डायमेंशन कहते हैं, वो 500 × 300 × 310 मिलीमीटर, जिसको हम 12 इंच का बॉक्स कहते हैं यूनिवर्सल कार्टन, और दूसरा 500 × 300 × 330 मिलीमीटर, जिसको 13 इंच का कहते हैं, ये सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, उसमें 5 प्लाई होना अनिवार्य है, जिसमें कार्टन मजबूत और टिकाऊ होगा, और जो खाली डब्बा होगा चाहे 12 इंच का या 13 इंच का, उसका कम से कम वजन 950 ग्राम होना चाहिए
1: जी,
0: और जो ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ है वो 18 किलोग्राम से अधिक होनी चाहिए, ताकि कार्टन झटकों को सह सके, और सहपीड़न शक्ति कम से कम 450 किलोग्राम होनी चाहिए, कॉ फैक्टर उसका 120 प्लस माइनस 5% से कम होनी चाहिए, और नमी प्रतिशत जब प्रशिक्षण करेंगे उसका पेटी का, उसमें 8 से 10% के बीच होने चाहिए
1: जी,
0: और कार्टन की शैली 5 प्लाई है, और उसमें वेंटिलेशन के लिए 2 छिद्र 25 mm के होने चाहिए। उसी तरह उसके विनिर्माण जोड़ में स्टेपिंग पिन या गोंद का उपयोग होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये तो हुई जो यूनिवर्सल कार्टन के मानकों की बात। अब किसान भाई यह भी जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सल कार्टन में जो सेब फल पैकिंग के जो फायदे हैं वो क्या है।
0: बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि यूनिवर्सल कार्टन क्यों जो है हिमाचल सरकार और बागवानों की डिमांड पे लागू किया गया। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सबसे पहला तो है फल सुरक्षा। जो बागवान पूरे साल में सेब फल को गुणवत्तापूर्ण बनाता है, उसको उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुंचाता है, क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन सिंगल पीस होने के कारण इसमें क्षमता से ज्यादा फलों का भरान नहीं किया जा सकता, जिसके कारण फलों को सुरक्षित मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो टेलीस्कोपिक कार्टन, जो 2 पीस होने के कारण क्षमता से ज्यादा फलों का भरान कर रहे हैं, कारण फलों को विपणन के दौरान नुकसान की आशंका रहती थी, यूनिवर्सल कार्टन सेब को झटकों, दबाव और अन्य शारीरिक नुकसान से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फल बिना किसी खरोंच या क्षति के बाजार तक पहुंचे, जिसमें उसकी गुणवत्ता बनी रहती है और बागवानों को बेहतर मूल्य दिलाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, इसकी जो ब्रांडिंग है और उसका जो विपणन है सेब का, वो किस प्रकार किया जा सकता है?
0: जिस तरह से

0: आयुष्यमान को माना जाए कि वहां से जो पेटियां बड़ी सुंदर आती है उसमें ब्रांडिंग की जाती है, तो यूनिवर्सल कार्टन पर ब्रांडिंग और लेबलिंग अच्छी तरह की जा सकती है जो उत्पाद की पहचान और बाजार में इसकी मांग को बढ़ाती है। इसे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक स्वदेशी फल मिलता है और बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है, और साथ ही साथ जो हमारे खरीदार भाई है, जब गुणवत्ता वाला फल यही हिंदुस्तान में मिल रहा है तो विदेश के सेब को लेने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती, और इससे क्या होता है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश के काम में आता है, तो ये बहुत ही उम्दा यूनिवर्सल कार्टन है।
1: जी
0: साथ के साथ इसमें जब हम ट्रक में या छोटी गाड़ी में या फड़ में जब कार्टन को उतारते हैं तो यूनिफॉर्मिटी दिखती है। यूनिवर्सल कार्टन पैक किए फलों की ग्रेडिंग से यूनिफॉर्मिटी रहती है, क्योंकि सभी किसानों के बॉक्स के समान वजन समान ग्रेड होगा, जिससे बागवान अपने उत्पाद का सही मूल्य ले सकते हैं, जबकि टेलीस्कोपिक कार्टन में वजन ज्यादा और मूल्य कम मिलता था।
1: यानी कि जो यूनिवर्सल कार्टन है, जो सामान्य कार्टन पहले आते थे उनसे बहुत ही बढ़िया है।
0: बहुत बढ़िया, और इसमें ग्रेडिंग में भी सुधार हुआ है। यूनिवर्सल कार्टन के कारण अब ग्रेडिंग वैज्ञानिक पद्धति से हो रही है, जबकि पहले जो है ग्रेडिंग जो बिगड़ गई थी, लार्ज को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज बना दिया गया था, एक्स्ट्रा लार्ज को लार्ज बना दिया था, लार्ज को मीडियम, इस तरह से। तो एक वैज्ञानिक पद्धति वाली जो ग्रेडिंग में भी इससे सुधार आया है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया सभी जो जानकारी है वो यूनिवर्सल कार्टन के बारे में प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान और बागवान भाई बहनें अब यह भी जानना चाहेंगे कि जो इस कार्टन का उपयोग करते समय जो किन चुनौतियों का जो सामना है वह उन्हें करना पड़ेगा।
0: किसान भाइयों और बागवान भाइयों, जिस तरह से टेलीस्कोपिक कार्टन पिछले 40 सालों से कर रहे थे, तो वो 2 पीस था, अब जो यूनिवर्सल कार्टन है ये सिंगल पीस है, और साथ में ये 12 इंच और 13 इंच में आ रहा है। तो इसमें वैसे तो किसान भाई पहले जब लकड़ की पेटी में भरते थे उसमें भी 10 11 12 इंच के पेटियां होती थी, तो उससे रूबरू है। फिर भी इस के बारे में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके लिए एपीएमसी द्वारा जगह जगह में होर्डिंग लगाए गए हैं कि 12 की इंच की पेटी में कौन सा सेब ग्रेड भरना है और 13 इंच में कौन सा ग्रेड भरना है। और साथ ही साथ हमारे जो उद्यान प्रसार अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और अन्य उच्च अधिकारी जो समय समय पर प्रशिक्षण शिविर दे रहे हैं और बागवानों के निकटतम जाके उनको 12 इंच और 13 इंच में कौन सी ग्रेडिंग करनी है, पैकिंग करनी है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस पर भी यदि किसी बागवान तक हमारे अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं तो कृपया वो अपने नजदीकी उद्यान प्रसार अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, तो यूनिवर्सल कार्टन के बारे में हमने बहुत सी जानकारी किसानों और बागवानों को दी है, तो आप अपनी ओर से जो है यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग के लिए बागवान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: यूनिवर्सल कार्टन की पिछले 15-20 वर्षों से लगातार बागवान मांग कर रहे थे सरकार से। 2015 में भी सरकार ने कोशिश की थी कि यूनिवर्सल कार्टन को लॉन्च किया गया, किसी कारणवश वो अधिसूचना वापस ली गई, और मुख्य संसदीय सचिव श्री मोहनलाल बागटा जी और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा ये बागवानों की जो डिमांड एक गारंटी के रूप में ली गई थी और ये अधिसूचना उन्होंने जारी की, और इससे बागवानों को जो घाटा हो रहा था टेलीस्कोपिक कार्टन में, उसमें 44 किलो तक सेब जा रहा था और टचिंग हो रही थी, उपभोक्ताओं तक माल जो सेब है वो खराब मिल रहा था, जिससे दोबारा सेब की डिमांड हिंदुस्तान की घट रही थी और बाहर से विदेशी सेब की डिमांड बढ़ रही थी। अब ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्सल कार्टन जिस तरह इस सीजन में देख रहे हैं, 150 से लेकर के 250 रुपये किलो तक प्रति किलो के सेब के रेट मिल रहे हैं और बागवान खुश हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा फायदेमंद यूनिवर्सल कार्टन बागवानों के लिए रहने वाला है।
1: जी तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में हमने बात की सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन के लाभ और चुनौतियों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। इस कार्यक्रम में अधिक जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कुशाल सिंह मेहता। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में बागवानों को जानकारी देने के लिए और यूनिवर्सल कार्टन के बारे में जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सनी, ये तो सुनिए आपने जानकारी सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन के लाभ। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कुशाल मेहता और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे जय सिंह। तो सनी, हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जानकारी से जो है लाभ भी उठाएंगे। अब कार्यक्रम में समय हो चला है।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना रीना ठाकुर की आवाज में ये लोकगीत।
1: तो श्रोताओं, अब तो किसान वाणी कार्यक्रम के आज के संक का समय भी संपन्न हो चला। सभी किसान और बागवान भाई और बहनों से अब अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
2: प्रधानमंत्री किसान मान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन

0: बताएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। बीडी वेब 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
1: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
3: नमस्कार हिमाचल, प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी सरकार। प्रदेश ने बीते 3 वर्षों में विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान किए गए बंद, 362 नए संस्थान खुले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में तथ्यात्मक जवाब न देने का लगाया आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है एक से श्रेष्ठ पहल। और प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू, 30 सितंबर तक होगी जनगणना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है और आयोग भी इस विषय पर मंथन कर रहा है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग का कल्याण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि उनके हित के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और जातीय जनगणना के बाद कई तथ्य सामने आएंगे। सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर ओबीसी को वर्ग ए और बी में 12%, जबकि वर्ग सी व डी में 18% आरक्षण दिया जाता है। सरकारी विभागों में प्रशिक्षण के लिए भी अलग अलग संस्थानों और पाठ्यक्रमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक

0: सवाल के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान बंद किए गए जबकि 362 नए संस्थान खोले गए। उन्होंने बताया कि बंद किए गए संस्थानों में से 123 को बाद में फिर से शुरू किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार संस्थानों को राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता की जरूरत और आकलन के आधार पर खोल रही है। उन्होंने कहा कि संस्थानों को बंद करना सरकार का नीतिगत फैसला होता है और ये व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में संस्थान खोले और कई स्वास्थ्य संस्थान भी खोले गए, लेकिन वहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे और जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर संस्थान खोल रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के जवाब पर सवाल किया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के अगले ही दिन ये कैसे तय हो गया कि भाजपा सरकार के समय खोले गए संस्थान जरूरत के आधार पर नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संस्थान राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बंद किए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में सवालों के तथ्यात्मक जवाब न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में जवाब देने के बजाय जनसभा की तरह भाषण देते हैं, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मौजूदा सरकार के 5 साल के सभी फैसलों की समीक्षा होगी और जो फैसले जनहित में नहीं होंगे उन्हें रद्द किया जाएगा।
1: मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सदन की गरिमा इतने निम्न स्तर पर वर्तमान सरकार ने पहुंचा दी है, कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी सदन के अंदर तथ्य के आधार पर नहीं मिल पा रही। वहां पे राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं कि विधानसभा को जनसभा ही समझ लिया है। ऐसी स्थिति हमने कभी भी हिमाचल प्रदेश में आज से पहले नहीं देखी, जो वर्तमान सरकार के दौरान देखी। रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद फैसला करेंगे। जो गलत उनने फैसले लिए होंगे उनको रद्द भी किया जा सकता है।
0: जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार कर्मचारी हितैषी है तो पेंशनरों को अपने हक के लिए धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास थम गया है और पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री जी आप बार बार कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, हर रोज हर चौक पर पेंशनर धरने पर क्यों है, प्रदर्शन क्यों। अब सीधी सी बात है, जो वर्तमान स्थिति है अब बस की नहीं है। कैसे कैसे आप वक्त निकाल रहे हैं, ना प्रदेश में जनहित की कोई योजना आज तक इस कार्यकाल में जमीन पर उतर पाई। हर तरफ जो है विकास पर एक तरह का ताला लगा हुआ है, हमारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक से श्रेष्ठ पहल शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। राज्यपाल ने आज बिलासपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 650 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और इनमें लगभग 12,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि समावेशी, कुशल व भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका है। उन्होंने कहा कि एक से श्रेष्ठ जैसे जमीनी स्तर के प्रयास शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को समुदायों के और करीब लाकर इस व्यापक राष्ट्रीय प्रयास को मजबूती प्रदान करते हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने

0: श्रेष्ठ कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही हिम चंडीगढ़ सिटी का विकास कार्य शुरू करेगी। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने चंडीगढ़ के निकट बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 3 नए शहर और सिरसा रिवर फ्रंट विकसित कर रही है।
1: पहले चरण में हम 1000 हेक्टेयर के 3 बड़े प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और जो सिरसा नदी है उसका रिवर फ्रंट बनाने के लिए मैंने डायरेक्शन दी है और जल्दी ही हिम चंडीगढ़ का कार्य शुरू किया जाएगा। एक ऐसा शहर हिमाचल प्रदेश में बसाने जा रहे हैं जिससे हमको रेवेन्यू भी आए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है।
0: प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है जो 30 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान प्रगणक घर घर जाकर जनसंख्या गणना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे। जनगणना विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस चरण में प्रदेश के पूर्ण व आंशिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज बाद दोपहर से लगातार बारिश हो रही है जिससे कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। सिरमौर जिला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुण नदी में आए अचानक उफान के कारण भरमा पापड़ी निवासी एक व्यक्ति नदी में बने एक छोटे टापू पर फंस गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं और व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि तेज बहाव के कारण रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को हेलीकॉप्टर की मांग भेजी है ताकि फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जा सके। इस बीच मौसम विभाग ने कल 2 सितंबर को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी सरकार। प्रदेश में बीते 3 वर्षों में विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान किए गए बंद, 362 नए संस्थान खुले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में तथ्यात्मक जवाब न देने का लगाया आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है एक से श्रेष्ठ पहल। और प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू, 30 सितंबर तक होगी जनगणना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
5: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर जिला सोलन से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 4 पद और सहायिकाओं के 11 पद भरे जाने हैं। आवश्यक योग्यताएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका के पदों हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होने चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। आवेदी

0: के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता उसी आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित पोषक क्षेत्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर जिला सोलन में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब आकाशवाणी शिमला से विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी।
0: पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। इसके लेखक हैं पंजाब केसरी के वरिष्ठ संवाददाता भूपेंद्र शर्मा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
2: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को बंद करने का मुद्दा गूंजा। इस दौरान पक्ष व विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक द्वेष के चलते संस्थान बंद करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संस्थान खोलने या बंद करने का निर्णय लेती है। सरकार ने जनता की जरूरत के हिसाब से संस्थान खोले हैं, जबकि पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव से पहले संस्थान खोले और रेवड़ियां बांटी। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा व त्रिलोक जम्वाल के मूल तथा विक्रम सिंह डॉक्टर हंसराज के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 31 जुलाई 2025 तक विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान बंद किए, जबकि इसी अवधि में 362 नए संस्थान खोले गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन 362 संस्थानों में 123 ऐसे हैं जिन्हें पहले डीनोटिफाई किया गया था और बाद में आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाकर दोबारा शुरू किया गया। सुखू ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में सरकार ने केवल 8 से 10 नए संस्थान खोले हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान खोलने का फैसला भाजपा या कांग्रेस को देखकर नहीं बल्कि क्षेत्र की वास्तविक जरूरत के आधार पर किया जाता है। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने करीब 750 शिक्षण संस्थान ऐसे खोल दिए थे जहां ना पर्याप्त शिक्षक थे और ना विद्यार्थी। सुखू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की और ऐसे संस्थानों को बंद करने का नीतिगत फैसला लिया गया जहां आवश्यक सुविधाएं और शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने इसे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लिया गया निर्णय नहीं बल्कि सरकार की नीति का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल जनगणना प्रक्रिया के कारण नए संस्थान खोलने पर रोक है। ये रोक हटने के बाद सरकार जरूरत के आधार पर नए संस्थान खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित मेडिकल कॉलेजों के आसपास संचालित स्वास्थ्य संस्थानों का भी युक्तिकरण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के 2 से 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले स्वास्थ्य संस्थानों की आवश्यकता और उपयोगिता की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान भाजपा विधायक हंसराज ने सरकार पर क्षेत्रीय असंतुलन का आरोप लगाते हुए कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में 45 किलोमीटर के दायरे में 3-3 कॉलेज हैं, जबकि भौगोलिक रूप से कठिन चुराहा क्षेत्र में बिजली बोर्ड का एकमात्र डिवीजन और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बंद

किए गए संस्थानों को फिर से शुरू करने की मांग की। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कॉलेज के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अब तक करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द चुराहा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और मौके की स्थिति देखने के बाद आवश्यकता के अनुसार नए कार्यालय या स्वास्थ्य संस्थान खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों को राजनीतिक नजरिए से देखने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सत्ता में लौटने पर केवल एक वर्ष के फैसलों की समीक्षा नहीं होगी बल्कि कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। विधायक सुखराम चौधरी के एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की जाति आधारित जनगणना पूरी होने के बाद ओबीसी आयोग की सिफारिशें आएंगी। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिश मिलने के बाद सरकार सभी पहलुओं पर विचार करेगी और कांग्रेस सरकार ने ओबीसी समाज के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी समाज का कल्याण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण की भावना से किया जाएगा। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष सीआरएफ के तहत 150 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगले वित्त वर्ष में हमीरपुर सुजानपुर थुरल मारंडा सड़क को सीआरएफ के तहत स्वीकृत करवाने का प्रयास किया जाएगा। विधायक आरएस बाली के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी विभागों में तैनात मल्टी टास्क वर्कर के लिए गंभीरता से एक पॉलिसी पर काम कर रही है। सभी विभागों के लिए एक संयुक्त पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें न्यूनतम मजदूरी की ओर आगे बढ़ा जाएगा। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गैर मौजूदगी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 4,100 मल्टी पर्पज वर्कर भरे गए हैं। विधायक लोकेंद्र कुमार की गैर मौजूदगी में डॉक्टर जनकराज द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में नगर व ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में पॉलिटेक्निक व आईटीआई की हालत भी स्कूलों जैसी हो गई है। अधिक संख्या में संस्थान खुलने के कारण इनमें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब नए संस्थान खोलने के बजाय मौजूदा संस्थानों में गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है। राज्य में राजनीति के चलते संस्थान खोलने से गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसी के चलते आईटीआई में इस वर्ष राज्य में 234 सीटें खाली रह गई हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री प्रदेश में कहीं दौरे पर होते हैं तो उनसे नए संस्थान खोलने को लेकर मांग की जाती है, लेकिन अब राज्य में सड़कों का नेटवर्क का विस्तार हो गया है, साथ ही तकनीकी विकास भी हुआ है। विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में विभिन्न श्रेणी के 1,420 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 692 पद भरे हैं तथा 728 पद रिक्त हैं। 728 पदों में से भी 73 पदों को विज्ञापित किया गया है। ऐसे में वास्तव में विश्वविद्यालय में 655 पद रिक्त हैं। विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 317 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 164 पद भरे हुए हैं तथा 153 पद रिक्त हैं। सदन में प्रश्नकाल के बाद जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वाइन फ्लू से प्रदेश में दो लोगों की मौत का मामला उठाया तो उस समय कुछ देर पक्ष विपक्ष के बीच नोक झोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस विषय को उठाना चाहते थे जिसे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शून्यकाल के तहत उठाने की अनुमति दी। जयराम ठाकुर का कहना था कि प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक कोई वक्तव्य नहीं आया है। आईजीएमसी शिमला में बीमार होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में क्या सरकार स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस दौरान कहा कि ये विषय पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नहीं आता और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े संघर्ष के बाद विधानसभा में शून्यकाल शुरू हुआ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विषय से हटकर बात करने लगते हैं, इस कारण सदस्यों को अपना विषय उठाने का अवसर नहीं मिलता। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पहले ही विषय की गंभीरता को देखते हुए इसको शून्यकाल के

0: स्थित उठाने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उनको दो लोगों की मौत की होने की जानकारी तो नहीं है, लेकिन एम्स बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से ग्रस्त मरीज की आईजीएमसी शिमला में रेफर करने के बाद मृत्यु जरूर हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शून्यकाल को लेकर तल्खी भी दिखाई। उन्होंने कहा कि संबद्ध मंत्री को शून्यकाल में उठने वाले विषय पर जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे इसके प्रति गंभीर हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से तुरंत ऐसे विषयों का उत्तर आए। शून्यकाल में विधायक सुखराम चौधरी ने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़कों की खस्ताहाल होने और इसकी टारिंग किए जाने का विषय उठाया। विधायक संजय रत्न ने शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी व कर्मचारियों का वेतन विभाग के माध्यम से दिए जाने और शहरी क्षेत्र में बीपीएल पात्रता की वार्षिक आय सीमा को 1,00,000 रुपये तक बढ़ाए जाने की मांग की। इनका जवाब देते हुए लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बरसात समाप्ति के बाद प्रदेश में 2,502 किलोमीटर सड़कों की टारिंग होगी। इसमें सिरमौर जिला की सड़कों का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी विकास विभाग से संबद्ध सभी स्थानीय शहरी निकायों के अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन विभागीय स्तर पर देने का अध्ययन किया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक डॉक्टर जनकराज की तरफ से उठाए गए विषय का जवाब देते हुए कहा कि मणिमहेश यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार मंदिर ट्रस्ट से राशि का खर्च करेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा। इसके लेखक पंजाब केसरी के वरिष्ठ संवाददाता भूपेंद्र शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, जो आकाशवाणी शिमला से रिले की जा रही थी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आइए सुनते हैं अदनान सामी को इस गीत में।

0: ये थी कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति अलीसा चिनाई की आवाज में।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।
2: जीवन एक संग्राम है, संग्राम है तेरा नाम।
0: देशवासी इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत आवाज़ें हैं नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल व साथियों की।

0: सबसे पहले है भारतवासी।
1: अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर व साथियों की मिलीजुली आवाजों में पूर्व और पश्चिम फिल्म से ये देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 News@9 रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
3: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों

0: जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
3: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
4: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन

0: औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
1: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
2: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में MA की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे

एक ही कलाकार के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं संगीत जगत के उस चमकते सितारे की जिसने अपनी सूफी और रॉक आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तोशी रैना की। 30 अगस्त 1984 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे तोशी रैना का नाता एक ऐसे परिवार से रहा जहां संगीत की गहरी जड़ें थी। बाद में उनका परिवार राजस्थान से जयपुर में बस गया। उनके पिता उस्ताद अजीज खान साहब एक संगीतकार थे, इसीलिए तोशी को बचपन से ही सुरों की घुट्टी मिली। लेकिन दोस्तों, सफलता की राह इतनी आसान

कहाँ होती। तोशी को असली पहचान मिली साल 2007 के रियलिटी शो अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया से। इस शो में भले ही वो विजेता नहीं बने, लेकिन अपनी बुलंद आवाज और खास अंदाज से उन्होंने हर सुनने वाले को अपना दीवाना बना लिया।

स्वागत है ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, तोशी रैना की सबसे बड़ी ताकत है उनकी और उनके भाई शारिब रैना की जोड़ी। शारिब तोशी की इस भाइयों की जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं, चाहे वो फिल्म राज 2 का गाना माही माही हो जिसने उस दौर के हर आशिक के दिल को छुआ, या फिर हम्टी शर्मा के दुल्हनिया का बेहद इमोशनल ट्रैक। तो आइए सुनते हैं शारिब तोशी की इस भाइयों की जोड़ी का ये गीत राज 2 से।

गायक तो शी रैना। जी हाँ, इनके सफ़र से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप में हुनर है और आप कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते तो मंजिलों को आपके कदम चूमने से कोई नहीं रोक सकता। रियलिटी शो के मंच में से शुरू हुआ ये सफ़र आज बॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज तक पहुंच चुका है और तोशी आज भी संगीत की दुनिया में लगातार सक्रिय हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और एक ही कलाकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे थे तोशी रैना के गाए कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं शेर सिंह व साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे धीरज अंकुश और विक्रांत का गाया हुआ ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं कर्नेल राणा का गाया ये लोकगीत।

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतां दी अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं अंकुश संदल का गाया हुआ ये लोकगीत।

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं वर्षा कटोच की गाई ये लोक गाथा।

सिम्बाला के गाए से लोकगीत के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 और 35 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत, और ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति। अपने रंग हजार इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की मिलीजुली आवाजों में भी आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म से ये गीत। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लौटते हैं छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: महबूब की मेहंदी इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और ये रही कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ रेणुमन कोटिया को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।